सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संबत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59:03 हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। 2 दिन की बैठक में 3 प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान

0: कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अब सावन की बदरिया बरस रही और ऐसा लगता है जैसे ये संकेत दे रही, संदेश दे रही कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। ये तो भक्त का भाव है। भक्ति तो कुछ भी नहीं जानता और भक्ति तमाम चीज़ों से बहुत दूर होती है, बहुत सहज, बहुत सरल। आप देखिए ना कितना खूबसूरत ये एहसास है, ये भाव है कि वो सांवला सलूना कृष्ण, वो कान्हा सबका प्यारा। अब सावन के महीने में देखो, ब्रज के कुंज निकुंज वन में कदम्ब की डार पे झूरा तो पड़ ही जाते हैं और मल्हार की जो है स्वर लहरियाँ वातावरण को और भी जो है गुंजायमान कर दे हैं। तो ऐसे में जब चतुर्भुज श्याम हिंडोले में झूलते हैं और फिर रत्न जड़ित झूले में सजे धजे से अनुपम उनका सौंदर्य जो श्रृंगार जो किया हुआ है, उसकी दिव्यानुभूति भक्त को किस तरह से एहसास कराती है, तो देखिए।

प्रेम कोई बिल्कुल तन्मय होकर कर बैठे, मगन होकर दीवानगी की हद तक, तो यह भी तो लोगों को सहन नहीं होता। अब मीरा को ही देखिए, उनका दर्द कितना झलकता है कि जब वो कह उठती हैं उन्होंने अपने इष्ट से प्रेम किया, कान्हा से प्रेम किया, सारे समाज उनके विरोध में खड़ा हो गया। उन्होंने सिर्फ प्रेम ही तो किया, अब वो ये कहती भी हैं कि एरी मेरे तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई।

0: आप सुन रहे थे अभी श्री संबीत स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वर में आपने भक्ति परक रचनाएं सुनी साथियों, वे गायक स्वर थे सुमन कल्याणपुर, पंडित भीमसेन जोशी और अनुराधा पौडवाल के। आज का वंदना कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। लीजिए, आप प्रस्तुत है चिंतन बिंदु कार्यक्रम के अंतर्गत मोह संबंधी विचार। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया और वाचन स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का है।
1: गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस लोक और परलोक से के संपूर्ण भोगों में आसक्ति और अहंकार का अभाव तथा जन्म मृत्यु जरा रोग आदि दुख दोषों का बारंबार विचार करना, पुत्र स्त्री घर धन आदि से अनासक्ति, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त की तटस्थता और परमात्मा के सर्वत्र दर्शन करना।

0: इतना ही ज्ञान है। गुजरात के संत आसाराम बापू ने गीता के इस उपदेश की विवेचना करते हुए कहा है कि शरीर के प्रति आसक्ति अज्ञान का परिचायक है। फेंक दो शरीर की ममता को, निर्दोष बालक के समान बन जाओ। इस शरीर को बहुत संभाला, कई बार इसे नहलाया, खिलाया, पिलाया, घुमाया, किंतु यह शरीर सदा फरियाद ही करता रहा। कभी बीमारी, कभी अनिद्रा, कभी जोड़ों में दर्द या कभी सिर में दर्द। शरीर की गुलामी कर ली, अब मन ही मन शरीर की यात्रा पूरी कर लो। बापू कहते हैं कि दृढ़तापूर्वक निश्चय करो कि तुम्हारी जो विशाल काया है, जिसे तुम नाम और रूप से मैं करके संभाल रहे हो, उस काया को अपनी देह से अतिशय मोह नहीं करना है। देह की ममता से अपने को मुक्त करना होगा। जब तक देह की ममता रहेगी, तब तक किए हुए कर्म तुम्हारे लिए बंधन बने रहेंगे। जब तक देह में आसक्ति बनी रहेगी, तब तक विकार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम अपने को देह मानते रहोगे, तब तक ब्रह्म सदा साक्षात्कार तुम्हें नहीं हो पाएगा। संत आसाराम बापू कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्मों में कई पिता रहे होंगे, कई माताएं रही होंगी, उसके पहले भी कोई रहे होंगे और उसके पहले भी कोई रहे होंगे। तुम्हारा लगाव देह के साथ जितना प्रगाढ़ होगा, उतने ही नाते रिश्तों का बोझ तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। देह का लगाव जितना कम होगा, उतना बोझ हल्का होगा। एक उदाहरण के साथ बापू समझाते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका शव पड़ा हुआ था। लोग कह रहे थे कि अमुक के आज प्राण पखेरु उड़ गए, अब वह लोगों की नजर में मुर्दा होकर पड़ा है। कोई सचमुच आंसू बहा रहा है, कोई झूठ मूठ रो रहा है। इस शरीर ने न जाने कितना कमाया, कितना खाया, कितना सजाया, कितना दिखाया, वो शरीर आज शव हो गया। एक श्वास लेना आज उसके बस की बात नहीं। अब तक जिसे अमुक सेठ या अमुक साहब कहा जाता था, वह अब मुर्दे की सूची में आ गया। लोग कहते हैं मुर्दे को जल्दी बांधो और कुछ देर बाद शव चिता की भेंट हो जाता है। कितना संभाला गया था इस शरीर को। जरा सी किडनी खराब हो जाने पर अमेरिका तक की दौड़ लगा दी थी। जरा सा पैर दुखता था, हाथ में चोट लगती थी, तो स्पेशलिस्टों को दिखाया जाता था। लेकिन एक दिन वो आता है जबकि कोई स्पेशलिस्ट काम नहीं आता। मौत के बाद सब अपने पराये हो जाते हैं। हजारों मित्रों ने, लाखों कुटुंबियों और करोड़ों करोड़ों शरीरों ने तुझको छोड़ दिया, किंतु तुम्हारा आत्मदेव तुमको कभी नहीं छोड़ता। वो शरीर की अंतिम यात्रा के बाद भी बचता है, अर्थी के बाद भी बचता है, जन्म से पहले भी बचता है और मौत के बाद भी बचता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और शरीर से ममता तोड़कर उसकी प्राप्ति होती है और तभी परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु क्रम में मोह संबंधी विचार, आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का और वचन स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का था। साथियों, लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर ए हरिहरन और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई।

सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। यह शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

आप अभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कहन से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण, गायक स्वर ए हरिहरन का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे प्रातः 7:31 पर कार्यक्रम ब्रज माधुरी के अंतर्गत ब्रज की माटी तोहे प्रणाम में जानकारी लेंगे रश्मि शर्मा से, और जानकारी होगी मानसी गंगा मुखारविंद मंदिर गोवर्धन के बारे में। ब्रज दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 9:30 का।

के द्वारा इसके अंतर्गत टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी आप सुनेंगे और जानकारी देंगे डॉक्टर अजय गुप्ता और सुरेंद्र राजेश्वरी। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय रहेगा पूर्वाह्न 11 बजे का। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे नंद किशोर सैनी के गाए हुए कुछ ब्रज लोकगीत।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी अमेजिंग इकोनॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड।

बहने कार्यक्रम सुनेंगी दिन में 1:15 पर। कार्यक्रम वनिता लोग, इस कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी माँ का दूध बच्चे के पहले टीके के समान और महिलाओं के लिए ऑनलाइन रोजगार के अवसर। इस विषय से संबंधित इसी कार्यक्रम में डॉक्टर सरोज गुप्ता प्रस्तुत करेंगी काव्य पाठ, साथ ही कुछ घरेलू टिप्स भी बहने इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी। दोपहर 2:30 का समय रहेगा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एवं CIT द्वारा उमंग का।

युवाणी कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुण्यतिथि और राज्य एवं केंद्रीय सेना में भर्ती इस विषय पर आज की बात में चर्चा की जाएगी। और इसी कार्यक्रम में कमलेश्वर शर्मा से अविचल दुबे की ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत युवा प्रतिभा कमलेश्वर शर्मा से ली गई बातचीत। ब्रज साहित्य कार्यक्रम संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज मनोज कुमार शर्मा प्रस्तुत करेंगे काव्य पाठ। भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर।

0: संध्या 6:50 पर कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण आप सुनेंगे। फोन इन कार्यक्रम होगा ये, और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभिषेक शुक्ला से जानकारी, विषय होगा भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा शाम सुहानी शाम 7:31 पर, और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप दिन में भी सुन सकते हैं 12:00 कार्यक्रम गीत बात SMS के अंतर्गत। सुहाने तराने सुनिएगा रात्रि 9:15 पर, रात्रि 9:30 का समय रहेगा, चर्चा का विषय है, और 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत उस्ताद गुलाम हुसैन खान का सितार वादन, और प्रातः 7:00 पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में आज विजय सिंह नौलखा से जानकारी, यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व।
1: आज हम यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में पशुपालन के कार्य में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा लघु कृषक, सीमांत कृषक या भूमिहीन मजदूरों द्वारा पशुपालन कर पूर्ण किया जाता है।

0: इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण इनके द्वारा पाले गए पशु भी कुपोषण का शिकार होते हैं। पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध न होने के कारण इनका शारीरिक विकास मंद रहता है, इनकी प्रजनन क्षमता अधूरी रहती है, पशु देर से प्रजनन योग्य होता है, गर्मी के लक्षण भी प्रदर्शित नहीं होते, गर्भाधान के उपरांत पशु गर्भित नहीं होते हैं तथा ब्याने के बाद कम दूध उत्पादन होता है, काफी समय तक गर्मी में नहीं आते और विभिन्न प्रजनन व्याधियों का शिकार हो जाते हैं। अब जानते हैं कि ये यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक यानी UMMB आखिर है क्या। यह यूरिया फीडिंग का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। इसके साथ ही इसमें भोजन के लिए अन्य आवश्यक तत्वों का मिश्रण भी इसे और उपयोगी बनाता है। यूरिया पशुओं के पेट में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, साथ ही इसमें मिनरल आदि भी पशु को सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसकी फीडिंग से पशु स्वस्थ रहता है, दुग्ध उत्पादन व प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। जो पशुपालक कम संख्या में पशु पालते हैं तथा पशुओं में पोषण तत्वों की कमी होने पर UMMB यानी यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक फीडिंग काफी लाभदायक तथा आर्थिक रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। यूरिया ब्रिक को पशु के बांधने के स्थान पर रख देते हैं तथा पशु को उसे चाटने देते हैं। इसकी फीडिंग से अनेक लाभ हैं। बछिया व पड़िया इसके प्रयोग से कम समय में प्रजनन योग्य हो जाती हैं। गर्भित अवस्था में प्रसव के उपरांत इनके प्रयोग से दुग्ध उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है तथा पशु शीघ्र गर्मी में आता है। पशुओं को गर्मी में लाने में विशेष उपयोगी है। गर्मी में लाने के अन्य उपचारों के असर को भी यह बढ़ाता है। सामान्य उससे कम दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की खली की आवश्यकता को भी काफी हद तक कम कर देता है तथा पशु प्रजनन संबंधी अन्य व्याधियों से भी पशु को मुक्त रखता है। अब बात आती है कि इसे बनाने की क्या विधि है। इसको बनाने की विधि अत्यंत सरल है। किसी बड़े उपकरण अथवा संयंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। पशुपालक एकल रूप से या समूह में सम्मिलित होकर इसको बना सकते हैं। ग्रामीण बेरोजगार इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। UMMB यानी यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक की एक ब्रिक का आकार सामान्यतः एक ईंट के आकार का बनाया जाता है। इसके लिए ईंट बनाने के ढांचे में थोड़ा फेरबदल कर उपयोग में लाया जा सकता है। इसका औसत वजन 3 किलोग्राम होता है। इसके लिए विभिन्न सामग्रियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसके निर्माण में जिन सामग्रियों को मिलाया जाता है वो इस प्रकार से है। मिनरल मिक्सर लगभग 450 ग्राम, शीरा 900 ग्राम, नमक 200 ग्राम, यूरिया 300 ग्राम, सरसों या मूंगफली की खली 300 ग्राम, चावल की भूसी 300 ग्राम, आटा आप गेहूं का, मक्का का या बाजरे का कोई एक आटा ले सकते हैं 450 ग्राम, चूना 125 ग्राम। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर खली व अनाज को बदला जा सकता है। आवश्यकता के अनुरूप अन्य तत्वों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। चूने को छोड़कर अन्य सामग्री को पीसने के उपरांत मिला लेते हैं, फिर इस सामग्री में चूना मिलाते हैं तथा वजन करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। साथियों, अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस सबसे कुछ ही देर में।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयकं पारितम्। राज्यसभया ह्यः एतस्मै अनुमोदनं प्रदत्तं। तत्पूर्वमेव एतत् विधेयकं लोकसभया पारितम् आसीत्। केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द रायः राज्यसभायां एतत् विधेयकं प्रस्तुतवान्। अनेन 69-1900 जन्म मृत्यु पंजीकरणाधिनियमे संशोधनं भवेत्, येन जन्म मृत्योः पंजीकरणे विलम्बः न भवेत् तथा समये एव पंजीकरणं भूयात्। लोकसभया ह्यः विनियोग विधेयकमपि पारितम्। ततः परं लोकसभायाः कार्यम् आदिवसपर्यन्तं स्थगितम्। सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्र प्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः यत् वैध तृतीय पक्षयानाभिरक्षणं विना इंधन विक्रयः न भवेत् इति उद्देश्येन प्रायोगिक परियोजना निर्मीयताम्। न्यायमूर्तिः संजय करोलः तथा न्यायमूर्तिः प्रशांत कुमार मिश्रः अवदताम् यत् भारतस्य मार्गेषु संचरन्तेषु यानेषु

जहां आरा आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को तलत महमूद साहब की आवाज में, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म छू मंतर के इस गीत को। लिखा था गीत को जहाँ निसार अख्तर साहब ने और संगीत ओपी नैयर का था। और अब साथियों आइए सुनते हैं ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बैजू बाबरा से।

आप अभी सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बैजू बावरा के। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत दिया था नौशाद साहब ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मल्हार में इस गीत को मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और साथियों, अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना सुन लीजिए। आज शाम 6 बजे से आप सुनेंगे 6:50 से कार्यक्रम हेलो बेस ग्रामीण। आज का विषय होगा प्रधानमंत्री भारत सरकार की भूमि सुधार योजनाओं पर जानकारी हेतु स्टूडियो में उपस्थित होंगे अभिषेक शुक्ला। टेलीफोन नंबर 25135 पर आप संपर्क कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप संदेश वो संपर्क सूत्र 9412225575 पर संपर्क कर सकते हैं, कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूचना समाप्ति। साथियों, अब ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर संपन्न होता है। अगला प्रसारण अब से कुछ ही देर में।

0: गोरखपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20 होने को हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। अब और सख्त हो जाएंगे विलंबित पंजीकरण के प्रावधान। प्रदेश सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया। इसे राज्य

0: राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी

0: ही किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,019,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240,97,00,000 रुपए की मदद अंशदान के रूप में मिलेगी।
2: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399,50,00,000 रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620,04,00,000 रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107,88,00,000 रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942,73,00,000 रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022,27,00,000 रुपए और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अनुपूरक बजट में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि यह बजट प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
3: सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स है, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स है उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हो उनको करवाना, इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
1: उधर सदन में अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और वेल में आकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि यह आचरण सदन की अवमानना है।
4: अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया।
1: वहीं मानसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में उर्वरक व बीज का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कल लखनऊ में संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हो गई।
5: यह बयान ब्रिक्स सदस्य देशों में सांख्यिकीय ढांचे को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नीति प्रासंगिक आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार तैयार करता है। बैठक के दूसरे दिन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया ने आधिकारिक आंकड़ों, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञान के आदान प्रदान, तकनीकी और पद्धतिगत प्रगति, मानव संसाधन विकास, AI, मेटा डेटा मानकीकरण और ओपन डेटा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिक्स के राष्ट्र

0: सांख्यिकीय कार्यालयों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक, नागरिक समाज संगठन और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे। श्री शेखावत ने यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात सारनाथ में धार्मिक स्तूप सहित पुरातात्विक खंडहरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
2: निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्य का विषय हम सब के लिए है, वाराणसी के लोगों के लिए निश्चित रूप से, लेकिन देश भर के लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सारनाथ की ये पुरातात्विक महत्व की संपदा, ये स्थल, ये पवित्र स्थल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में नामित हुआ है।
1: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और शामली सहित राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खेतों में खड़ी कुछ फसलों के लिए भी यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है।
3: जनपद हापुड़ में सावन मास की पहली तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना, धान सहित सभी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी बताई जा रही है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत युवा संगम के 7वें संस्करण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है। मंत्रालय ने बताया कि इसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, अब और सख्त हो जाएंगे विलंबित पंजीकरण के प्रावधान। प्रदेश सरकार ने पेश किया 59,954,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
5: यदि युवा को है रोजगार पाना, तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा, भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।

श्रोता साथियों, आप सब कैसे हैं? हैं, बढ़िया ही होंगे। देखो, अब गर्मी तो थोड़ी थोड़ी कम है रही है, क्योंकि महीना जो है बदल गया है और सावन को महीना लग गया है। बरसा रानी जो है विन ने तपती भई झुलसती भई गर्मी की जो अगन हती और वासे जो धारा हती जल रही हती, तो वाद को शीतलता प्रदान करी है अपनी ठंडी ठंडी बयार यानी बूंदन के संग। और सब तो सबन के जो मन हैं वे हर्षाए रहे हैं। कहा मनुष्य कहा पशु पक्षी, सबन के मन झूम उठे हैं जब बदरा आसमान में उठे हैं और नन्नी नन्नी बूंदियाँ पड़े हैं। कभों और कभों जो है रिमझिम रिमझिम बरसाऊ होवे है, तो सब खिल उठे हैं सबके चेहरा। प्रकृति जो है वो नहाए धोए के ऐसी सुंदर लगे है कि जैसे को सुंदरी श्रृंगार करके सुंदर लगे है। और जैसे दादू चातक पपीहा मोर, अब मोर को तो कहा गया तो खुशी से ऐसे नाच उठे हैं कि जाए देख के सब हम सबन को जो उनको हमारा सबको जो मन है वो और ज़्यादा खुश है जाए है। और बाग बगीचन में आम को पेड़ हो चाहे नीम को हो कदम्ब को हो पीपल पाकड़ हैं, इनके पेड़न पे जगह जगह जो है झूला यानी हिंडोला परे मतलब डारे जाते हैं। और अब तो परी गए हैं झूला है ना। और सभी वनिताएँ जो हैं हंसी चिठोली करती भई अपनी सखियन के संग महलार गावे हैं झूला झूलती भई। तो जो गायकी है मल्हार यानी कि झूला गीत हैं, तो विनते जो है हवा में जब उनको रस घोले है तो वातावरण और जो है संगीत में है के मधुर है जाए है। अपने यहाँ ब्रजमा तो पावस ऋतु को बहुत ही खासो महत्व है। यहाँ मंदिरन में जो है ठाकुर जी झूला झूल यानी कि झूलते भय दर्शन दिए हैं। और अपने ब्रज में तो जब पुरवैया हवा चले है झूमे जब मेघ झूमे हैं हरियाली धरती पर छाए जाए है, यमुना तट पर जो है यमुना जहाँ लहरें खूब अपने जो है उमड़ उमड़ के आवे हैं कदम की छाँव और वहाँ में फिर हिंडोला परे हैं। हिंडोला दर्शन की जब हम बात करें हैं तो अपने ब्रज में तो झूलनो उत्सव शुरू है जाए सावन लगते ही। और ब्रज के मंदिर में स्वर्ण रचित हिंडोले हैं परजाए हैं और रंग बिरंगी घटाऊ पड़े हैं। तो मौसम

के अनुरूप मल्हार गायकी होवे है, ब्रज बनताए हैं झुंड बनाए के, यानी कि खूब हंसे ठोठोली करते हुए कजरी मल्हार के गीत गावे हैं। और राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं तो विनके जो है वर्णन ब्रजभाषा साहित्य में कवियन ने करो है, चाहे पद्माकर होए, रत्नाकर होए या सूरदास होए। तो फिर हम तो एक बात जाने हैं कि वर्षा ऋतु को बहुत ही सुंदर महत्व, देखो पद्माकर कहा कहे हैं, आप देखो, भवरन के गुंजन बिहार बन कुंजन में मंजुल मरारान के गवनो लगत है, कहे पद्माकर गुमान हूँ मान ते हूँ ते प्राण हूँ तो प्यारी मन भावनो लगत है, मोरन को सौर घने घोर चहूँ ओरन हिंडोरन के बृंद छवि छावनो लगत है, नेह सर सावन में गेह बर सावन में झूलवो सुहावनो लगत है।

साथियों अब ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में आओ आगे बढ़ें, ब्रज की माटी तोहे प्रणाम में आओ, जानकारी लें। मानसी गंगा और गोवर्धन मुखारविंद के बारे में जानकारी दे रही है रश्मि शर्मा।

0: अपने कार्यक्रम में हम आपको ले चल रहे हैं श्री गोवर्धन धाम और बताएंगे मानसी गंगा के विषय में। गोवर्धन ब्रह्ममंडल को एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के गिरिराज पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगरिया पे उठायो हो। यहाँ को हर पर्वत शिला और कुंड भक्तन के प्रति आस्था को केंद्र है। यहाँ के कुंडन में सबसे पहलो और सबसे प्रमुख नाम आवे है मानसी गंगा को। आज हम मानसी गंगा के संदर्भ में ही आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ऐसो कहो जाए है कि यामे स्नान करे बिना गिरिराज जी की परिक्रमा को फल नाए मिले है। या कुंड के प्रादुर्भाव को लेके कई मान्यता है।
1: गिरिराज धारण की है ये मानसी गंगा। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मन से प्रकट की है मानसी गंगा महारानी। भगवान कृष्ण ने अपने मन से प्रकट किया है इनको। जब भगवान गौ चराते थे तो दैत्य के रूप में बत्सासुर नाम का रूप, गाय के बछड़े का रूप बना करके आया, भगवान की गायों में मिल गया, उनको मारने खाने लगा। तो भगवान अंतर्यामी है, वो देखते ही पहचान गए मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस है। उन्होंने उस दैत्य को पैर पकड़ करके और पृथ्वी पर मार दिया। वो उस पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी जो ज्योति थी वो भगवान में जा करके समा गई। और भगवान से ग्वाल वाल बोले, तुमने ये गऊ का बछड़ा मार दिया, गऊ हत्या का पाप लग गया।
2: महाराज जी, थोड़ा सा अगर आप ब्रज भाषा में भी बात करें तो हमारे दर्शनार्थियों को बड़ा प्यारा लगेगा, क्योंकि ब्रज का जो बोली होती है, आवाज़ होती है, ब्रज की जो भाषा होती है बड़ा मीठी होती है, जिस भाषा को ठाकुर जी खुद बोला करते थे।
1: यस, तो कृष्ण भगवान गऊ चराते चराते यहाँ पे जब वो उसको दैत्य को मार दिया तो ग्वाल वाल बोले, वही भाई काना तो जो है गऊ हत्या को पाप लग गो, अब तू गऊ हत्या के पाप है दूर कर तो तेरे संग हम खेलेंगे खाएंगे, नहीं तो भाई हम तेरे से अलग, हमारा तेरा खाना पीना खेलना सब बंद। तो भगवान बोले, भाई देखो मैंने

0: यार राक्षस मारो भाई, तुम नहीं कह रहे हो कि मैं पाप लग गो, तो तुम बता दो पाप कैसे दूर होगो। भगवान बोले भाई ऐसे दूर होगो, मैं ग्वाल बाल बोले देख भाई गंगा जी यमुना जी स्नान करके आवेगो तो तेरा पाप दूर होगो।
1: अच्छा
0: भगवान बोले गंगा यमुना स्नान कहाँ करवे जाऊंगो मैं तुमको यहाँ ही गंगा प्रकट करके और वहां में स्नान कर लूंगो तो मेरा पाप दूर रह जाएगा। तो भगवान ग्वाल बाल बोले भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तू यहाँ गंगा प्रकट कर। पर्वत की विशाल पर्वत जो वो 4 योजन ऊंचा, 4 योजन लंबा, 4 योजन चौड़ा, गोवर्धन विशाल पर्वत के ऊपर वो विराजमान थे। उसकी जो झील थी वहाँ वो बैठे हुए गाय चरा रहे थे, वहीं वो राक्षस को वध किया था। उसी झील में भगवान ने कहा तुम बैठिए सभी ग्वाल बाल, सभा को उसके बीच में मानसी गंगा का प्रकट मैं प्रकट अपने मन से प्रकट करता हूँ। भगवान ने बंसी ली अपनी, फेंट में लगी हुई थी बंसी, निकाली बंसी से पर्वत की शिला में ऐसे खोंट मारी तो उससे मानसी गंगा के रूप में धार प्रकट होकर के सभा को उसके बीच में मानसी गंगा का क्षेत्र परिवर्तित हो गया और सब ग्वाल बाल भगवान नंद बाबा यशोदा सभी ने आकर के उसमें स्नान किया, वो मानसी गंगा पवित्र हो गई। आज वो मानसी गंगा स्थल के सामने हम खड़े हुए हैं, वहाँ जो भी कोई आता है स्नान करता है मनोकामना मांगता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है
2: मानसी गंगा गोवर्धन गांव के बीच में है। परिक्रमा करने में दाईं ओर पड़े हैं और पूंछड़ी तिल लौटवे पे बाईं ओर जाके दर्शन हुए हैं। एक बार श्री नंद यशोदा और सभी विद्यासी गंगा स्नान का विचार बनाए के गंगा जी की माऊ चलन लगे। चलते चलते जब वे गोवर्धन पहुँचे तो वहाँ संध्या है गई। अतः रात्रि व्यतीत करवे के काजे श्री नंद महाराज ने श्री गोवर्धन में एक मनोरम स्थान सुनिश्चित करो। यहाँ पे श्री कृष्ण के मन में विचार आयो कि ब्रजधाम में ही सभी तीर्थन को वास है, परंतु ब्रजवासी गण या की महिमा ते अनभिज्ञ है, यही काजे मोगु कोई समाधान निकालनो होइगो। तो श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आयो कि श्री गंगा जी मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट भई। श्री कृष्ण जी के मन में ऐसा विचार आते ही श्री गंगा जी मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट भई। प्रातःकाल जब समस्त ब्रजवासी ने गिरिराज तलहटी में श्री गंगा जी को देखो तो विस्मित है के एक दूसरे से वार्तालाप करवे लगे। सबन को विस्मित देख के अंतर्यामी श्री कृष्ण बोले कि यह पावन ब्रजभूमि की सेवा हेतु तो तीनों लोकन के सभी तीर्थ यहाँ आए के विराजित हुए हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रज छोड़ के गंगा स्नान करवे जा रहे हैं, यही कारण माता गंगा आपके सन्मुख आविर्भूत भई हैं। यही काजे आप सभी शीघ्र ही या पवित्र गंगा जल में स्नान आदि कार्य संपन्न करें। श्री नंद बाबा ने श्री कृष्ण की यह बात को सुन के सब गोपन के संग जामे स्नान करो। रात्रि को सबने दीपावली को दीपदान करो। तबई ते आज तक दीपावली के दिन यह असंख्य दीपन की रोशनी करी जाए है। श्री कृष्ण के मन से आविर्भूत होवे के कारण ही यह गंगा जी को नाम मानसी गंगा पड़ो। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को श्री गंगा जी यहाँ प्रकट भई। आजो या तिथि को स्मरण करते हुए हजारों भक्तगण यहाँ स्नान पूजा अर्चना दीप दान आदि करे हैं। भाग्यवान भक्तन को कबहू कबहू यहाँ में दूध की धारा को दर्शन हुए है। श्री भक्ति विलास में कहो गयो है गंगे दुग्धमय देवी भगवन मानसो दबे। भगवान श्री कृष्ण के मन से आविर्भूत होवे वाली दुग्धमय गंगा देवी आपको मैं नमस्कार करू हूँ। यह मानसी गंगा को प्रसिद्ध गंगा नदी ते सर्वाधिक महात्म है। वह श्री भगवान के चरणन ते उत्पन्न भई है और इनकी उत्पत्ति श्री भगवान के मन ते भई है। यामी श्री राधा कृष्ण सखीन के संग यहाँ नौका विहार के लीलाओं करे हैं।
3: गोपाल चंपू में श्रील जीव गोस्वामी यहाँ की एक नौका विहार लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन देते हैं। एक बार क्या हुआ, सभी गोपियों को और राधा रानी को मानसी गंगा को पार करना था, तो उन्हें एक नाविक की जरूरत थी और भगवान कृष्ण एक नाविक का रूप रख के यहाँ पर उपस्थित थे। तो उन्होंने पूछा कि हमें मानसी गंगा को पार करना है, तो भगवान तैयार थे कि हाँ ठीक है आपको पार कराएंगे। तो नाव थोड़ी आगे चली तो भगवान ने नाव को रोक लिया और बोलने लगे

0: कि मुझे तो भूख लग रही है, पहले मुझे कुछ खिलाइए। गोपियों के पास दही मक्खन और नाना प्रकार की खाद्य सामग्री थी, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है खिला देते हैं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को खिला दिया और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि अभी तो मुझे नींद आ रही है, थोड़ा मुझे आराम करना है। तो गोपियां बोली कि अगर तुम ऐसे बोलोगे तो हम तुम्हारे पैरों को और हाथ को पकड़कर मानसी गंगा में फेंक देंगे। तो भगवान ने थोड़ा और आगे नाव चलाई और फिर बोले कि अभी तो ये जो नाव है डूबने वाली है, और आप क्या करिए, कुछ सामग्री जो है वो आप यहाँ से नाव इसमें नदी में मानसी गंगा में फेंक दीजिए। तो गोपियों ने थोड़ी वो सामग्री मानसी गंगा में फेंक दी, नाव थोड़ी और आगे चली। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अब तो तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, क्या किया जाए, नाव तो डूबने वाली है। तो सभी गोपियां डर गई और राधा रानी ने कृष्ण को पकड़ लिया। और जब राधा रानी ने कृष्ण को पकड़ा तो उनको समझ में आ गया ये तो कृष्ण है। तो ऐसी दिव्य लीलाएं इस मानसी गंगा में हुई है। तो ये थी मानसी गंगा की लीला। आइए अब हम चलते हैं मानसी गंगा के और भी कई तीर्थ स्थल जो जहां पर उपस्थित हैं। हरे कृष्ण।
1: यह मानसी गंगा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने श्री राधा कृष्ण नौका विलास लीला को दर्शन करो हो। मानसी गंगा में एक बार स्नान करवे थे जो फल प्राप्त हुए है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञ थे तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ के करने थे प्राप्त नाए हुए है। मानसी गंगा के तटन को पत्थर से सीढ़ी सहित बनवावे को श्री जयपुर के राजा श्री मानसिंह के पिता राजा भगवान दास को है। मानसी गंगा के चारों ओर दर्शनीय स्थानों को दर्शन करते भए श्रद्धालु परिक्रमा लगा में है। मानसी गंगा की परिक्रमा काउ भी स्थान से काउ भी समय उठा सके।
0: यहाँ से पूरी मानसी गंगा आप देख सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर के नामक एक राक्षस का वध किया जो कि एक छोटे से बछड़े के रूप में आया था। तो भगवान के मित्रों ने बोला कि आपने एक बछड़े का वध किया है, आपको गंगा में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा गंगा जाने की जरूरत क्यों है, क्यों ना गंगा को यहीं बुलाया जाए। तो भगवान ने ध्यान किया और गंगा जी यहीं प्रकट हो गई, जिनको बोलते हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा धाम की जय। एक और इसी से जुड़ी हुई लीला है जिसमें हम समझते हैं कि नंद महाराज और यशोदा माई, उन दोनों के मन में ये उत्कंठा थी कि वो गंगा में जाके स्नान करें। कई लोगों ने उनको इसके बारे में बताया तो उनके मन में हुआ कि क्यों ना जाके गंगा में स्नान किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप गंगा क्यों जा रहे हैं, हम आपके लिए गंगा यहीं बुला लेते हैं। तो अपने मन से भगवान ने गंगा उत्पन्न की। और मथुरा महात्म्य में यह बताया गया है कि कोई गंगा में स्नान करता है तो उसको मुक्ति मिलती है, लेकिन कोई अगर मानसी गंगा में स्नान करता है तो उसको कृष्ण प्रेम मिलता है। तो कृष्ण प्रेम अगर हमें प्राप्त करना है तो आइए मानसी गंगा में मानस स्नान करें। हरे कृष्ण।
1: एक बार श्री कृष्ण ने वृषभासुर दैत्य को वध करो, चूंकि वह असुर वृषभ के रूप में आयो हो तो श्री कृष्ण को गौ हत्या को पाप लग गयो और वह पाप के प्रायश्चित के कार्य बिनकु गंगा स्नान करनो हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन ते पाप नाशनी गंगा को प्रकट कियो और यह वही मानसी गंगा कही जाए है। एक मान्यता के अनुसार अपनी बहन यमुना पर श्री कृष्ण को प्रेम देख गंगा को भी ब्रज में स्थान पाएवे की आकांक्षा भई। तब श्री कृष्ण ने कृपा करके गंगा जी को ब्रज में स्थान दियो और मानसी गंगा को आगमन ब्रज में भयो। गंगा हरि मानस सो प्रकृति ब्रज में लहर लहर लहराए। या प्रकार सो मानसी गंगा को यहाँ प्राकट्य हुओ। गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाएं में धारण करो और यहाँ गिरिराज जी ने मानसी गंगा को अपने ऊपर स्थान दियो है। यह कुंड बहुत विशाल है।

या के जल में तैरवो बड़ो खतरनाक हुए है, क्योंकि या के नीचे तमाम पर्वत शिला उपस्थित हैं। कुंड को जलस्तर कम है वे पे ये शिलाएं प्रत्यक्ष दिखाई देवे हैं। यह कुंड लंबे समय तक एक कच्चे तालाब के रूप में रहो। आमेर के राजा भगवान दास ने या के तट पे हरिदेव जी को विशाल मंदिर बनवायो। फिर बिन्ने या कुंड के चारों ओर पक्के घाटों बनवाए। ये राजा भगवान दास अकबर के नवरत्नन में थे एक राजा मानसिंह के पिता है। राजा मानसिंह ने भी इन घाटन को नवीनीकरण और जीर्णोद्धार करायो। यह कुंड गोवर्धन नगर के मध्य में स्थित है। तीन कोस की परिक्रमा के रास्ता में ये पड़े हैं और यहाँ के चारों ओर तमाम मंदिर बने हुए हैं, जिनमें भरतपुर के राजान के द्वारा बनवाई गई कलात्मक छतरी, रानी किशोरी को महल, किशोरी श्याम को मंदिर आदि प्रमुख हैं। दिल्ली के लूट के बाद वापस लौटते समय भरतपुर के राजा सूरजमल यहीं रुके हैं। बिन्ने या कुंड में दीप दान करो और या कुंड के तट पे अपनी विनय के उपलक्ष में बिन्ने विजयोत्सव मनायो। तवई महल खास को निर्माण करवायो। यह रानी किशोरी के महल के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु दुर्भाग्यवश यह अब नष्ट है चुको है। जाई कुंड के तट पे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी ने साधना करी। संवत 1611 विक्रमी में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनको गोलोकवास भयो। तब इनके शिष्य ने अपने सिर मुंडवाए के सनातन गोस्वामी के पार्थिव शरीर को लेके मानसी गंगा की परिक्रमा लगाई। आज भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यहाँ बड़ो मेला लगे है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करने के कार्य में है। अष्टछाप के कवि में थे एक नंददास जी भी यही कुंड के तट पे स्थित मनसा देवी मंदिर के पास अश्वस्थ वृक्ष के नीचे पर्णकुटी में निवास करते भई साधना करो करते। हटी सिंह कुंतल जाट जागीरदार है, जिनके पूर्वज आरंभ ते ही सौंक की गढ़ी के शासक रहे। हटी सिंह कुंतल दिल्ली के राजा रहे, आनंद पाल तोमर के वंशज हते। औरंगजेब के समय में यहाँ स्थित मनसा देवी के मंदिर को ध्वस्त कर दिनों गयो। मनसा देवी हटी सिंह की कुल देवी ही। हटी सिंह ने मनसा देवी के ध्वस्त मंदिर को फिर से भव्य रूप दियो। मानसी गंगा की परिक्रमा कई भी स्थान से कई भी समय उठा सके हैं, मगर जहाँ से परिक्रमा आरंभ करे वहीं पे आए के परिक्रमा को विराम देना चाहिए। मुखारविंद से परिक्रमा आरंभ करे हैं और मानसी गंगा के पूर्व तट पे मुखारविंद मंदिर के निकट श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यहाँ से गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में चलते भई श्री हरिदेव जी को मंदिर है और फिर यहाँ से आगे परिक्रमा में चलते भई दान घाटी पे श्री दान बिहारी जी के मंदिर के दर्शन हुए हैं। चलते चलते श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री राधा मदन मोहन मंदिर, श्री बिहारी जी मंदिर, श्री विश्वकर्मा मंदिर, श्री वेंकटेश्वर मंदिर, श्री राधा वल्लभ मंदिर और यहाँ से श्री श्याम सुंदर मंदिर, श्री चकलेश्वर महादेव मंदिर इत्यादि होते भये श्री मुखारविंद मंदिर में आते हुए परिक्रमा को विराम देने हैं। मानसी गंगा के पूर्व दिशा में श्री मुखारविंद, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री किशोरी श्याम मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, श्रीमन महाप्रभु जी की बैठक और श्री राधा कृष्ण मंदिर स्थित हैं। दक्षिण दिशा में श्री हरिदेव मंदिर, ब्रह्मकुंड, श्री मनसा देवी मंदिर, श्री गौरा दाऊ जी, श्री गंधेश्वर महादेव जी, श्री यमुना मोहन जी, श्री महादेव हनुमान जी, श्री बिहारी जी मंदिर दर्शनीय है। वहीं पश्चिम दिशा में श्री गिरिराज महाराज, श्री साक्षी गोपाल मंदिर, श्री विश्वकर्मा, श्री राधा कृष्ण मंदिर स्थित हैं। उत्तर दिशा की ओर श्री राधा वल्लभ मंदिर, श्री नरसिंह, श्री श्याम सुंदर, श्री बिहारी जी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री नाथ जी, श्री नंद बाबा को मंदिर, श्री राधा रमन नूतन मंदिर, श्री अद्वैत दास बाबा को भजन कुटीर, श्री तीन

गौड़ी बाबा को आश्रम सिद्ध बाबा की भजन कुटीर श्री राधा गोविंद मंदिर भागवत भजन श्री चक्रेश्वर महादेव महाप्रभु मंदिर राजकुंड झूलन क्रीड़ा स्थान सिद्ध श्री हनुमान मंदिर इत्यादि दर्शनीय हैं।

आप अभी सुन रहे थे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम के अंतर्गत। ये जानकारी विषय था मानसी गंगा मुखारविंद मंदिर गोवर्धन के बारे में, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की हती। साथियों, आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यही वे शामिल है। तो आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

0: से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश हो रहा है आयुष्मान।
2: साथियों, अब से आप कुछ ही देर में सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: जन जन का हो रहा कल्याण, गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से

0: 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.2

0: 5% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है।
1: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। JPSC परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: मेडिकल परामर्श समिति नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। PV सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं।

0: चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noor-e Aulia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
3: According to reports, the Indian flag tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. Moreover, in a statement, Ministry of External Affairs, MEA, condemned the attack on the Indian flagged vessel, saying the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. It said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The ministry said that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities for the safety and security of the crew. With Anupam Mishra, Chirag

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का ये पहला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, नौजवान फिल्म का ये गीत है।

ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की फिल्म नौजवान के इस गीत में। लिखा था गीत को साहिर लुधियानवी ने, संगीत SD वर्मन का था। और अब साथियों आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने अभी सुना लता आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म दो बदन के इस गीत को, और गीत को लिखा था शकील बदायूं ने। अब साथियों अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं, ये एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है। आज शाम 6:50 से आप सुनेंगे हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज का विषय है भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं। जानकारी देने के लिए विशेष से संबंधित हमारे उपस्थित होंगे स्टूडियो में आज अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नावाई मथुरा। साथियों आप भी अगर भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन, भूमि सुधार आदि योजनाओं पर जानकारी हेतु आप जानकारी चाहते हैं तो फिर टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 25 30 135, और इसके साथ ही जो मथुरा से बाहर के श्रोता हैं स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565, और या फिर मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर आप अपना मैसेज भेज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। समय याद मतलब ध्यान रखिए आज शाम 6:50 से 7:20 तक। सूचना समाप्त हुई और अब साथियों कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: आपने सुना अभी लता मंगेशकर की आवाज़ में नीरज के लिखे इस गीत को, और फिल्म थी प्रेम पुजारी। अब साथियों आइए सुनते हैं ये अगला गीत।
1: ताला तूणी जोदर मस्त सोसुर बाड़ी रेल कोम झोमा झोम पा पिछले आलू दम आलू दम आलू दम डिंग पट्टा पट्टा डिंगड़ी पक्को

आप अभी सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में झुमरू फिल्म के गीत को। गीत और संगीत किशोर कुमार का ही था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि के अंतर्गत। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें तरह तरह के खूबसूरत भावों के रंगों से सराबोर ये रंग रंगीला कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें हंसी भी है, खुशी भी है, जिंदगी के सारे पहलुओं आपको इन सुरीले और मधुर भरे गीतों में मिलेंगे। तो साथियों, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इजाज़त फिल्म के इस गीत को। लिखा था गुलजार साहब ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। आज का ये कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही यहीं पर संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: साथियों, हिंदी वार्ता क्रम में आइए, आज ये विकेश निझावन से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता सुनते हैं। ये बातचीत संस्कारों को रूपती कहानियां इस विषय पर, तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
5: जीवन किसी एक घटना का नाम नहीं है, जीवन चलने का नाम है, जीवन निरंतरता है जिसमें हम चलते रहते हैं, सीखते रहते हैं और दुनियादारी के जो हमारे कारोबार है, हमारा जो कार्य व्यापार है, व्यवहार है, वो चलता रहता है। एक समय था जब कहानियाँ जीवन को संवारने में, जीवन में शिक्षा देने में, संस्कारों के संवाहक के तौर पे हमारे और आपके बीच में कही जाती थी, सुनी जाती थी, पढ़ी जाती थी। और जब साहित्य में कहानियाँ आती हैं तो वो सीख भी लेकर के आती हैं, संस्कार भी लेकर के आती हैं और समय और काल की उस अवधारणा को भी हमारे सामने रखती हैं जिसको जानना और समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो कहानी हमारे जीवन की, संस्कारों की संवाहक कैसे हो सकती है, ये आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार विकेश निझावन साहब हैं तो अम्बाला से, हरियाणा की भूमि से। निझावन साहब, आपका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत कर नमस्कार करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि साहित्य से जुड़ाव के साथ साथ जो कहानियों से आपका नाता जुड़ा, वो कैसे आपके जीवन में चल के आया?
6: जैसा कि आपने भी ये बात कही कि कहानियाँ हमारे जीवन से, साहित्य से, हमारे संस्कारों से ही हमें मिली हैं। मुझे अपना ही याद आ रहा है, छोटी उम्र में से ही, जब मेरा ख्याल मैं 6वीं-7वीं कक्षा में पढ़ता था, मैंने साहित्य काफ़ी पढ़ा छोटी उम्र में ही। घर में बड़े भाई बहन थे, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, सभी साहित्य से जुड़े हुए थे, तो मैंने भी उस उम्र में पढ़ना शुरू किया। साहित्य काफ़ी मन में बैठा मेरे। हालांकि शुरुआत मैंने छोटी छोटी कविताओं से की थी, लेकिन जल्दी

0: ही मेरा रुझान कहानी की तरफ मुड़ा। कुछ दिग्गज लेखक जैसे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, उस समय निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, इन लेखकों को मैंने बहुत पढ़ा। बस वो मेरे अंदर बैठते चले गए और अनायास में कहानी की तरफ मुड़ा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आ रही है, सातवीं क्लास में हमारे इंग्लिश के सिलेबस में रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कहानियां थी जो हमारे अध्यापक उसका अनुवाद करते थे, हम सुनते थे, तो उन्होंने बहुत छुआ मेरे को। मुझे याद आती है टैगोर जी की कहानी द पोस्ट मास्टर, होम कमिंग और काबुली वाला, इन कहानियों ने बहुत प्रभावित किया। मेरी कलम जब कहानियों की तरफ मुड़ी तो एक दो छुटपुट कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जल्दी ही मैंने एक लंबी कहानी लिखी जाने और लौट आने के बीच। मेरी वो कहानी सन 1973 में सारिका पत्रिका में छपी थी। उन दिनों कमलेश्वर उसके संपादक थे और सारिका बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी उन दिनों, और उस कहानी के प्रकाशन होते ही मेरा नाम मेरी कहानी चर्चा में आ गई। और वो कहानी कम से कम 8-10 भाषाओं में अनुवाद हुई और प्रकाशित हुई।
1: यानी आप कहानी पढ़ते पढ़ते एक पाठक से खुद एक कहानीकार हो गए, एक साहित्यकार हो गए, और उस जगत में आपका पदार्पण हुआ जिससे आप बचपन से जुड़े हुए थे। एक कहानीकार के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब एक कहानी का जन्म होता है, एक जब कोई लेखक लिखता है, कोई साहित्यकार जब उसको पाठकों के लिए लेके आता है, तो उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, वो जो एक प्लॉट जो चुराता है, वो कहीं से कोई एक घटना, कोई एक दृश्य या कोई भी एक विचार जब उसके अंदर खोदता है, तो उसको एक मूर्तिकार के तौर पे जब उसको गढ़ता है कहानी को, उसके चाहे उसके पात्र हो, चाहे उसकी पृष्ठभूमि हो, चाहे उसका संवाद हो, या फिर वो पूरा एक मैसेज जो देना चाहता है उसमें, तो कहाँ से शुरुआत होती है उसकी उसमें?
0: देखिए, कहीं ना कहीं कहानी का जो भाव होता है या उसका कथानक सारा तो नहीं हम कह सकते, जो उसकी विशेष घटना होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी होती है। कहीं ना कहीं कोई दृश्य, कोई बात, कोई घटना हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे अंतर्मन को छू जाती है, तो हम कहानी बुनने बैठते हैं। ये जरूरी नहीं कि उसका अंत या उसका क्लाइमेक्स हमारे जहन में हो
1: उस समय, हो जब लिखना शुरू करते हैं।
0: और कहानी जबरदस्ती नहीं लिख सकते हम, कहानी भी एक कविता की तरह है। अच्छी कहानी अपने आप बहती है, कलम किधर चली जाए,
1: शुरुआत होती है तो वो कहाँ जाके, एक नदी की तरह।
0: जो विशेष घटना है वो तो मन में होती है, हम उसको उठाते हैं, लेकिन कलम आगे अपने आप चलती है, पात्र अपने आप बोलने लगते हैं, कहानी तभी सजीव बनती है। और इसी तरह मैं अपनी कहानी के बारे में कहूँ, जैसा कि पहली कहानी जाने और लौटाने के बीच शुरुआत मैंने की और उसका मेन मुद्दा मेरे सामने था, बट वो कई समस्याओं से जुड़ती चली गई, दहेज समस्या, नारी समस्या, जीवन की जो प्रताड़नाएं हैं हम सहते हैं, और क्लाइमेक्स के बाद अंत अनायास ही हो जाता है कई बार कहानी के मुताबिक।
1: तो आपकी जैसे कहानियों का जो संदर्भ रहता है, आपकी जो कहानियों का दायरा रहा, वो क्या समाज रहा, समाज के संबंध रहे, उसका अंतर्द्वंद रहा, की कहानियों का जो संदर्भ है वो कहाँ से आप?
0: देखो, कहानियों की शुरुआत मेरी पारिवारिक मुद्दों से लेके ही हुई थी, पारिवारिक रिश्ते, लेकिन समाज की कई स्थितियों को मैंने देखा, महसूस किया। मैं सोचता हूँ कहानी एक यात्रा है, बाहर से भीतर तक की और फिर भीतर से बाहर
1: तक की।
0: हम जो देखते हैं उसको महसूस करते हैं, महसूस करते हुए हमारी अंदर की यात्रा, जो द्वंद चलता है, विशेष रूप से मैं उसे कहानी मानता हूँ। जो हमारा बाहर का है वो सब दिखाई देता है,
1: मतलब मेरी अपने मन की पीड़ा, मेरे अपने मन की घटनाएं, मेरे अपने जो तजुर्बे हैं, वो समाज से जब सरोकार बिठाते हैं या समाज को उसे जोड़ते हैं, वो कहानी होती है।
0: बिल्कुल वही होती है। और मैंने बहुत अब तक लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, मेरी 11 पुस्तकें कहानियों की छप चुकी हैं, और मैंने बहुत विषय उठाए, सामाजिक व्यवस्था को लेके भी लिखा, मेरी काफी कहानियां पुरस्कृत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
1: भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो जनमानस है, कि आज छोटी सोच और स्वार्थ भी इस अलगाव को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये जो बिखराव है कहीं आपकी उन कहानियों में आया या
0: निस्संदेह है? ये बिखराव तो आया ही आया है। अब शुरू में जो कहानियाँ लिखी
1: जी,
0: उनमें संबंध रिश्ते सब जुड़े हुए होते थे, लेकिन धीरे धीरे समाज में, परिवार में, व्यवस्था में ये बिखराव आए, तो स्वभावतः वो कहानियों में भी वो उतरते चले गए। कहानियां जीवन का आईना ही है,
1: जी, जो
0: हम
1: जी
0: देखते हैं,
1: तो
0: जो जी रहे हैं, जो महसूस करेंगे वही हम लिख पाएंगे।
1: तो अब कुछ समाधान आपको ऐसा लगता है कि अब हम इस दौड़ में दौड़ तो पड़े हैं, लेकिन कोई पड़ाव ऐसा आएगा जहां हम सब रुक के सोचेंगे कि नहीं, हम ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जिसका कोई ना परिणाम है ना कोई अंत है?
0: देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हम एक रास्ता दिखाएं कहानी में, एक आदर्शवादिता बताएं पाठक को, पर ज़रूरी नहीं है आज का पाठक उसको माने। मेरा ये विशेष रहा है कि मैं कहानियों में जो हम देख रहे हैं उसको दिखाएं पाठक को, मैं चाहता हूँ वो खुद माने, उसको पहचाने कि वो कहाँ गलत है। समाज, व्यक्ति, परिवार में हर जगह यही स्थितियाँ बनी हुई हैं। परिवार टूट रहे हैं, उसका असर समाज पे हो रहा है, पूरी व्यवस्था पे हो रहा है।
1: जी जी, आप पंजाब के, हरियाणा के उस इलाके में रहते हैं जहाँ देश की आज़ादी के समय बंटवारे का भी एक दंश लोगों ने झेला, वहाँ से लोग चल करके आए, तो आपकी किसी कहानी या साहित्य की किसी रचना में वो चीज़ भी उभर करके आई जो एक विस्थापन की एक दर्द था, चाहे भले ही सुनी हुई हो चाहे देखी
0: अभी
1: हुई हो?
0: हाल ही में मेरा एक उपन्यास प्रकाशित होने वाला है
1: जी,
0: तो उसके कई अंश में मैंने, जब माता पिता से सुनते थे बाहर से, जब विभाजन के समय में उन्होंने कैसे स्थितियां झेल ली, वो यहाँ आए कैसे स्थापित हुए, उसमें मैंने बहुत कुछ दिया है।
1: जी जी जी,
0: तो मुझे लगता है कि वो
1: पाठकों को वो अच्छा लगेगा उसमें। चलते चलते चूंकि संवाद के इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि कहानी हमारे यहाँ दादा दादी के माध्यम से, नाना नानी के माध्यम से, बतकही के रूप में, बहुत सारे क्षेत्रीय उसमें उसके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन कहानी जीवंत रही, कहानी लोग कहते रहे, कहानी के माध्यम से बातें आगे होती रही, तो इतना अभिन्न अंग आज हमसे कहीं छूटता जा रहा है। बल्कि कोई बच्चा भी अगर हमसे ये कहता है कि मुझे कहानी सुना दो, तो शायद हम सुना नहीं पाते, झिझक जाते, जबकि ये पहले एक स्वाभाविकता थी और उसके माध्यम से हम बहुत सारी बात भी कह देते थे।
0: अब जैसे मैंने बताया कि कहानियाँ या साहित्य पढ़ के मैंने लिखना शुरू किया, सिर्फ ऐसा नहीं है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, हमने बहुत कुछ सुना। हमारी बड़ी बुआ थी, वो हमें बहुत कहानियाँ सुनाती थी, वो सब अंतर मन में वही संस्कार हमें मिले, हमारे अंदर बैठे। लेकिन आज की पीढ़ी को हम सुना ही नहीं पाते, आज की पीढ़ी सुनना ही नहीं,
1: बल्कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको जब हम कहते हैं कि पैर छुओ, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, मतलब उन चीजों को बोलना पड़ता है,
0: हमें कहना पड़ता है,
1: कहना पड़ता है।
0: हमारे समय में नहीं कहते थे माता पिता, हम खुद सीख जाते थे,
1: जो जी रहे थे उसमें स्वाभाविकता से आ जाता था,
0: जो हम देखते थे वो हमारे संस्कार बने। हम आज की पीढ़ी को,
1: मतलब एक जीवन में उस समय आपको क्या लगता है, एक कहानी के तौर पे ही था, स्वयं में एक कहानी,
0: लेकिन
1: थी?
0: बहुत स्वाभाविक था। बहुत एक खूबसूरत कहानी होती थी वो,
1: जिसमें बहुत सारे पड़ाव होते थे।
0: आज की कहानी में पीड़ा बहुत है, दुख दर्द तब भी थे,
1: लेकिन एक समय ऐसा था कि लोग कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन वो जगह और वो संबंध उसको बुलाते थे। तो क्या आज वो जगह की पकड़, उस जगह की कशिश और संबंधों की जो कसावट थी वो ढीली पड़ गई है उसमें?
0: अब अर्थ बहुत हावी हो गया है, तो उसने इन संबंधों में बहुत दूरी ला दी है। जो अपनापन, भावनाएं थी, संवेदनाएं थी,
1: जो हम जीते थे वहां पे, वो हमको बार बार बुलाता था, कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन हमारा अपना जो वो था, समझ थी, अपना जो जुड़ाव था, वो ही हमको खींचता था। वो अब कहीं खाली हो गया है, कोई शहर और कोई गली और कोई मोहल्ला वो हमको याद नहीं करते, या हम उसको याद नहीं करते।
0: हालांकि हम याद करते भी हैं, लेकिन स्थितियों ने मजबूर कर दिया एक भागा दौड़ी के जीवन में, वही कि हम अर्थ की तरफ भाग रहे हैं, संबंधों को छोड़ रहे हैं, याद करते हुए भी हम उसको याद नहीं कर

0: पाते।
1: चलिए, परिस्थितियां तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन क्या अंत में मैं पाठकों के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहानी आज भी हमारी इस रूप में मदद कर सकती है कि अगर शायद हम बच्चों को कहानी के माध्यम से जोड़ें तो शायद बच्चे फिर उस पुरानी खुशबू और उसकी गंध के लिए फिर से हमारे पास आए तो।
0: कहानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आज से 50 साल पहले थी। हम बहुत कुछ उससे पा सकते हैं। अभी पिछले दिनों एक विद्यालय में मैंने कुछ विद्यार्थियों को कहानी के संदर्भ से जोड़ा और उन बच्चों का मन बिल्कुल बदला, उनका बहुत इंटरेस्ट बना इसमें, रुचि बनी। तो मैं चाहूँगा कहानी बनी रहनी चाहिए और हम पीछे ना हटें। हम कहानी सुनाएंगे तो सब सुनेंगे। मैं नवोदित लेखक को यही कहना चाहूँगा कि कहानी लिखे और बड़ी ईमानदारी से लिखे, कुछ कहने से घबराए नहीं, डरे नहीं। जो सच्चाई है, मन की बात है, उसको कहानी में लाएं।
1: तो शायद वो सुनने वाले को भी अपील करेगी,
0: बिल्कुल
1: उसको भी
0: बिल्कुल
1: जोड़ेगी। तो श्रोता बंधु, आप थे श्री बीकेश निझावन साहब, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
2: आप सुन रहे थे अभी हिंदी वार्ता क्रम में संस्कारों को रोपती कहानियां, इस विषय पर ली गई विकेश निझावन से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
1: विगत दिनों दो दिवसीय दौरे पर आगरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के पहले दिन फतेहाबाद मार्ग स्थित टाटा मैदान पर 342 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी है। 292 करोड़ से अधिक की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और 50 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। 342 करोड़ की धनराशि सड़क एवं संपर्क मार्गों का विकास, जल निकासी और नाला निर्माण कार्य, नगर विकास से जुड़ी योजनाएं, स्वास्थ्य एवं जन सुविधा से संबंधित परियोजनाएं, शिक्षा एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के कार्य सहित जन से जुड़ी स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा अब विकास की नई पहचान बन रहा है। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने खंदारी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सेवाजी मंडपम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के 1.5 लाख से अधिक शिक्षक और उनके आश्रित परिजनों सहित 7.5 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए का कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दौरान शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के बीच MOU साइन किया गया है। आगरा में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय और डॉक्टर MPS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल द्वारा दीप जलाकर किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की होटल, इंश्योरेंस, व्हीकल सहित एक दर्जन से अधिक नामी लिमिटेड कंपनियों द्वारा 1,500 से अधिक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कर तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए 457 युवाओं को रोजगार दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि जितने भी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आए हैं उन्हें केवल मिलने वाले इस रोजगार से संतुष्ट नहीं होना है बल्कि इससे बेहतर अवसर के लिए भी प्रयास करना है। उन्होंने रोजगार मेले के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और सेवायोजन कार्यालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आगरा में विगत दिनों खेत बचाओ अभियान, सुपर अल नीनो और सूखे के प्रभाव के तहत

0: बिचपुरी स्थित आरबीएस कॉलेज के कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित किसानों के साथ संवाद और जनपद स्तरीय तिलहन मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री द्वारा ट्रैक्टर की चाबी, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप, बिजी मिनी किट, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित तिल के बीजों और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कर किसानों को लाभान्वित किया गया। बाद में सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर किसानों को बीज उर्वरक की उपलब्धता कराने के साथ साथ संवाद, प्राकृतिक खेती और किसान जागरूकता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और कहीं भी खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी वहां भी जल्द खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मंत्री ने कहा,
1: चढ़ावा में जो चोरी के मामले आए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने SIT गठित किया और इस बात को साफ तौर पर कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और कोई भी कितना भी बड़ा होगा प्रभावशाली वो बख्शा नहीं जाएगा। उस संदर्भ में तुरंत SIT बनी और तत्काल 8 लोगों को के ऊपर जो जिम्मेदारियां आई, बरामद भी पैसा हुआ और उनको जेल भी भेजा जाता।
0: विगत दिनों आगरा में वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम को सफल बनाने के लिए करीब 62 लाख वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा वृक्षारोपण कर किया गया। आगरा जनपद में 5,000 से अधिक स्थानों पर 61,80,000 से अधिक पौधे रोपे गए, जिनमें 21 लाख पौधे वन विभाग सहित करीब 41 लाख अन्य विभागों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा,
2: वृक्ष जो है वो सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए है, इसलिए इनका लगना जरूरी है, इनकी प्रति चेतना जगाना भी जरूरी है। माँ के नाम एक पेड़, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको भावनात्मक रूप से इसलिए जोड़ा कि सिर्फ रोपित ना करें, उसको पोषित भी करें।
0: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा के सर्किट हाउस में मंडल के अधिकारियों के साथ संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं पर्यटन विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, पर्यटन स्थलों के विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है।
3: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
4: केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं स्थित फोर लीव प्रकाशगंज उज्जैनी बदायूं लखनऊ को नई सीधी रेल सेवा का शुभारंभ बीते दिनों किया। बदायूं ऐशबाग लखनऊ विशेष गाड़ी संख्या 05018 को उज्जैनी रेलवे स्टेशन से दोपहर 12 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रेलगाड़ी बदायूं स्टेशन पर 12:15 पर पहुंचेगी और 12:17 पर यहां से रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली और मोहेबल्लापुर होते हुए 9:10 पर ऐशबाग लखनऊ पहुंचेगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया,
5: बदायूं से लखनऊ के लिए ट्रेन की स्वीकृति ले ली थी और मेरा सौभाग्य है उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला।
4: मरीजों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं परिसर में अमृत औषधि केंद्र का शुभारंभ बीते दिनों उप प्रधानाचार्य डॉक्टर नेहा सिंह की उपस्थिति में किया गया। अमृत औषधि केंद्र का संचालन HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री को आमजन तक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत दवाइयां एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री बाजार मूल्य की तुलना में 50-90% तक की छूट पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे मरीजों पर उपचार का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है। मुख्य विकास अधिकारी बदायूं के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनपद की CM डैशबोर्ड पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जनपद स्तरीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैम व मैम बच्चों के सुधार और आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीनों की उपलब्धता पर बाल विकास परियोजनाओं अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी केंद्रवार सैम व मैम बच्चों का कुपोषण प्रबंधन करते हुए पोर्टल पर सुधार की प्रगति करते हुए उनके समक्ष समस्त बाल विकास योजना अधिकारी अपनी अपनी सेक्टरवार और केंद्रवार आख्या प्रस्तुत करेंगे। उनके संबंध में साप्ताहिक बैठक आयोजित कराई जाए और विभाग CM डैशबोर्ड प्रत्येक केंद्र पर समस्त प्रकार की वजन मशीनों की उपलब्धता का विवरण लेकर बैठक में प्रतिभाग करें। साथ ही समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ

सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी निर्देश दिए गए। जनगणना 2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के फील्ड कार्यों के सफल गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बीते दिनों आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन ने की। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि जनगणना 2027 राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और जिला जनगणना हस्तपुस्तिका का निर्माण उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी चार्ज अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा का पूर्ण अनुपालन करते हुए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करें तथा फील्ड कार्यों को पूरी पारदर्शिता, गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ संपादित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि DCHB फील्ड कार्य के दौरान प्रत्येक चार्ज अधिकारी प्रतिदिन प्रगति से जिला जनगणना अधिकारी को नियमित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कार्यों की

0: दृष्टिगत एडीजी बरेली जोन बरेली रमेश शर्मा व डीआईजी बरेली जोन बरेली अजय कुमार साहनी ने जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के साथ संयुक्त रूप से बदायूं के कछला गंगा घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में सेक्टर व जोन बनाते हुए वह मजिस्ट्रेट अधिकारी नामित किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रकाश की बेहतर व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। शिविर के संचालन के लिए भी स्थापना पूर्ण अनुमति लेने सहित अन्य मापदंड बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा आपात स्थिति में त्वरित सहायता एवं प्रभावी समन्वय के लिए क्रेडिटेड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC तथा पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम से संपर्क करें।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: कार्यक्रम हवा के में प्रस्तुत है वृक्ष जीवन परंपरा के वाहक ललित गुप्ता इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं।
5: पृथ्वी पर रहने वाले मानव किसी न किसी रूप में अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। इसके दो प्रमुख घटक हैं, भौतिक और जैविक। भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक सुषमा के प्रति जितना आदर व आकर्षण है वह किसी से छिपा नहीं है। प्रकृति के आंगन में विचरण करने से वह सुखद अनुभव करता है। तभी तो हम हजारों रूपए खर्च करके प्राकृतिक दृश्यों, पेड़ों इत्यादि को देखने कश्मीर व साउथ की तरफ जाते हैं। प्राचीन काल से ही वृक्षों की पूजा का विधान हमारी संस्कृति में है। अग्नि इंद्र की पूजा कर मानव ने अपनी आस्था प्रकृति से जोड़ा है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त पर्यावरणीय शिक्षा का साक्षात उदाहरण है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, मैं पृथ्वी मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। माता और पुत्र का संबंध बताकर भारतीय मनुष्यों ने अपनी विराट स्थिति का परिचय दिया। तुलसी, पीपल, आक, आंवला आदि वृक्षों की पूजा का विधान प्रस्तुत कर प्रकृति से मानव जुड़ाव को रेखांकित किया गया। सामाजिक वानिकी आज कोई नई बात नहीं है। इसके अंतर्गत वे सभी योजनाएं समाहित हो जाती हैं, जिसके अधीन वृक्षों से जनता का अपना भावात्मक संबंध स्थापित कर लेती है। इस हेतु वृक्षारोपण एवं पौधशालाओं की स्थापना का सत्कार्य परंपरागत ढंग से करती आई है। इसके अंतर्गत जनता को पशुओं के लिए घास, ईंधन के लिए लकड़ी तथा जीने के लिए ऑक्सीजन तक प्राप्त होती है। समूचे विश्व में राजस्थान अपने थार मरुस्थल से जाना जाता है। राजस्थान का नाम लेते ही बियावान व उजाड़ रेगिस्तान, रेत के टीले, तेज आंधियां तथा कटीली झाड़ियों की तस्वीरें सामने आती हैं। किंतु यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरी ओर प्रकृति ने अपनी अनमोल संपदा के मोती भी मुक्त हृदय से इस धरा को प्रदत्त कर रखे हैं। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अनेक ऐसी जड़ी बूटियां व औषधियां पादपों का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी इनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है तथा वृक्षों पर जीवन का आधार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। किंतु वर्तमान में इन औषधीय पादप जो कि हमारी प्राचीन विरासत है से हमारी नई व भावी पीढ़ी अनजान है। साथ ही अनजाने में यह इस प्राकृतिक संपदा को नष्ट भी कर रही है, क्योंकि उन्हें इस तथ्य का ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा पादप, कौन सा भाग किस प्रकार से औषधि निर्माण के काम आता है। इसलिए हमें घर घर में, विद्यालयों में ऐसी पादप वाटिका का विकास करना चाहिए जिसमें स्थानीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों व औषधीय पादपों को लगाया जाना चाहिए। कत्था, पीली कंटीली, बबूल, ब्राह्मी, कैर, आंक, बथुआ, शंख पुष्पी, सफेद धतूरा, आंवला, भृंगराज, डंडाथोर, रतनजोत, वन तुलसी, नागफनी आदि औषधीय पादप ऐसे हैं जिनको घरों व विद्यालयों में लगाकर विद्यार्थियों व जनता

साइंस को ज्ञान कराकर इनसे लाभ उठाया जा सकता है, जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है। जनता चाहे ग्रामीण हो या कस्बों की, शहरों की, वन की, इसकी उपज उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थायी रूप से एवं सरल ढंग से की जानी चाहिए। वृक्षों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, पर्यावरण शरणार्थियों में कमी आएगी। शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण शहरों में बढ़ रही जनसंख्या का दबाव कम होगा व परिस्थिति की संतुलन बना रहेगा। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वन विकास होगा, जिससे पर्यावरण में सुधार होगा व जनता को वन उपज की जरूरतें पूरी हो सकेगी। वृक्षों के विकास से कटाई कम होगी, वन सुरक्षित रहेंगे। पेड़ों के अभाव में कटकर बहने वाली उपजाऊ मिट्टी को रोकने में सफलता मिलेगी, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकेगा। वृक्षों से ही जीवन संभव है, इससे विश्वास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित बांधों, तालाबों, नहरों, सड़कों व रेलवे लाइनों आदि को भूमि कटाव से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। वृक्ष लगाकर रेगिस्तान के विस्तार को रोका जा सकेगा व पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप योजनाओं का लाभ मिलेगा। मरुस्थल के टीले हवा में उड़कर खेतों की उर्वरा भूमि को रेत के फैलाव के कारण अनुपयोगी एवं बंजर बना देते हैं। वृक्ष लगाकर इससे सुरक्षा मिलेगी। वृक्षों की उपादेयता को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, लेकिन मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया, जिससे संघर्ष हुआ, जिसका परिणाम हमारे सामने है। वृक्ष व प्रकृति समय व परिस्थितियों के अनुसार माँ की ममता के समान सुरक्षा देती है तो उलझने पर पिता के समान क्रोध करती है। वृक्षों का संरक्षण करना हमारा पावन कर्तव्य है। हमें प्रकृति का दोहन करना चाहिए जितना संतुलन के लिए आवश्यक है। आइए संकल्प करें कि औषधीय पादप, वृक्ष, पेड़ पौधे लगाकर उनका संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी करेंगे व धरती माता का श्रृंगार कर उसे पादप रूपी आभूषणों से सुसज्जित कर अपने विकास को नई दिशा देंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत ये जानकारी। वृक्ष जीवन परंपरा के वाहक और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे ललित गुप्ता। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष दर्पण।

0: आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: को जितेंद्र सिंह का नमस्कार।
0: कार्यक्रम के संयोजक हैं ओपी सिंह।
1: आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिन की शुरुआत अगर अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छे अच्छे विचारों के साथ की जाए तो वास्तव में हमारा पूरा दिन अच्छा रहता है और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी मिलता है। मित्रों, इस जीवन में बड़ी ही जिम्मेदारियां रहती हैं, काफी सारे काम करने होते हैं। आजकल कह सकते हैं कि हर आदमी पर इतने काम हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी भाग दौड़ है, और वास्तव में उन जिम्मेदारियों के बीच भी स्वस्थ रहना, अपनी सेहत पर ध्यान देना, यह भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मित्रों, ध्यान रखिए, चुनौती ज़रूर है, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपनी बाकी सभी कामों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समय बस अपनी सेहत के लिए निकालना है। बाकी सारे काम तो हम करते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विस भी टाइम पर करवाते हैं, अपने मोबाइल की बैटरी भी चार्ज करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, इस शरीर को भी थोड़ी सी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इस शरीर को भी यानी हमारी बॉडी को भी थोड़ा सा चार्ज करने की ज़रूरत होती है। वास्तव में जीवन का आनंद तभी है जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हों, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से कर पाएंगे।

लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तब हम अपने किसी भी कार्य को ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। और ख़ास करके हम जो है विद्यार्थियों के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि अपनी सेहत पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जब आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यानी कह सकते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए एक अच्छी सेहत का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल लोग जिस तरह की अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं और उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं इससे हमारे पूरे दिन का संतुलन खराब हो जाता है। लोग विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, मधुमेह है यानी डायबिटीज है, रक्तचाप है, हृदय रोग है आदि तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसे देखते हुए हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह से स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम अपनी दिनचर्या को नियमित करें, सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें और सही समय पर अपना भोजन करें, और अपनी इस व्यस्त जीवन शैली में थोड़ा सा समय शारीरिक व्यायाम, योगा आदि के लिए भी निकालें। और इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें अपनी दिनचर्या में पौष्टिक भोजन को भी महत्व देना है। आजकल देखा जा रहा है कि लोग जायके की ओर ज़्यादा भागते हैं, जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि वास्तव में जो हम भोजन कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए पौष्टिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे जो पारंपरिक भोजन हैं अगर हम उनका सेवन करें, उन पौष्टिक भोजन को ग्रहण करें, तो इससे भी हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा और काफ़ी सारी बीमारियां अपने आप ही दूर रहेंगी। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी इस जीवन को जीने का आनंद आता है, और कहा भी गया है कि स्वस्थ तन में ही रहता सदा स्वस्थ है मन, इसलिए स्वस्थ रहने का हमेशा करते रहें प्रयत्न।

0: Confessional. श्रोताओं, किसी नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सिर्फ भोजन नहीं बल्कि जीवन की पहली सुरक्षा, पहला पोषण और माँ के स्नेह का सबसे अनमोल उपहार है। जन्म के बाद शिशु को मिलने वाला माँ का दूध उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक विकास में भी काफी सहायक होता है। यही कारण है कि स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं जिला अस्पताल मथुरा से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP राठौर।
1: देखिए, ये विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्तनपान के प्रति जागरूक करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज के युग में स्तनपान को जरूरी नहीं समझते, तो फॉर्मूला फीड वगैरह देते हैं। तो हमें स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए जागरूक करने के लिए ही ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है।
0: बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के कितने समय बाद उसको स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है?
1: देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले तो उसको जो कुछ भी ग्लूकोज वगैरह होता है माँ की नाल से मिल रहा होता है, उसका जो लीवर होता है उसमें मुश्किल से 2-3 घंटे के लिए ही रिजर्व ग्लाइकोजन होता है। तो बेहतर ये है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर हम बच्चे को स्तनपान करवा दें, जिससे कि बच्चे को ग्लूकोज की कमी न होने पाए।
0: जैसा कि बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, जन्म के बाद माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसकी अपनी क्या विशेषता होती है?
1: देखिए, जन्म के बाद जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये दूध खराब होता है और अक्सर वो निकाल के उसको फेंक देते हैं, ये गलत है। ये जो गाढ़ा पीला दूध होता है, ये दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस दूध को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। बच्चे को ये दूध पिलाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इस दूध में ना बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिंस, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाती हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इसलिए इस दूध को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। माँ के निप्पल साफ करें केवल गुनगुने पानी से, और साफ करने के बाद बच्चे को पहली बार जो दूध निकले वो जरूर पिलाना चाहिए।
0: माँ के दूध की जो पौष्टिकता है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन से उसमें ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं?
1: देखिए, सही बात तो ये है कि आज तक दूध में कौन कौन से पोषक तत्व हैं इसको कोई जान ही नहीं सका। अनगिनत पोषक तत्व हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दूध जो है ना एक संपूर्ण भोजन है। जो हमारे प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते, वो खाना नहीं जानता, तो ऐसे में उसको सारी चीज़ें मिलती रहें जिसके उसको शरीर का विकास होता रहे। तो प्रत्येक जीव के जब वो पैदा होता है उसकी माँ के स्तनों में दूध आता है, इसी को पी के बच्चा बड़ा होता है। और माँ के दूध का कहीं भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हर स्पीसीज का माँ का दूध अपने बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। एक स्पीसीज का दूध दूसरे के लिए नहीं हो सकता, ये स्पेसिफिक होता है। तो माँ का दूध हमारे मनुष्य का है तो वो अपने बच्चे के लिए है, अगर गाय का है तो गाय के बच्चे के लिए है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो माँ का दूध जो है ना बच्चे को संपूर्ण आहार देता है, इसलिए इसका योगदान होता है उसकी ग्रोथ में। और जब तक बच्चा खाना नहीं जानता तब तक बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए।
0: स्तनपान कितने समय तक बच्चों को कराना चाहिए?
1: देखिए, स्तनपान से क्या होता है कि शुरू शुरू में बच्चे का वजन मान लीजिए नॉर्मली 2.5 किलो होता है, 2.5 से 3, 3.5 तक भी हो सकता है। तो शुरू में तो बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो माँ के दूध से पूरी होती रहती है, लेकिन लगभग 4 महीने बाद बच्चे का वजन इस तरह का हो जाता है कि अब दूध से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। हो सकता है माँ को अब इतना दूध न हो कि वो बच्चे की भूख को शांत कर सकें। तो ऐसे में 4 महीने के बाद बच्चे को कुछ पतली पतली चीज़ें, लिक्विड डाइट देना शुरू करें, जिससे कि बच्चे को और भी न्यूट्रिएंट मिलते रहें। हमारे दूध में जो सबसे बड़ी कमी होती है वो होता है कि इसमें आयरन नहीं होता है
0: जी।
1: तो अगर जो बच्चा केवल दूध पर ही बना रहता है तो उसमें धीरे धीरे ना आयरन की कमी हो जाती है, और ऐसे बच्चों को खून की कमी होने की वजह से एनीमिया हो जाता है। ये 4 महीने के बाद ज़्यादातर बच्चों को हम लिक्विड डाइट थोड़ी थोड़ी शुरू कर देनी चाहिए।
0: जब माताएं हमारी बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो स्तनपान कराने का सही तरीका, उसकी सही पोजीशन क्या रहती है?
1: देखिए,

0: सबसे पहले तो यह है कि माँ को हमेशा बैठकर ही स्तनपान कराना चाहिए, और अक्सर अगर नहीं समझ में आए तो आजकल स्तनपान की विधियों की फोटो आती हैं, आप उस फोटो को देखिए। बच्चे के जो बटक्स हैं वो आपकी हथेली पर होना चाहिए, सिर आपकी कोहनी पर होना चाहिए, बच्चा लगभग 45 डिग्री एंगल पे उसको आप रखें अपने हाथों पे, और माँ को इस तरह से बच्चे को लगाना चाहिए। जो नवजात शिशु होता है उसके लिए क्या होता है कि एक वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स होता है, जैसे ही बच्चे को आप निपल्स के पास ले जाएंगे वो ऑटोमेटिक उसको सक्कड़ना स्टार्ट कर देगा। बस आप बार बार उसे हाथ से पकड़ के जबरदस्ती उससे मुंह से न छुआएं, वरना तो वो इधर उधर करेगा। बच्चे का रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक होता है, जैसे हम रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, तो बच्चे को बस आप ब्रेस्ट से लगाएं वो ऑटोमेटिक अपना दूध पीना स्टार्ट कर देगा। ध्यान रहे कि ब्रेस्ट का जो काला वाला हिस्सा है वो पूरा हिस्सा बच्चे के मुंह के अंदर होनी चाहिए, और अच्छे से पूरी शील्ड बन जाए तभी बच्चा आराम से सक कर पाएगा। अगर प्रॉपर शील्ड मुंह के चारों ओर नहीं बनती है तो उसमें एयर जाती होगी, और जैसे बच्चे पीते हैं ना पुछ पुछ की आवाज़ जब निकलती है, इसका मतलब प्रॉपर शील्ड नहीं बनी और इससे बच्चा पूरी अच्छे से दूध नहीं पी पाएगा।
1: जिन माताओं के दूध नहीं उतरता है ठीक से, तो उसके लिए क्या उपचार या कोई निराकरण हो सकता है?
0: देखिए, सही बात तो यह है कि जब तक किसी माँ को कोई विशेष बीमारी नहीं है तब तक ये कहना कि माँ को दूध नहीं आएगा ये गलत है। हमारे नेचर ने इस तरह की व्यवस्था की है कि जिसको बच्चा दिया है उसका दूध भी जरूर आएगा, और दूध की एक खास बात होती है, जैसे जैसे बच्चे की गर्भावस्था बढ़ती है वैसे वैसे ही ब्रेस्ट में मिल्क भी मैच्योर होता है। तो अगर किसी का बच्चा 7 महीने पर ही हो गया तो वो ब्रेस्ट मिल्क भी 7 महीने जितना ही मैच्योर हो पाया होगा। तो ये बहुत अच्छी खास बात है कि जितनी उम्र का बच्चा, जितने गर्भावस्था का बच्चा होगा उसी हिसाब से माँ के स्तनों से दूध निकलता है। और दूध जो होता है ना, वो मेनली जो दूध का श्रावण होता है स्तनों से वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है, तो अगर माँ अगर उसको पिलाने की इच्छा है तो दूध जरूर आएगा। जब बच्चा सक करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन से मिल्क इजेक्शन होता है। इसी तरह माँ अगर दूध पिलाना चाहती है तो मिल्क फॉर्मेशन के लिए हार्मोन चाहिए प्रोलैक्टिन, वो भी सीक्रेट होता है। तो माँ की इच्छा पर सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि अगर वो मानसिक रूप से माँ पूरी तरह से खुशी से दूध पिलाना चाहती है दूध अवश्य आएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शुरू से ही बच्चों को फॉर्मूला फीड देने लगते हैं, ऊपर का दूध देने लगते हैं, तो दूध तो माँ के तभी निकलता है जब बच्चा शक करेगा। अगर शुरू से बच्चा शक ही नहीं करेगा तो दूध नहीं आएगा। इसलिए यह कहना कि माँ को दूध नहीं आया ये गलत है। आप लगातार उसको पिलाइए, साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि आपका खान पीन थोड़ा अच्छा रहे, क्योंकि अब एक नहीं आपको दो शरीर को पालना है। वैसे तो ये है कि आप खुद नहीं खाएंगे तब भी नेचर की ये व्यवस्था है कि मदर अपने शरीर से बच्चे को दूध पिलाएगी, नेगेटिव एनर्जी में चली जाएगी, उसका शरीर पतला होता जाएगा लेकिन बच्चे को दूध अवश्य मिलेगा। तो अगर माँ पिलाना चाहती है तो दूध जरूर आएगा। अगर बिल्कुल ही किसी को कोई समस्या हो उसी कंडीशन में आप ऊपर का दूध बच्चे को दें।
1: यानी जो हमारी माताएं हैं उनको भी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें खाने पीने से दूध की क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे माँ को भी दूध मिलना चाहिए, फल वगैरह मिलने चाहिए, उसकी डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। और जैसे माँ भाई अब दो बच्चे को पाल ली है, पहले दो रोटी खाती थी तो हो सकता है उसे तीन की ज़रूरत पड़े, तो माँ अपने बच्चे के हिसाब से खाना खाए, माँ अच्छी तरह से खाना खाएगी तभी बच्चे को प्रॉपर दूध आएगा।
1: जो कामकाजी महिलाएं होती हैं जिनको काम पर भी जाना होता है, सुबह जाती हैं शाम को आती हैं, और बच्चों को अगर उनको दूध अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाना हो तो उसके लिए वो क्या करें?
0: देखिए, ऐसी कंडीशन में अगर माँ वास्तव में दूध पिलाना चाहती हैं और उनको प्रॉपर मिल्क आ रहा है तो वो चाहें तो दूध निकाल के रख सकती हैं, फ्रिज में दूध को हम स्टोर कर सकते हैं। आजकल बहुत सी जगह जो आपके हैं ना मिल्क ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज जो जगह हैं वो खुल गई हैं, तो विदेशों में बहुत से लोग हैं ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज भी करते हैं। तो मदर आप चाहें तो अपने हाथ से ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके फ्रिज में रख जाएं, और जब बच्चे को देना हो तो उसे थोड़ी देर बाहर निकाल के रखें, जब वो वातावरण के टेम्परेचर पर आ जाए तो उस बच्चे को आप आराम से पिला सकते हैं। पर ध्यान रहे कि दूध को ढक के रखें और फ्रिज में रखें जिससे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। बाहर ऐसे खुला छोड़ देंगे तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाएंगे, बच्चे को नुकसान होगा, इसलिए रख रखाव के साथ आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके भी पिला सकते हैं।
1: कुछ लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि बच्चों को दूध पिलाने से शारीरिक बनावट खराब हो जाएगी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, सही बात तो ये

0: यह है कि यह बहुत ही मिथ्या है लोगों के मन में। वास्तव में क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो एक लेडीज़ का करीब 8 से 10 किलो वजन बढ़ता है, जिसमें 4 से 5 किलो तो यूटरस के अंदर होता है, बाकी 4-5 किलो मदर का बॉडी वेट बढ़ता है। और वो इसलिए बढ़ता है कि हर कोई माँ, आप देखते हैं एक पंछी भी होते हैं तो बच्चा पैदा होने से पहले वो अपने आप को, अपने शरीर को इतना स्टोर करके रखते हैं कि अपने बच्चे को खिला पिला सकें। तो वास्तव में जो 5 किलो वेट जो मदर का बढ़ा, 4-5 किलो वेट मदर का बढ़ा, वो बच्चे के फीडिंग के लिए ही बढ़ा था। तो अगर वो बच्चे को दूध पिलाएंगी सही मायने में तो उनका फिगर और मेंटेन होगा, फिगर खराब नहीं होगा, फिगर और मेंटेन होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि लोग जो सोचते हैं कि दूध पिलाने से फिगर खराब होता है, ये गलत है। उल्टा, दूध पिलाने से बॉडी फिगर और मेंटेन होता है। साथ ही साथ जब तक माँ दूध पिलाती रहती है प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा रहता है, और उसकी वजह से ना मदर को तब तक दूसरी प्रेगनेंसी नहीं होती है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम भी करता है।
1: तो क्या बच्चों को लगभग 1 साल तक भी दूध पिलाया जा सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, माँ का दूध पिलाया जा सकता है। वो बात अलग है, उसकी पूर्ति नहीं होगी आपको ऊपर से कि उसको धीरे धीरे वीनिंग जिसे कहते हैं खाने पीने थोड़ा सा देना पड़ेगा, लेकिन दूध आप बराबर 1 साल या उससे ज़्यादा ही पिला सकते हैं। देखिए हम यही कहेंगे, हर जगह आपने लिखा हुआ देखा माँ का दूध सर्वोत्तम है, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। कोई नहीं जानता कि इस दूध में कितने तत्व हैं, ये नेचुरल व्यवस्था है। जो बच्चा, जिस लेडी के जैसा बच्चा पैदा हुआ है वैसे ही उस माँ का दूध निकलेगा, ये एकदम स्पेसिफिक होता है, तो इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हम फॉर्मूला फीड वगैरह जो भी देते हैं उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हम नहीं जानते, हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, तो हम सारी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं है, और जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, उसका IQ अच्छा होता है। और जो बच्चे फॉर्मूला फीड पर रहते हैं उनमें और ब्रेस्ट मिल्क वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो बच्चे स्वस्थ, हस्त पुष्ट और खुश रहते हैं, ऐसे बच्चे ज़्यादा तरक्की करते हैं बजाय फार्मूला फीड के। क्योंकि शुरू के 2 साल तक बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और ब्रेन डेवलपमेंट के जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो ब्रेस्ट मिल्क में ही होता है।
1: आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ रहे जिला अस्पताल मथुरा से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP राठौर जी। और जैसा कि बताया कि स्तनपान के कितने महत्वपूर्ण फायदे हैं हमारे बच्चों के लिए, तो जो भी माताएं हैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान कराएं, क्योंकि स्तनपान ही बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है और उनके स्वास्थ्य का आधार है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारी माताओं को विशेष रूप से जागरूक करने के लिए आपका धन्यवाद।
0: सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस विश्व स्तनपान सप्ताह में सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूक करें। धन्यवाद।

मित्रों, इसके बाद अब हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का सावधानी पूर्वक उपयोग करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम इसके माध्यम से अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं, नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं, लेकिन इसके उपयोग में सावधानी बरतना भी उतना ही आवश्यक है। ये बात सही है कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन चुका है, और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग इस पर अपना हुनर भी दिखाते हैं। काफ़ी सशक्त माध्यम है ये पूरी दुनिया से जुड़ने का, लेकिन इसके उपयोग में कुछ सावधानियों को बरतना भी उतना ही आवश्यक है। जैसा कि ये सावधानियाँ ये हैं कि अपने निजी जानकारी जो है सोशल मीडिया पर कभी भी साझा नहीं करें, निजी जानकारी को केवल अपने तक ही सुरक्षित रखें। अपना पूरा नाम, घर का पता, कोई पासवर्ड या कोई बैंक से संबंधित जानकारी किसी के साथ भी साझा नहीं करें। अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी किसी के साथ सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करें। और हमेशा सुरक्षित पासवर्ड और प्राइवेसी का उपयोग जरूर करें। अपने प्रोफाइल पर लॉक भी लगा सकते हैं। हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड, जिसमें अक्षर हो, अंक हो, विशेष चिन्ह हो, इनका उपयोग करें। समय समय पर पासवर्ड भी बदलें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें और हमेशा अपरिचित लोगों से भी सावधान रहें। जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करें। लिंक और फाइल से बचें। अनजान लिंक, आकर्षक ऑफर या संदिग्ध फाइलों पर क्लिक ना करें, ये फिशिंग हमले भी हो सकते हैं। और हमेशा सोशल मीडिया पर ये ध्यान रखें कि अपनी लोकेशन शेयर नहीं करें। जैसा कि बहुत सी सारी जो साइट्स होती हैं, तो वहाँ पर एक प्राइवेसी सेटिंग होती है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और पैसों के लेन देन संबंधी कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं करें, या कोई अनजान व्यक्ति पैसों की मांग करता है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब तक व्यक्तिगत रूप से वो आपसे संपर्क ना करे, तब तक कोई भी पैसों का लेन देन आपको सोशल मीडिया पर नहीं करना है। बस यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अब हमने उठा लिया है अपना अखबार, साझा कर लेते हैं आज की कुछ खास

0: खबरों को आपके साथ। मित्रों, आज की खास खबरों में है कि अब नगर में देर रात तक रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंटों में होने वाले विवाद और झगड़े की बढ़ती हुई घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस रेस्टोरेंट संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी करने जा रही है। इसके अनुसार अब रात के 11 बजे के बाद रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। इसी के साथ एक और खबर है, राजस्थान सरकार ने अपनी सीमा में आने वाले ब्रज क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की ब्रज विकास क्षेत्रीय योजना लागू करने की घोषणा श्री कृष्ण की लीला स्थली से की है। योजना के तहत भगवान श्री कृष्ण के संदीपनी गुरु के आश्रम तक जाने वाले मार्ग कृष्णागमन पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन यानी सन 1914 में 5 अगस्त को ट्रैफिक लाइट की शुरुआत हुई थी। पहली ट्रैफिक लाइट की बात करें तो ये सन 1914 में आज ही के दिन अमेरिका द्वारा लगाई गई थी। वो और आज ही के दिन अमेरिका और जर्मनी ने बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो मित्रों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्याज दर्पण, प्रस्तुति जितेन सिंह की और संयोजक ओपी सिंह थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, प्रस्तुत है ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी अमेजिंग इकोनॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम टीकाकरण अभियान। और इस कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजय गुप्ता और सुरेंद्र राजेश्वरी।
2: श्रोताओं, मानव सभ्यता ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। यदि किसी एक खोज ने करोड़ों लोगों का जीवन बचाया है तो वो है टीकाकरण। ये केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है बल्कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। चेचक है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी जैसी अनेक गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण पाने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या है टीकाकरण, क्यों आवश्यक है, इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए आज आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में उपस्थित हैं राज्य टीकाकरण अधिकारी उत्तर प्रदेश डॉक्टर अजय गुप्ता जी। डॉक्टर अजय, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे सुनने वालों को बताएं कि ये टीकाकरण क्या है।
3: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद देता हूँ आकाशवाणी लखनऊ का कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी को पता है कि जब बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो माँ से कुछ ताकत लेके आता है, खून लेके आता है, शरीर की पूरी संरचना लेके आता है, या समय के साथ जो चीजें उसकी समाप्त होती हैं वो है उसके रोग से लड़ने की क्षमता। और इस रोग से लड़ने की क्षमता को अगर हमको किसी भी मानव शरीर में विकसित करना है तो इसके दो उपाय हैं, या तो उसको हम पैसिव तरीके से यानी खून के माध्यम से डाल दें, और या फिर दूसरा तरीका है कि उसके अंदर हम रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप करें जिसको हम टीकाकरण कहते हैं।
2: जी,
3: विभिन्न बीमारियों के लिए देखा गया है कि अगर हम उनकी वैक्सीन जो हम लगाते हैं उसमें कुछ समय 4 से 6 सप्ताह लगता है और धीरे धीरे वो रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। आप सभी की जानकारी में ला दूं कि वैक्सीन बेसिकली कुछ नहीं होता, ये वो कीटाणु या रोगाणु होते हैं जिनकी हमने रोग उत्पादन करने की क्षमता बिल्कुल समाप्त कर दी है। तो हमारे शरीर में जब भी ये जाते हैं तो शरीर इनको अपना दुश्मन समझता है और इनके खिलाफ लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब माँ से हमको प्राप्त होता है बच्चे के अंदर जो रोग से लड़ने की क्षमता, वो 3 से 6 महीने के अंदर धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो जरूरी है कि वातावरण में, आप भी जानते हैं, ढेर सारी किस्म के विषाणु और कीटाणु फैले हुए हैं, तो इसलिए जरूरी कि ये वैक्सीनेशन समय पर प्रॉपरली और सही स्थान पे इसको जरूर लगाया जाए बच्चों के लिए।
2: डॉक्टर अजय, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 से 2025 के बीच जीरो डोज वाले बच्चे यानी कि जिन्हें एक

0: भी टीका नहीं लगा है। उनकी संख्या 2.36 लाख से घटकर 1.29 लाख हो गई है। ये कैसे संभव हुआ है?
1: देखिए, टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही ज्यादा इस पे तवज्जो दे रही है। और आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 2023 में एक विशेष अभियान चलाया था माह जनवरी, फरवरी और मार्च में, जिस दौरान हमने 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को और गर्भवती माताओं को पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुहिम चलाकर हमने चिन्हित करने का प्रयास किया कि किन लोगों को टीका नहीं लगा हुआ है। और इन सारे लोगों को हमने 3 माह के दौरान इनको सभी को हमने टीका लगाया। और 0 डोज की बात करें तो देखिए, बेसिकली क्या है कि अगर हम सर्वप्रथम कब बच्चा हमारे संपर्क में आता है जब उसको हमको टीका लगाना है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब 6 सप्ताह का बच्चा हो जाता है। आप जानते हैं, डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद वो बच्चा हो सकता है मायके में डिलीवरी कराया हो फिर अपने घर पे जाए, या फिर डिलीवरी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कराया हो फिर घर पे जाए, तब उसे समझ में आता है कि नहीं, सरकारी सुविधाएं हमारे पास मुहैया है जहां पे निःशुल्क टीका प्राप्त होता है। तो ऐसे ही बच्चे जिनको 6 सप्ताह पे कोई भी टीका न लगा हो, इनको हम 0 डोज बोलते हैं। और ये पहला अवसर होता है जब हमको अपने टीकाकरण सत्रों पे या हमारी जो एनएम बहन जी टीका लगा रही हैं उनके पास ये चिन्हित बच्चे हो जाते हैं। तो ये संख्याएं शुरू में बहुत ज्यादा थी, उसका कारण भी आप जानते हैं कि आपने देखा होगा 2020-21 के आसपास कोविड महामारी फैली हुई थी, उस दौरान काफी स्वास्थ्य सुविधाएं और प्लस टीकाकरण हमारे काफी बच्चे वंचित रह गए थे। तो वो संख्या काफी ज्यादा थी, तो उसके सपोर्ट के लिए हमारे गावी एक होती है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, इन लोगों ने सहयोग किया और हम लोगों ने इनको चिन्हित किया और विशेष अभियान चला के इन सारे बच्चों को हमने टीका लगाया। साथ में आपकी जानकारी लेके बता दूं मैं कि डिजिटलाइज वे में, यानी कि ई कवच एक हमारा पोर्टल था उस समय और आजकल यूविन चल रहा है, इनमें सारे बच्चों को हम चिन्हित करते हैं। ये बच्चे उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष के किसी भी स्थान पे चले जाएंगे, अगर एक बार इसमें चिन्हित हो गए तो उनको वहां टीका मुहैया हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि हर 3 से 4 महीने पे हम दस्तक अभियान चलाते हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार की एक अलग मुहिम है जो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। इसमें हमारी आशा बहुओं के द्वारा घर घर जाके एक अभियान के तहत हम उनको जागरूक करते हैं कि टीका क्यों जरूरी है। उसके अतिरिक्त ये भी जागरूक करते हैं कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, उसके अलावा साफ सफाई के लिए जागरूक करते हैं। तो ये जागरूकता अभियान के लिए हम लोग इसके साथ साथ टीका के अभियान को भी हम लोग सम्मिलित करते हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो इन्हीं की वजह से हमारा 0 डोज बच्चों की संख्या काफी ज्यादा घटी हुई है।
0: उत्तर प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण 10 साल पहले 51.1% था, जो अब बढ़कर 88.6% हो गया है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन से सरकारी पहल हैं?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है जो पूरे भारतवर्ष में शायद ही किसी राज्य ने किया हो। और पहले भी जैसे हम लोग बीमारी स्टेट कहे जाते थे, आप सभी को पता है, अब वो बीमारियों का तमगा हट चुका है, बल्कि टीकाकरण के क्षेत्र में हम अब इस समय इंडिया को लीड कर रहे हैं। हमारे द्वारा चलाई गई मुहिम और जो हम लोग नए इनोवेशंस कर रहे हैं, वो भारत सरकार उसको अपने ऊपर ले रही है और पूरे भारतवर्ष में लागू कर रही है। इस मुहिम के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि सन 2023 की जनवरी में हम लोगों ने एक मुहिम चलाया और समस्त सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक कार्य दिवस पे जो हमारे शहरी क्षेत्रों में अस्पताल थे उनमें टीकाकरण का कार्यक्रम चालू कर दिया कि जब भी हमारी अस्पताल खुलेंगे सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, तो इसमें टीका लगाया जाएगा। पहला तो ये हमने कार्यक्रम किया। दूसरा, हमने अभी आपको बताया कि विशेष टीकाकरण अभियान के रूप में किया। उसके अतिरिक्त हम लोग प्रत्येक माह, प्रत्येक बुधवार और शनिवार को लगभग हर एक गांव में एक टीकाकरण का अभियान चलाया जाता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, VHND। इन दिवसों पे केवल टीकाकरण ही नहीं, समग्र स्वास्थ्य के विकास के लिए हम लोग उसमें फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज, मैटरनल हेल्थ की सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज, एडोलेसेंट वैक्सीनेशन सभी कुछ मुहैया करा रहे हैं। और साथ में जागरूकता के तहत उनको हम लोग सिखा भी रहे हैं कि साफ सफाई क्यों जरूरी है, महामारी के दौरान बच्चियों को कैसे रहना चाहिए, सारी चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि पहले हम सघन मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक मुहिम थी, उसमें मात्र 2 वर्ष के बच्चों को लिया जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नई मुहिम चलाई और 5 वर्ष तक के समस्त छूटे हुए बच्चों को इनमें हम टीका के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया, और जिसको आज पूरे भारतवर्ष में 5 वर्ष तक के बच्चों को भी टीका लगाया जाता है, छूटे हुए बच्चों को।
0: वाह डॉक्टर जी, उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कराने में अभी बहुत सारी चुनौतियां होंगी, और कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं और उनसे कैसे निपटा जा रहा है?
1: देखिए, उत्तर प्रदेश ने समस्त चुनौतियों का बहुत अच्छी तरीके से सामना किया और बहुत अच्छा ही इस पे हम लोगों ने कार्य किया है। मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, स्पेशली हमारी जो आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और एनएम बहन जी हैं, जिनके द्वारा हर टीकाकरण सत्र से पहले घरों पे जाकर एक बार दस्तक दी जाती है कि भाई कल आपके गांव में टीका लगने वाला है। दूसरा, एक हम लोग डिजिटलाइज रिकॉर्ड हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग समस्त बच्चों का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 57 लाख बच्चे प्रतिवर्ष जन्म लेते हैं और 67 लाख

0: महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को हम लोग टीका लगाते हैं। तो इतने बड़े पूरे उसके मुहिम को हम लोग डिजिटलाइज कर चुके हैं। और उसके अलावा इसी के निगरानी के तहत अगर कोई बच्चा टीकाकरण से छूट जाता किसी महीने, तो हम उनको पकड़ लेते हैं, फोन के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है, उसके घरों पर हमारी टीमें जाती हैं। अगर किसी कारणवश वो नहीं लगवाना चाहते तो उनको समझाने बुझाकर, आप देखिए तो शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर आप देखते हैं कि टीका नहीं लग पाता है, स्लम बस्तियां होती है, पेरी अर्बन होता है, शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन सारी चीजों के लिए हमने शहर के अंदर जितने भी अस्पताल है प्रत्येक दिन टीकाकरण लगा रहे हैं। तो ये सारी मुहिम जो अगर हम समग्र रूप से देखें तो इन समस्त चीजों पे हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और काफी अच्छा हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है।
1: कई माता पिता को लगता है डॉक्टर कि टीके के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं या वो बच्चे की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित भी रहते हैं, आप उन्हें किस तरह समझाते हैं?
0: देखिए पहले तो मैं बता दूं कि जब भी बच्चे को सुई लगेगी तो थोड़ा दर्द तो होगा। अगर सुई शरीर के अंदर जा रही तो दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। कुछ टीकों में इसकी थोड़ा सा ज्यादा मात्रा होती है, किसी में कम होती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसको माँ बाप को समझना होगा और हमारे कार्यकर्ता इनको समझाने का प्रयास भी करते हैं कि जब भी टीका देते हैं तो इन बिंदुओं पे जरूर ध्यान रखते हैं, बताते हैं कि इस टीके का क्या दुष्प्रभाव, यानी प्रभाव आ रहा है तो बुखार हो सकता है, उसके लिए हम लोग पैरासीटामोल के सिरप्स छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए गोलियां प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि जो भी माता पिता के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा होती है, हम हमेशा उनसे ये कहते हैं कि कभी भी आप सोशल मीडिया पे मत जाइए, कभी भी आप गूगल सर्च मत कीजिए। हमारे कार्यकर्ता लगभग हर एक गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आशा बहुएं हैं, एनम बहन जी, उनसे आप बात करिए, पास के नजदीकी अस्पताल पे जाइए और उनसे बात कीजिए, कहीं भी भ्रम की स्थिति पैदा ना हो इसलिए इन लोगों से बात कीजिए और अपना जो भी मन में संशय है उसको दूर करिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी कुछ अच्छा कार्य कर रखा है और इसकी वजह से भ्रम की स्थिति काफी कम हो चुकी है उत्तर प्रदेश में।
1: डॉक्टर अजय, 10 साल पहले 51% बच्चों का टीकाकरण हो रहा था जबकि अब लगभग 89% बच्चों का पूरा टीकाकरण हो रहा है। सरकार की इस उपलब्धि के बाद आप हर परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अपर मुख्य सचिव महोदय का, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिनके दिशा निर्देशन में ये उपलब्धि हम लोगों ने अर्जित किया है। और इसके लिए हम सारे अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिनकी लगन और मेहनत की वजह से आज उत्तर प्रदेश ने ये उपलब्धि हासिल की है। मैं समस्त जनता से, समस्त माता पिता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए आप देख रहे हैं कि लगभग 88% बच्चे पूरी तरह से टीके से सुरक्षित हो चुके हैं। 11% बच्चों के अंदर कोई एकाध टीका नहीं लगा होगा या मन में संशय है, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम उपलब्ध है जिसके लिए आप कभी भी कोई सवाल जवाब कर सकते हैं, नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों पर जाके अपनी मन के संशय को दूर कर सकते हैं। टीका बहुत ही जरूरी है और इसलिए भी जरूरी है कि लगभग बच्चों में होने वाली मृत्यु को, हम एक तिहाई से ज्यादा मृत्यु को जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उनको हम इन टीका के माध्यम से दूर कर देते हैं। और मैं आपकी सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जब हम लोग बाहर निकलते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में भी देखते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी देखते हैं, हमारे डॉक्टर साहबान खुद ही कहते हैं कि सर आप लोग के टीकाकरण अभियान की वजह से ये टीका से होने वाली जितनी बीमारियां हमारे ओपीडी में नहीं आती हैं।
1: डॉक्टर अंतिम प्रश्न, भारत में अब लड़कियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ है, अगर किसी की बेटी 14 वर्ष की है तो उसे क्या जानना चाहिए?
0: देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इसके लिए अपने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बहुप्रशिक्षित, बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे कि ग्रीवा का कैंसर जो बहुत ही खतरनाक है, महिलाओं में होने वाली दूसरी गंभीर कैंसर है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। अगर हम इस तरह से बात करें तो लगभग हर दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में ग्रीवा के कैंसर से या सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं की मृत्यु होती है। उसके अलावा ये इन्फेक्शन जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है वो बहुत ही खतरनाक टाइप का इन्फेक्शन होता है। इसके माध्यम से लगभग नहीं लक्षण भी होते हैं अगर इन्फेक्शन हो जाता है बच्चियों में, और ज्यादातर ये 9 साल से लेकर जब बच्चियां 14 साल के बीच में या उसके बाद भी इनका इन्फेक्शन होता है, और कई बार इसके जो रूप देखने को मिलते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं 10 से 15 साल के बाद आते हैं, यानी कि शुरू में हम पकड़ नहीं पाते हैं कि इनमें इन्फेक्शन हुआ है। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए HPV का वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है और देखिए इस बार भारत सरकार ने इसको लाया है। और सबसे मुहिम बात, अच्छी बात यह है कि केवल सिंगल डोज आपकी बच्चियों को लगाना है और भारत सरकार ने इसके लिए हम लोगों ने उम्र जो निर्धारित की है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप होता है इम्यूनाइजेशन के लिए, उन्होंने 14 से 15 साल के बीच की बच्चियों के लिए लगाने का हो गया। इस समय मैक्सिमम बेनिफिट इन बच्चियों को होगा और मैं यही चाहूंगा कि सभी माता पिता अपने जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको जरूरी टीका लगाए। अभी ये बच्चियों के लिए ही उपलब्ध है और टीके की कहीं कोई कमी नहीं और मुफ्त में उपलब्ध है। मार्केट में इसका रेट अगर आप जानेंगे तो बहुत ही ज्यादा दुख होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इसका रेट है।
1: अच्छा, श्रोताओं, ये थे राज्य टीकाकरण अधिकारी उत्तर प्रदेश डॉक्टर अजय गुप्ता। डॉक्टर अजय, आपने टीकाकरण के बारे में विस्तार

अभी आप सुन रहे थे ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी अमेजिंग इकोनॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम टीकाकरण अभियान विषय से संबंधित। और इस विषय से संबंधित कार्यक्रम में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अजय गुप्ता और सुरेंद्र राजेश्वरी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे अभी लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रेशमा और शेरा का ये गीत। जयदीप ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था।

आप सुन रहे थे अभी राज फिल्म के गीत को अलका याग्निक अभिजीत की आवाज़ में। और आइए आप सुनते हैं ये अगला गीत।

किशोर कुमार, बप्पी लहरी और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना प्यारी बहना फिल्म के गीत को। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे प्रतिज्ञा फिल्म के गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अनु मलिक के संगीतबद्ध में इस गीत को शब्दों में ढाला था गीतकार समीर ने, और नो एंट्री फिल्म के इस गीत को जो अभी आप सुन रहे हैं सोनू निगम और आलिशा चन्ना की आवाज में। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज शाम 6:50 से हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज का विषय होगा कार्यक्रम में भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं। जैसे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित होंगे अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा। किसान भाइयों, भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण उपमिशन, भूमि सुधार आदि योजनाओं पर जानकारी देने हेतु स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेषज्ञ अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा। आप कार्यक्रम में शामिल होकर इनसे अपने प्रश्नों की जानकारी, उत्तरों की जानकारी ले सकते हैं प्रश्न पूछकर, और इसके लिए आप टेलीफोन नंबर 25135 पर संपर्क कर सकते हैं। मथुरा से बाहर के जो श्रोता हैं स्टडी को डबल से लगाएं 0565 अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में कार्यक्रम में आप सीधे जुड़ सकते हैं। समय याद रखिए आज शाम 6:50 से 7:20 तक। सूचना समाप्ति और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी का ये गीत आवाज़ नीरज श्रीधर की थी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे फूल और कांटे फिल्म का गीत। साथियों, इसी गीत के साथ ही ये कार्यक्रम फिल्म संगीत का अब यहीं पर संपन्न होता है। साथियों, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज शाम 6:50 से आप सुनेंगे हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज का विषय होगा भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं। जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे श्री अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा। किसान भाइयों, भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन, भूमि सुधार आदि योजनाओं पर जानकारी देने हेतु स्टूडियो में आज उपस्थित रहेंगे अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा। आप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टेलीफोन नंबर करके शामिल हो सकते हैं। फ़ोन नंबर है 25135। मथुरा से जो बाहर के श्रोता हैं, स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565, या फिर मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस

संबंध में आप कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कार्यक्रम का समय कृपया ध्यान रखें, आज शाम 6:50 से 7:20 तक। सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज प्रस्तुति है रश्मि शर्मा की।

नमस्कार मित्रों, कुछ लोग चाय के बिना नहीं जागते, कुछ लोग मोबाइल के बिना नहीं रहते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दिन शुरू ही नहीं होता जब तक उनका पसंदीदा गीत कानों में न घुल जाए। तो लीजिए आपकी यादों की पोटली, आपकी फरमाइश गीतों की ऐसी लिस्ट जो आपके दिल के सबसे करीब है, ऐसे ही प्यारे से गीतों को लेकर मैं आ गई हूँ, आपकी अपनी आरजे रश्मि।

यहाँ फोन आपका, फरमाइश आपकी और गीत भी आपकी पसंद का, तो मुस्कुराइए क्योंकि अब बजने वाला है वो गीत जिसे सुनकर शायद आप भी गुनगुना उठें।

0: और हाँ, अगर आपके दिल में भी कोई गीत दस्तक दे रहा है तो हमें फोन कीजिए, क्योंकि यहाँ फरमाइशें सिर्फ सुनी नहीं जाती, पूरी भी की जाती हैं। तो चलिए संगीत के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं आपकी पहली फरमाइश के साथ। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता में सांवरिया गांव थरावर तहसील कुमेर जिला डीग राजस्थान से।
0: जी स्वागत है सांवरिया जी कार्यक्रम में। कैसे हैं और परिवार में, गांव में सब बढ़िया?
1: अजी बहुत अच्छे हैं, हमारा आपसे बहुत अच्छा संयोग है जो आप ही आती हो।
0: जी
1: हम तो बहुत खुश हैं आपसे।
0: जी चलिए, ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे श्रोता जो हैं उनको प्रसन्नता होती है और कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। और इसी के साथ आज सावन का पहला सोमवार है, भोलेनाथ की पूजा अर्चना चाहे वो हमारे गांव हो या शहर हो, सभी जगह, सभी मंदिरों में, देवालयों में भोलेनाथ को अभिषेक किया जा रहा है। और इसके साथ ही कांवड़िया भी अपनी कांवड़ लेकर चल पड़े हैं भोलेनाथ की जल अभिषेक के लिए। और आज आप क्या कहेंगे इस अवसर पर?
1: इस अवसर पर हम तो यही कहेंगे कि भोलेनाथ जी ने श्रावण मास का जो ये सोमवार आता है इस पर गंगा माँ को अवतरित किया था।
0: अच्छा जी,
1: इसीलिए इसकी सोमवार को ही पूजा की जाती है भोले बाबा की।
0: अच्छा जी, तो आप करते हैं पूजा या नहीं करते?
1: क्यों नहीं करेंगे साहब, जब हम मानते हैं और हमारे अंदर है और हम जवान से बोल रहे हैं, जरूर करेंगे साहब।
0: अच्छा जी, चलिए, तो अभी हो गई पूजा या अभी करेंगे? आज
1: मैं जाऊंगा अभी साहब।
0: अच्छा चलिए, अब जाएंगे पूजा करने के लिए। तो बढ़िया है, पूजा करिए और भोलेनाथ सब पर दया करें, कृपा करें। और इसी के साथ आपकी पसंद जानना चाहूंगी।
1: जीवन मृत्यु फिल्म से रिमझिम बरसता सावन होगा।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो आकाशवाणी
0: जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए
1: जी। मैं राजकुमार राठौर नवनीत नगर भूतेश्वर से बोल रहा हूँ
0: जी। राठौर जी, कैसे हैं आप?
1: जी। मैम अच्छा हूँ, और आप कैसी हो
0: मैं भी अच्छी हूँ। क्या करते हैं राजकुमार जी?
1: जी? मैम मैं मुकुट का काम करता हूँ, ठाकुर जी का मुकुट जो बनते हैं।
0: आहा, कितने समय से कर रहे हैं काम?
1: मुझे तो करीबन 20 साल हो गए।
0: मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ हो रही है
1: हाँ मेरे पास ही होती है
0: तो
1: मैन्युफैक्चरिंग।
0: आप स्वयं करते हैं या और लोग काम करते हैं, किस तरीके से?
1: मैं खुद भी करता हूँ और लोग भी काम करते हैं।
0: जी। तो एक दिन में लगभग कितने मुकुट और माला के जो सेट हैं वो तैयार हो पाते हैं लगभग?
1: काफी सारे हो जाते हैं। वैसे तो हमारे पास होलसेल का ही सारा काम है, तो ये मान के चलो कि हर हफ्ते करीबन 500 दर्जन।
0: अच्छा, तो उसमें बेसिकली आप किस पैटर्न के मुकुट बना रहे हैं?
1: जैसे कि आपने देखा होगा रामलीला में जो बड़े बड़े मुकुट जो होते हैं, जिसमें रामलीला वगैरह करते हैं, किरदार जो होते हैं, बड़े बड़े मुकुट ऐसे समझ लो जैसे कि 3 इंची से लेके और 18-20 इंची तक।
0: जी।
1: हाँ ये साइज रहता है।
0: तो उसमें किन-किन चीजों का प्रयोग करते हैं आप बनाने के लिए?
1: हमारे पास ज्यादातर सीट होती है, गत्ता होता है, और उसमें लेस वगैरह लगती है, डोरी का काम होता है।
0: जी, तो फिर बेस वो रखते हैं और उसके बाद में फिर उसको सजाते हैं, ऊपर से
1: हाँ
0: डेकोरेट
1: फिर
0: करते
1: उसमें
0: हैं।
1: हाँ पहले

0: वो मशीन पर तैयार होता है, उसके बाद में मोती सितारे वगैरह लगते हैं उसके अंदर, फिर उसकी सजाई होती है, पक्का करा जाता है, फिर जब जाकर सील ली जाता है
1: जी जी जी
0: वगैरह होने के बाद में।
1: और एक तरीका ये भी होता है कि एक फ्रेम के अंदर और फिर वो सुई धागे से कुछ एम्ब्रॉयडरी से और कुछ जरी वाला काम होता है।
0: हाँ हाँ वो काम अलग है, वो काम कारचुप का काम है, उसके लिए तीन चार लोग एक साथ बैठते हैं, वो काम अलग रहा। हमारा काम अलग है, हमारा काम थोड़ा सस्ता रहता है, इसमें हर एक कोई खरीद लेता है, वो थोड़ा महंगा जाता है।
1: अच्छा,
0: और टाइम भी बहुत लगता है उसको बनाने में।
1: जी, तो मतलब आप एक इस तरीके के

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: दिल के जख्मों को छुपाना सीख लिया, रोते हुए मुस्कुराना सीख लिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के छोड़ जाने पे, हमने तो तन्हाइयों में वक्त बिताना सीख लिया।
0: क्या बात है, तन्हाइयों की बातें आज कार्यक्रम में हो रही हैं। और तन्हाइयों की बातों में वो मजा कहाँ जो अपनों के साथ में आता है, क्यों?
1: क्यों, बिल्कुल मैम आप सही कह रही हो। मैं ग्राम पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज यानी बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी स्वागत है विमल जी कार्यक्रम में। और देखिए, हम तो आकाशवाणी के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के साथ जुड़ ही जाते हैं किसी ना किसी कार्यक्रम में, तो फिर
1: बिल्कुल
0: आप
1: बिल्कुल मैम।
0: तन्हा कहाँ रहे?
1: आकाशवाणी मथुरा ने हमें तन्हा नहीं किया, पर ये चंद लाइनें थी जो मैंने पेश की थी और अपने जितने भी सुनने वाले उन सभी के बीच में रखी, उन्होंने शायद किसी को पसंद ना कि वक्त जब हमारे साथ होता है तो कभी सुख और कभी दुख, तो कभी जैसे मान लीजिए हम अभी चार पांच लोगों के साथ घूम रहे हैं, कभी अकेला, तो हमें हर हाल में जीना चाहिए, चाहे अकेले हूँ या सभी लोगों के साथ रहना, चलना जरूर मनुष्य को जीवन में चलना चाहिए।
0: बिल्कुल, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, तो फिर तन्हाई से डरना क्यों?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी आवाज और आपकी बातचीत मुझे बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि आकाशवाणी मथुरा में मेरा काफी दिनों के बाद आज फिर से फोन लगा है मैम।
0: जी जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कार्यक्रम पसंद आने के लिए, और बधाई आपको फोन लगने के लिए भी। तो आज क्या सुनेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम रहेगा अदूत का कर्जा, और इसमें बेहतरीन सा नगमा है तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, सुनवा दीजिएगा।
0: ठीक है।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार मोदिया जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: परिचय, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, गांव छटीगरा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र।
0: जी स्वागत है सिसोदिया जी कार्यक्रम में। और आप
1: आप रश्मि शर्मा जी,
0: हाँ
1: आप
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी कॉल शामिल करने के लिए।
0: जी जी जी बहुत बहुत आभार आपका भी कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी
0: और
1: जी
0: सिसोदा जी क्या कहेंगे आज कार्यक्रम में और क्या पसंद रहेगी?
1: तो पसंद तो ये, मैं फिल्म का नाम तो याद नहीं है, पर गाने का बोल है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में है ये गाना।
0: ठीक है जी।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। बस
0: स्वागत है हारून जी, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं। और आपके मिजाज कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हमारे मिजाज भी बढ़िया हैं, हम भी खैरियत से हैं। और क्या सुनना चाहेंगे आज कार्यक्रम में?
1: मौसम कैसा है आपके इधर? बारिश हो रही है कि नहीं हो रही?
0: नहीं, मौसम अभी तो बारिश नहीं हो रही है, रात में थोड़ी सी बूंदाबांदी हल्की सी हुई है और अभी तो मौसम साफ है एकदम।
1: जी, हमारे इधर भी बारिश नहीं हो रही है 10-12 रोज से। नहीं,
0: जी। तो आपका कार्यक्रम में पहली बार फोन लगा है या करते रहते हैं फोन?
1: हम फोन करते रहते हैं, जेब से फोन लगाते रहते हैं हम।
0: जी।
1: असल में दूसरों को भी मौका भी मिलना मिले अभी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सोच के साथ में आज आपसे बात हो रही है और आपकी पसंद जानना चाहूंगी।
1: साजन का घर मिल जाएगा?
0: जी, साजन का घर, आपको
1: जी
0: भी जाना है साजन के घर?
1: जी वो है ना, सावन का मौसम लग गया ना, सावन आए, बादल छाए।
0: अच्छा, मैंने कहा, आपने कहा साजन का घर मिल जाएगा, तो मैंने कहा साजन का घर आप क्यों जाएंगे, आप तो सजनी के घर जाने वालों में से होंगे भाई।
1: नई फिल्म है ना, साजन का घर।
0: ठीक है, सावन आया बादल छाए।

0: जाना है साजन के घर।
1: जी वो है ना, सावन का मौसम लग गया ना, सावन आए बादल छाए।
0: अच्छा, मैंने कहा आपने कहा साजन का घर मिल जाएगा, तो मैंने कहा साजन का घर आप क्यों जाएंगे, आप तो सजनी के घर जाने वालों में से होंगे भाई।
1: नई फिल्म है ना साजन का घर।
0: ठीक है, सावन आया बादल छाए,
1: जी जी
0: ठीक है।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम पेश किया रश्मि शर्मा ने।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
0: और अब पेश है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म फ़कीरा से। इस गीत को लिखा इंद्रजीत सिंह ने, संगीत रविंद्र जैन ने दिया। और अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म है एक दूजे के लिए। इस गीत को आवाज़ें अनूप जलोटा और लता मंगेशकर ने दी, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में है। फिल्म है अनुराग। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत दिया SD बर्मन ने।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं, शब्द रचना गुलजार की, संगीत खय्याम का।

कार्यक्रम का अगला गीत शैलेंद्र सिंह मन्ना डे और साथियों की आवाजों में, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉबी से। विट्ठल भाई पटेल की शब्द रचना को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों का गाया हुआ ये गीत था फिल्म बॉबी से। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं प्रेम कहानी फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत। बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: कहा आपका ये बजा ही सही के हम

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस।

श्रोताओं, आपके संदेश हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। 11:45 के बाद आए हुए संदेशों को हम पढ़ना शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो ये संदेश हमें मिला है एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा का, गुमला झारखंड से। और हमारे ये श्रोता हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। और ये श्रोता जुड़े हैं ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार।

कुमार और पूजा खटक। ये श्रोता जुड़े हैं नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पढ़ते हैं अगला संदेश जो मिला है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपीपुरी, अशोकपुरी, सुशील, कैलाश, नीलम, रामापुरी और इनके सभी परिवारीजन। जनकपुरी सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। और हमारे ये श्रोता आर्यनगर कोहका भिलाई से संदेश लिखते हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेल। ये श्रोता जुड़े हैं राजधानी नई दिल्ली से आर.एस. स्वीटी, आई.के. इंदर और स्वीटी छावड़ा। मगनपुर झारखंड से हैं अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और सभी इनके मित्रगण। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। कलानौर से हमें संदेश भेजा नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने। बापू कॉलोनी खंडवा से हैं बेबी शालिया खत्री, बेबी हलीमा और बेबी जिक्रा। गांव निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। और ये श्रोता लिख रहे हैं सहसपुर लोहारा खुर्द जिला कवर्धा से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज और इनके सभी मित्रगण। मुंदीचक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी। अगला संदेश मिला है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा का। ये श्रोता हैं पश्चिम सिंहभूमि चायबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि गोप और दीपाली गोप। और हमसे जुड़े ये श्रोता बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर। ये श्रोता हैं हमारे मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने और पीएस नाहवकर। अगला संदेश कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से है गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, ऋषिता। श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर सुनवाते हैं ये गीत जिसे स्वर दिए हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है जूली।

और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। ये श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। और ये संदेश लिखा है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं पीएस नाहवकर, निर्मला और विशाल नाहवकर। मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इगले, सोपान तायडे, आशीष मोहरकर और इनके संगी साथी। और ये संदेश है नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन का। मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप और इनके सभी संगी साथी। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा देवांगन। और ये संदेश मिला है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान का। वैष्णव कॉलोनी से हैं सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी और इनके सभी परिवारीजन। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। हमसे जुड़े हैं ये श्रोता ग्राम ममना जिला हमीरपुर से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। और ये श्रोता हैं

सिद्धार्थ नगर दरियापुर से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले और इनके मित्रगण हैं अरुणा, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। हमें ये संदेश लिखा है नाहर मंटोला, मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, मोहम्मद साजिद अली और मोहम्मद जाहिद अली ने। कुंभार गली श्री रामपुर से हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, सानिका, पनावले। पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और इनके सभी मित्रगण। कंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही। ये संदेश हमें लिखा है सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग ने। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया। और ये श्रोता हैं हमारे पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे और इनके मित्रगण। भिलाई छत्तीसगढ़ से हमें संदेश मिला भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा का। जिला ललितपुर यूपी से हैं संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अंजना, संजना, रेखा भारती, पूर्वी, रूही, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और पूरा नामदेव परिवार। और ये श्रोता हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। फुटानी चौक नरहन स्टेट से हैं लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से हैं मास्टर बिट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे। हमें संदेश लिखा है सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं कोमल सेन, तोषण और विनायक सेन। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लक्की, तानिया और इनके परिवारीजन। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार चंदन। और हमें ये संदेश भेज रहे हैं खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर और गौरव नायक। श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर मेरा नाम जोकर फिल्म से ये गीत सुनते हैं, स्वर आशा भोंसले का है।

और अब हमें ये संदेश प्राप्त हुए, हमारे ये श्रोता हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। ये संदेश मिला है ब्रज रेडियो श्रोता मित्रों का मथुरा से, चौधरी महेंद्र सिंह, शारदा प्रसाद प्रजापति, राजू लावानिया, भजन लाल यादराम और वीरेंद्र कुमार का। अगला संदेश है भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से, अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर का। और ये श्रोता हैं दादा बाबू रोड गिरडीही झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफानाज और बेबी चाहत। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान। और ये श्रोता हैं ग्राम पीपर लोड सरगांव से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। वरवट वकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे का संदेश मिला। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोतरा गुरशबद। साथ में हमारे ये श्रोता जुड़े हैं नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव और इनके मित्रगण। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। चकला बाजार समाना शहर से ये संदेश लिखा है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और इनका पूरा ही खुशदिल परिवार। ये संदेश पढ़ते हैं जो मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति, क्षीर सागर और संजय चौहान। हमसे जुड़े ये श्रोता कोयते बस्ती पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा अविकास और साइशा सोनवने। अगला संदेश मिला है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार का।

और हमारे ये श्रोता हैं श्यामला, अश्विनी, आनंद, मनवित, रमेश तिरुपति से। और अगला संदेश पढ़ते हैं जो मिला है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा का। और ये संदेश है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन का। मोताला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती, गौरी, ओम। और हमसे जुड़े हैं ये श्रोता रहटगांव कैंप अमरावती से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा और

और ये संदेश है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन का। मोताला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती, गौरी, ओम, और हमसे जुड़े हैं ये श्रोता रहटगांव कैंप अमरावती से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा और रुचिका रामेकर। कुमार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम। अगला संदेश मिला है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पुष्पेंद्र, पारस मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास और साथ में हैं धनंजय, पीबी कुलथे। हमसे जुड़े हैं ये श्रोता ग्राम पजौनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया और इनके परिवार के अन्य सदस्य। सालार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन और इनके संगी साथी। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल और इनके सभी संगी साथी। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले ने भी संदेश लिखा। श्रोताओं आप सबको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस को यहीं विराम देते हैं। कल आपके संदेशों के साथ, आपकी फरमाइश के गीतों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज लोक गीत।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे।
2: पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
8: आराम से मैडम।
7: क्या?
8: आराम से पहुँचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
9: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं नंद किशोर सैनी। आइए सुनते हैं इनकी गई कुछ मल्हारें।

सावन पैदा। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में

0: दर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्ध दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण।

जिसे हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम, और रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे। संध्या 6:50 से आप सुनेंगे हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं। विशेषज्ञ वार्ताकार होंगे अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा।

अब से थोड़ी ही देर बाद 1:10 पर आप सुनेंगे देशगान, 1:15 पर महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक। इस कार्यक्रम में माँ का दूध बच्चे के पहले टीके के समान और महिलाओं के लिए ऑनलाइन रोजगार के अवसर विषयों पर चर्चा की जाएगी। पावस और श्रावण मास के संबंध में डॉक्टर सरोज गुप्ता का काव्य पाठ भी इसी कार्यक्रम में सुना जा सकता है। एक बजकर 1:45 पर श्रोता आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा उमंग। 5:30 पर हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। आज की बात के विषय होंगे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई पुण्यतिथि और राज्य एवं केंद्रीय सेना में भर्ती, सफलता की कहानी, युवा प्रतिभा से भेंट इस कार्यक्रम में सुनी जा सकती है। कमलेश्वर शर्मा से अविचल दुबे की बातचीत सुनिएगा। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा में सुनिएगा मनोज कुमार शर्मा का काव्य पाठ। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या वंदन। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। 9:15 पर आप सुनेंगे सुहाने ताराने।

0: श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज संध्या 6:50 से 7:20 के मध्य आप सुनेंगे हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम। आज का विषय होगा भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं। हमारे विशेषज्ञ वार्ताकार होंगे अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा। हमारे श्रोता भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा 0565-2530-135। और जो श्रोता व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं वे 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर हमारे विशेषज्ञ वार्ताकार से सीधे बातचीत कर सकते हैं। प्रसारण का समय एक बार फिर से सुन लीजिए, आज संध्या 6:50 से 7:20 के मध्य। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी

0: फ्लाइट है
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: आइए सुनते हैं समवेश स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

0: संवेद स्वरों में अभी आप सुन रहे थे देशगान।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम होगा, वनिता लोक।

खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो बेहतर खुद के साथ घूमने जाओ तो अच्छा है। अपने घर के रोशन दीपक देख लिए, अब खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो, अब खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं हूँ वनितालो कार्यक्रम में आपकी सहेली खुशबू। बहनों, हुनर अगर हाथों में हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, हौसले अगर मजबूत हो तो सपने सच हो जाते हैं। घर की चौखट से निकलना ही जरूरी नहीं हर बार, डिजिटल दुनिया भी खोल रही है रोजगार के द्वार। जी हाँ बहनों, आज हम बात करेंगे अपनी, यानी हम महिलाओं की। अपना कुछ काम करें, किसी पर निर्भर ना रहे, तो ये हमारी कितनी बड़ी जीत होगी। बहनों, डिजिटल रोजगार के बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार और कमाई के कई रास्ते खोल दिए हैं। खासकर वो महिलाएं जो परिवार, बच्चों या अन्य जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती, वे ऑनलाइन माध्यम से अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार काम कर सकती हैं। वो काम क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि ऑनलाइन ट्यूशन देना, अगर आप में आपने अगर बहुत पढ़ाई करी है तो आप ट्यूशन भी दे सकती हैं। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, अनुवाद और वर्चुअल असिस्टेंट, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट जैसे बहुत से ऐसे काम हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जिन बहनों को सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, खाना बनाने या फिर हस्तशिल्प या फिर अन्य ऐसी कोई भी कला में उनको दक्षता प्राप्त है, वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद और सेवाएं बेच सकती हैं। ऑनलाइन रोजगार से सबसे बड़ा फायदा हम बहनों को ये होता है कि हम घर में अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकती हैं। इससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और अपने निर्णयों में आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद मिलती है। अंत में बहनों, हम यही कहेंगे कि डिजिटल युग महिलाओं के हुनर को रोजगार में बदलने का एक बड़ा अवसर देता है। तो आप कब से शुरू कर रही हैं ऑनलाइन रोजगार, अपनी प्रतिभा को नई दिशा देने के लिए, तो आप भी तैयार हो जाएं। और अब सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: बहनों, रिमझिम बरसे सावन धरती का श्रृंगार करे, हरी भरी चुनरी ओढ़ के मौसम दिल को प्यार करे, झूले पेड़ों पर डालकर गूंजे मधुर मल्हार, सावन आते ही खिल उठता है मन का हर एक संसार। सावन यानी बारिश की फुहार, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू, चारों तरफ फैली हरियाली और मन को छू लेने वाला मौसम। सावन का महीना आते ही प्रकृति जैसे अपना रूप बदल लेती है। सूखी धरती बारिश की बूंदों से नहा उठती है और पेड़ पौधे जैसे हरे भरे होकर प्रकृति की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। तो बस इसी विषय पर हम आपको आज ये काव्य पाठ सुनवाते हैं। प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर सरोज गुप्ता। शीर्षक है पावस और श्रावण मास।
1: हमारा देश स्वर्गादिप गरियसी, भारत की धरती पर पलती हर मौसम की क्यारी देखो। हमारे देश में 3 ऋतु हैं, षट ऋतु हैं, शीत, बरसात और पावस से ही कवियों की कल्पना साकार होती है, भावानुभूति। मैंने आज श्रावण मास और पावस ऋतु इसके मध्य अपने शब्दों को बुना है। आपके सामने श्रावणी बात प्रस्तुत है। पनघटों में गीत गूंजे, श्रावणी बहार आई, ताल तलैया पोखर भीगे, हरियाली छाई, प्यास बुझी हर सूखे दिल की, सरस भई क्यारी और झूले हिंडोले हंस हंस आए, राग मल्हार गाई।

जर जर जर जर मेघा परसे मंद मंद मुस्कावी, घर मंदिर में सजे ही डोले देख आंख घर सावी, सुख दी ऋतु आई छपर छपर हुए धरती डोले, मंद मधुर कोयलिया बोले पपिया चोंच भरे पानी सू, सिपी में मोती है डोले, हिंडोला ऋतु हाँ जी हिंडोला ऋतु हम्बे, कुमर कनाई पटली पौड़ी राधा पैग उठावे होले, सखिया दे झटकी मार गवे गीत गमलार, सुख दाई रे हिंडोला ऋतु आई।

பையா தேபே பையா துலார் சமநெறித்துவாய் சமநெறித்துவாய் திக்கே ஹராபரா சன்சார். सावन का और साजन का बहुत साथ है, जिन घर कंता ते सुखी तिन गारो और घर और कंत ब्याह प्यारा बाहरे हम सब सुरे। नागमती का कथन तो एक गृहिणी की मनोदशा इस सावन में क्या है सुनिए जरा। वो जाते कदम

लेकिन एक आस के बल खड़ी है, और वो क्या आस है? प्रकृति का सुरम्य वातावरण, जिसमें पक्षी चहचहा रहे हैं और उसे लग रहा है कि वो कदम लौट रहे हैं। फूरा

हाँ सचमुच सावन की बौछारें देख आई गई सजना। धनी चुंदर देख बोले आज मोती अंगना कर अब गमना। सावन की फुहारें देख आई रही सजना कर अब गमना। धोई मुख पोंछ आंख बोल रही मैना इंगुर बेंदी मावर मेदी लगा बु सजना कर अब गमना। कर सेल सिलंगार हरी परियों से तू सगना कर अब गमना। हरी हरी चूड़ी बिच फव रहे हो कंगना। सावन की बौछारे देख आई गई सजना कर अब गमना। जीवन में हमेशा सावन तो रहता नहीं है। हाँ भादों भी है क्वार भी है साड़ सभी है। बगिया में छाया कुहासा उसमें फूटा बताशा फूल पाती घास पर अठखेलियां करती।

0: रोज की बूंदें थिरकती, सर्द अंगड़ाई देखो, आंख मलती अलस सुबह की गुनगुनाती धूप देखो, शीत मौसम की कप कपाती गुदगुदाती प्रीति देखो, आती जाती संकटों की इस घड़ी की रीत देखो, लान पर बैठे बाल वृंद बतिया रहे, मूंगफली तोड़ तोड़ खा रहे खिला रहे, घास की हल्की नमी पर गुलजार ये दिन देखो, सौंधी सौंधी खुशबू प्यारी टाइट जींस कलरफुल जैकेट में जोश से लबरेज हरियाली देखो, भारत की इस धरती पर फलते हर मौसम की क्यारी देखो, कुदरत की बलिहारी देखो, मुरझा गए फूल मगर बहार वही है, बीत रहा सावन पर मलार वही है, या जानते हैं सब मौसम नहीं लौटेगा मगर आंखों को इंतजार वही है, छवि सामने आती है तो मुस्कुरा लेते हैं, कुछ पलों के लिए गम भुला देते हैं, आपकी आंखें कभी नम न हो इसलिए अश्क आंखों से बहा देते हैं, हम तेरी उम्मीद को नाकाम न होने देंगे, इस रुतबे को बदनाम न होने देंगे, मेरी जिंदगी का सूरज भले ना निकले मगर तेरी जिंदगी में शाम ना होने देंगे, मेरे जाने के बाद आवाज ये सुनना, हुए हादसों को सलाई में बुनना, नम आंखों को राहत मिले शायद, होता है डगर में सुख दुख का मिलना, गुस्से का अर्थ इनकार नहीं है, हंसने का अर्थ इजहार नहीं है, नजरों का क्या मिला ही करती है, हर चितवन का अर्थ प्यार नहीं है।
1: बहनों, अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा काव्य पाठ पावस और श्रावण मास, प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर सरोज गुप्ता। जी हाँ बहनों, बादल आए हैं आसमान में पैगाम लेकर, सावन आया है खुशियों की सौगात लेकर, भीगी मिट्टी की खुशबू जब हवाओं में घुलती है तो हर सूनी राह भी फिर भी खूबसूरत लगती है।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: बहनों, सावन सिर्फ बारिश का मौसम नहीं बल्कि हरियाली और प्रकृति से जुड़ने का भी संदेश देता है. बारिश पेड़ पौधों, खेतों और जल स्रोतों के लिए जीवनदायिनी है. तो इस सावन हम सभी संकल्प अगर लें तो ये बहुत अच्छा होगा. एक पौधा आप अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी ज़रूर करें और प्रकृति को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें. और अब बात करते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर. बहनों, माँ बनना किसी भी महिला के जीवन का बेहद खूबसूरत एहसास है. जब एक नन्हा सा शिशु इस दुनिया में आता है तो उसके लिए माँ का दूध सिर्फ भोजन नहीं बल्कि पोषण, सुरक्षा और ममता का पहला सहारा होता है. इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पहले टीके का काम करता है. ये बात सिर्फ भावनात्मक नहीं है, माँ के दूध में ऐसे पोषक तत्व और प्रतिरक्षात्मक घटक होते हैं जो बच्चे को शुरुआती जीवन में संक्रमणों से बचाने और स्वस्थ विकास में मदद करते हैं. बच्चे के जन्म के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी आप स्तनपान शुरू कर दें, ऐसी सलाह डॉक्टर भी देते हैं, यदि माँ और बच्चा चिकित्सीय रूप से स्थिर हों. शुरुआत में निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है. इसे कई लोग गलती से पिलाते नहीं लेकिन वास्तव में ये बेहद महत्वपूर्ण है. पीला सा रंग देखकर इसे बेकार न समझना, माँ के इस पहले दूध को कभी बेकार न समझना, इसी में छिपी है सेहत की पहली ढाल. यही नन्हे शिशु के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार. माँ का दूध बच्चे की उम्र और ज़रूरत के अनुसार बदलता रहता है. इसमें बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं. बच्चे के 6 महीने तक माँ का दूध अवश्य शिशु को देना चाहिए. ये तो हमारी आज की बात रही और अब हम रुक करते हैं अपने घरेलू टिप्स की ओर. बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी. तो आपको रेसिपी में क्या शामिल करना है, सबसे पहले आपको श्रीखंड लेना है. हम सभी जो खाते हैं केसर का फ्लेवर वो होना चाहिए उसमें. और 3 कप बटर मिल्क होना चाहिए यानी कि छाछ, और 2 बड़े चम्मच चीनी, चुटकी भर इलायची पाउडर और चुटकी भर जायफल पाउडर, और ऊपर से डेकोरेशन के लिए कटे हुए पिस्ते और केसर के कुछ धागे. तो सबसे पहले बनाए कैसे इसके लिए हम बात करते हैं. तो सबसे पहले जो श्रीखंड होता है, बटर मिल्क, चीनी, इलायची पाउडर और जायफल पाउडर को 1 कटोरी में लेकर खूब अच्छे से उसको फेंटें. जब सारी सामग्री अच्छे से मिक्स

हो जाए तो इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद इसे अलग अलग गिलास में डालें और पिस्ता केसर से सजाकर परोसें। तो ये रही आज की हमारी रेसिपी, तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो बहनों, वनिता लोक कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा ऐसा हमें लगता है, और इसी के साथ खुशबू को दें इजाजत। नमस्कार।

0: अभी तक महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थीं, वनिता लोक।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
0: और अब पेश है फिल्म संगीत।
2: सुनो एक तराना, नया एक फसाना।

जीने की राह। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, स्वर मोहम्मद रफी का था। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म है अब्दुल्ला।

और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ जुगनू फिल्म से ये गीत।

0: ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
1: Headline inflation has edged up.
2: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
1: As projected earlier.
0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
1: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर,
2: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करकर प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की

वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन

0: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
3: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओं, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
2: जी।
3: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल।

0: वर्मा।
1: अरखुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
0: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
0: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
0: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: हाँ, विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
0: बिल्कुल सही कहा जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी, बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देख कर ही उठते हैं।
0: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी, वो तो है,
0: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
0: जी,
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
0: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है। विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए अजीत जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
0: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे। पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
0: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
0: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
0: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा।
1: क्या बोलेगा?
0: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
0: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
1: वो कैसे?
0: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
1: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
0: जी,
1: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
0: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
1: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
0: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
1: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
0: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
1: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
0: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
0: नई जानकारी के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IVRS नंबर

0: यानी 8800-044-5559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
4: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
5: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान।

0: आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
1: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
2: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
1: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
0: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
3: आज खेल में बड़ा मजा,
4: बहुत मजा आ गया। गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
5: हाँ, पर गोल हो गया। किसी का
0: दिल खुश हो कि तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
6: ए, इधर क्या देख रहे हो?
7: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
8: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
9: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
10: चलो चलो चलो, चलो, चलो,
7: अरे,
10: चलो
7: भाई, निकलो। लेकिन
8: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
0: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
11: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
7: हाँ, ठीक है,
11: कोशिश करते
7: हैं।
0: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
7: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
11: जी बाबा।
7: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
11: तो क्या इनाम देते हो?
7: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
0: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है, राज दरबार सजाया गया।
12: पूरा एक महीना हो गया है, आज फैसला।
13: तुम्हें क्या लगता है?
12: महाराज आ रहे हैं।
13: अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।
0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
7: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
14: बधाई हो पंडित जी, बहुत बहुत।

0: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
1: सही बात है।
0: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
2: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
1: अच्छा इंसान, हमेशा सही काम करेगा।
2: देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ सा को बधाई दे रहे थे।
3: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
4: महाराज की
5: जय हो,
4: महाराज की
5: जय हो,
4: महाराज की
5: जय हो,
4: महाराज की
5: जय हो।
2: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
7: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
8: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।
9: मैं हूँ काला कौवा, मैं हूँ काला कौवा, दूर दूर तक उड़कर जाता, सारी खबरें लेकर आता, काव काव कर गाना गाता, सबके मन को

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,

0: पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते, हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है, वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं, तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो, साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
2: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
0: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
1: चूहे भाई,

0: में फंसे हुए हैं।
1: तो चलो कौवे भाई उनके पास चलें। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
0: चलो
1: चलो चलो कौवे
0: चलो,
1: भाई
0: चलो,
1: चलो,
0: चलो, चलो, चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
3: चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
1: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
3: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
8: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मत

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं की पसंद का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं इस बात को भली प्रकार से कि हमारा जो युवाणी कार्यक्रम होता है वो पहुंचाता है आप तक जानकारियां, सूचनाएं, साथ ही साथ मनोरंजन भी, और देता है अक्सर मार्गदर्शन हमारे युवा साथियों को कि वो किस तरह से अपने कैरियर को नए आयाम दे सकते हैं, किस तरह से अपनी कैरियर को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं, और क्या है आज की समसामयिक, जो आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आज के युवाणी के इस अंक में। और आज हम आपसे बात करेंगे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई की पुण्यतिथि को लेकर। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान विचारक गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 1890 में हुआ था और नगांव जिला अंतर्गत, जी हाँ, जिसे रहा में कहते हैं, तो वहाँ उनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे वो थे डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदले, माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। आप ये कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा, वो अपने समय के मेधावी छात्र थे। गोपीनाथ बोरदोलोई का नाम गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल में लिखाया गया और 16 साल के पहले ही उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। पढ़ाई में, मैं जैसा कि हमने आपको बताया कि वो मेधावी छात्र थे, तो उनको स्कॉलरशिप, जिसे हम कहते हैं छात्रवृत्ति भी मिली। और इसके साथ उन्होंने हमेशा जो बीए किया और अपना पढ़ाई करी एमए की, तो उसमें सभी में उन्होंने एक अच्छे वो अंकल आए। और साथ ही साथ समाज को लेकर जो बात करें, उन्होंने देश को लेकर एक, उस ज़माने में वो गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे और उन्हीं की विचारधारा को वो आगे लाना चाहते थे। असहयोग आंदोलन में योगदान उन्होंने अपना बढ़ चढ़ करके दिया, और इस तरह देश प्राण को, जो उनका जो जज्बा था देश पर कुर्बानी का, वो बहुत आगे तक का था। 1926 ईस्वी के जो आंदोलन हुआ है उसमें उन्होंने भाग लिया, और उनको कई बार इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। विदेशी माल का जो बहिष्कार था गांधी जी के द्वारा, उन्होंने कहा कि स्वदेशी को हम अपनाएं, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विदेशी वस्त्रों के स्थान पर खादी से बनी

वस्तु यानी कि वस्त्र जो थे उन्होंने उसको लिए लोगों को प्रेरित किया कि हम अपना खुद का सूत काते और खादी को पहने ताकि हम आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी को हम अपनाएं ताकि हम जो हमारे देश की संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले और कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मनिर्भरता आए। ऐसे जो उस दौर के जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं या जितने भी हमारे स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी हैं उन्होंने सभी देशवासियों को उस दौर में यही एक शिक्षा दी कि अब हम दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे, अपने ही बल पर शिक्षा को बढ़ाएंगे, अपने देश को मजबूत हम कह सकते हैं तभी बना पाएंगे जब हमारे देश में शिक्षा होगी जिससे हमारे देश की गरीबी दूर होगी और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति हमें अपनी बातों से कह सकते हैं कि हमको दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम हर चीज़ का अपना विवेक का प्रयोग करेंगे, हर चीज़ को जानेंगे और इसीलिए उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ऐसे थे हमारे लोकप्रिय जननायक गोपीनाथ बरदलोई जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। और बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी युवा साथियों से और भी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जिसमें देश की मिट्टी के लिए एक जज्बा है बढ़ चढ़ कर योगदान देने का।

जी, हमने आज आपसे बातचीत की गोपीनाथ बोरदोलोई को लेकर, जिनका जन्म 6 जून 1890 को राहा में हुआ था और आप आसाम के पहले मुख्यमंत्री थे, और 1936 में बोरदोलोई असम विधानसभा में विपक्ष के नेता भी चुने गए, और वही 1938 में आसाम के मुख्यमंत्री बने। और बात करें उनके जीवन को लेकर, तो कई बार सक्रिय रूप से उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, और 1939 में असम के मुख्यमंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा देने के बाद बोरदोलोई को 2 बार जेल भेजा गया, और 1944 में वो रिहा हुए। कहने का आशय ये कि ये वो जीवन होते हैं जिनसे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं, और 1950 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ, और सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संसद में 2002 में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: और अब हम आपके लिए लेके आए हैं ये खास बातचीत. जी हाँ, आप मिलिए युवा प्रतिभा से. आज कमलेश्वर शर्मा से बातचीत कर रहे हैं अविचल दुबे. लेते हैं इस बातचीत से कुछ प्रेरणा.
2: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका. मेरे साथ आज कमलेश्वर शर्मा मौजूद हैं स्टूडियो में. कमलेश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ.
3: बहुत बहुत धन्यवाद अविचल. और सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
2: आपकी प्रतिभा, आपका जो आपका काम है वो लोगों के सामने आना चाहिए. और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से आपने सीखा है, तपस्या चाहिए होती है. मैं कहूंगा इसको साधना ही कहूंगा मैं.
3: हाँ बिल्कुल, ये साधना बिना कुछ नहीं है, क्योंकि इसके लिए तपस्या जरूरी है और साधना है ये.
2: सभी युवा श्रोता इसको लेकर इंस्पायर हों, उनके लिए

0: हम आपसे कुछ विशेष जानना चाहेंगे कि आप वो बताएं जिससे उनके जीवन में एक तरह से चित्रकला के प्रति कुछ नया प्रेम भाव जागे। मैं सबसे पहले पूछूंगा कि 20 साल से लगातार चित्रकला कर रहे हैं, कि जो एज है वो अभी केवल 25 साल है।
1: हाँ, मैंने 5 साल की उम्र से ही चित्रकला शुरू कर दी थी। तो मैं छोटा था तो मैं दीवालों को बिगाड़ता था, मोम के रंगों से दीवालों पर चित्रकारी करता, कोयले से करता। तो मेरे अंदर शुरू से ही, जन्म से ही ये गुण रहा है।
0: जी
1: कोई ये नहीं रहा कि मुझे आगे बढ़ा, तो मुझे शुरू से ही सीखने का रहा। और तो मेरे अंदर ये थी कि मुझे सीखना है इसमें, पेंटिंग में। और मुझे ये नहीं था शुरू में कि मुझे प्रसिद्ध होना है या कुछ भी, बस सीखने की लगन थी और पेंटिंग करता रहता था। और मेरी मौसी की बेटी थी तो वो पेंटिंग वगैरह करती थी, तो मुझे भी उनसे सीखने का मौका मिला, कुछ उनसे सीखा। फिर धीरे धीरे पेंटिंग में बढ़ता गया तो मैंने इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वहां पर श्री विश्वंभर दयाल साहू जी थे, तो उन्होंने मुझे प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ अच्छा कर सकता है, पेंटिंग में बहुत रुचि रखता है, तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। और आज जो भी हूं मैं उन्हीं के कारण हूं, क्योंकि कला की बारीकियों को सीखना
0: इतना
1: उन्हीं
0: आसान नहीं है,
1: आसान नहीं है।
0: और लेकिन उन्होंने आपके लिए वो आसान बना दिया।
1: और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है,
0: जी, बिल्कुल।
1: इसीलिए मैंने उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा और अभी सीख रहा हूं। और वो हमेशा मेरा अभी तक मार्गदर्शन देते रहते हैं।
0: आपने दीवारों को बिगाड़ने से स्टार्ट करी और फिर आप आगे बढ़ते चले गए। जब स्कूल लाइफ होती है तो एक हमारे अंदर एक भाव आता है कि हमें सम्मान दे, प्राइज दे और तारीफें करे। कोई एक ऐसा पल आया हो कि जब आपको लगा हो कि हाँ, अब मेरे को लगता है कि मेरे काम को तारीफ सम्मान मिलना शुरू हो गया है, अब मैं आगे बढ़ता हूं।
1: हाँ, ये जरूर है कि एक कलाकार को उत्साहवर्धन मिलना चाहिए। जब तक उत्साहवर्धन नहीं होगा तो वो कलाकार हताश हो जाता है। इस कारण से वो अपनी कला को नीचे ना करे, इसीलिए उसको पुरस्कार वगैरह भी मिलने चाहिए, क्योंकि जो उत्साह होता है
0: हाँ,
1: वो
0: वो बना
1: पुरस्कार
0: रहे।
1: बढ़ाता है। तो मेरे अंदर शुरू से मैंने सीखा, पेंटिंग कभी पुरस्कार के लिए नहीं सीखा, मुझे पेंटिंग करनी थी और सीखना था। मैंने शुरू से 7वीं से शुरू कर दिया था सीखना सर के साथ में। तो
0: लेकिन 6वीं तक आप लगातार पेंटिंग कर रहे थे, 7वीं से बारीकियां सीखना।
1: हाँ,
0: हाँ,
1: 7वीं से मैंने कला की बारीकियों
0: सातवीं कक्षा
1: को
0: से आपने बारीकियां
1: सीखना
0: सीखना
1: शुरू
0: शुरू
1: कर
0: किया,
1: दिया।
0: और लेकिन 6वीं क्लास से आप लगातार पेंटिंग मतलब उस लेवल तक कर रहे थे जिसमें आपको खूब अच्छा लग रहा था।
1: हाँ, तो मैंने 12वीं तक नॉर्मल पढ़ाई की और पेंटिंग की, फिर उसके बाद में मैं
0: अच्छा, ये बताइए कि जब आप ये सब कर रहे थे तो नो डाउट कि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मतलब आज के लिए अगर ये सवाल करूं मैं, अगर अगर आज अपने बच्चों को कोई, मान लीजिए कि 6वीं 7वीं के कुछ बच्चे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो अगर वो कहते हैं अपने माँ बाप से कि जी हमें पेंटिंग सीखनी है और उसमें अच्छा करना है, तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने वाली है।
1: हाँ नहीं, मैं यही कहूंगा कि जो आपका शौक है, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी कला हो, सबसे पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पहले पढ़ाई होनी चाहिए और साथ साथ में ये सब चीजें होती रहनी चाहिए।
0: लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई होगी, और कम हुई, ज्यादा हुई, क्या हुआ फिर?
1: हुई थी, लेकिन मैंने 7वीं से स्टार्ट कर दिया था सीखना, तो सर ने मुझे इतना सिखाना शुरू कर दिया कि इतना जुनून आ गया मेरे अंदर कि मैं सुबह से शाम तक बस पेंटिंग करनी है, बस कॉलेज से आना, पेंटिंग करना, रंग ब्रश यही सब। और मैं खाना भी मेरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है
0: एक
1: जितना पेंटिंग है
0: टाइम अगर आपको
1: मेरे।
0: खाना ना दिया जाए और पेंटिंग करवाई जाए तो चलेगा। ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात है कि आप कला के प्रति इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। और बड़ी बात, अच्छा ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने आपका काम देख लिया, तो मेरे को पक्का पता है कि आपने पूरे दिन पेंटिंग्स बनाई होंगी। जब ऐसा होता है कि पूरे दिन पेंटिंग बनाते हैं, तो अच्छा वो एज भी ऐसी होती है कि जब आपको खेलने का भी बड़ा मन करता है, ठीक है, तो खेलना भी आपका नो डाउट कम रहा होगा।
1: खेला हूं,
0: अच्छा, आपका
1: लेकिन
0: खेल पेंटिंग सब हो,
1: सब
0: खेलना पढ़ाई
1: सब
0: सब पेंटिंग हो चुकी
1: सब
0: थी।
1: साथ में चला है, लेकिन पेंटिंग से मुझे बहुत गहरा लगाव रहा है। ये ईश्वर की कृपा है, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे मैंने जन्म लिया
0: जी,
1: और उन्हीं के कृपा से मैं इतना सीख पाता हूं।
0: 12वीं के बाद फिर आपने आगे के लिए क्या अपनी जर्नी चुनी?
1: 12वीं से पहले ही मैं पेंटिंग सीखता था, तो मुझे आर्ट कॉलेज में जाना था, उस माहौल में जाना था जिससे मैं और ज्यादा सीख सकूं।
0: पेंटिंग्स के बारे में बारीकियां हैं और जो उसके बारे में सच्ची नॉलेज है वो आपको प्राप्त करनी थी।
1: हाँ, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी थी 10वीं क्लास से।
0: हाँ,
1: कि मुझे आर्ट कॉलेज

0: में जाना है। महाराष्ट्र में मेरा एडमिशन हुआ था औरंगाबाद आर्ट कॉलेज में।
1: हाँ।
0: तो वहाँ किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ सका।
1: हाँ।
0: मेरा बहुत मन था कि मैं महाराष्ट्र में पढ़ूं।
1: हाँ।
0: फिर मैंने दोबारा से तैयारी करके दिल्ली से मैंने बीएफए किया।
1: अच्छा, बीएफए करने के साथ साथ जो आपने बारीकियां सीखी, क्या ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन आपने, क्योंकि कई सारी आर्ट बढ़ जाती हैं, तो आपका कोई स्पेशलाइजेशन?
0: हाँ, मैंने
1: हाँ,
0: चित्रकला में प्रशिक्षण लिया है इसमें।
1: हाँ, तो उसमें भी कई सारी कलाएं होती हैं, जिस तरह से हम देखें कि ऑयल पेंटिंग होती है या वाटर पेंटिंग्स होती हैं, स्केचिंग है, या मुझे उतना नहीं पता, लेकिन जो बेसिक पता है उसी में मैं पूछ रहा हूँ।
0: जब हम फर्स्ट ईयर में शुरुआत करते हैं तो फाउंडेशन होता है, इसमें सभी चीज पढ़नी पड़ती है,
1: जी,
0: चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे प्रिंट मेकिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, अप्लाइड आर्ट हो, सभी को करना पड़ता है। उसके बाद में सेकंड ईयर से बढ़ जाता है, सभी अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं।
1: हाँ, तो आपने क्या चुना?
0: मैंने पेंटिंग से किया।
1: पेंटिंग चुनी आपने, जो मतलब खांटी तौर पर जो चित्रकला है वो आपने सीखी, और वो सारी जितनी भी फॉर्म्स हैं उसकी, चाहे वो ऑयल पेंटिंग हो, चाहे वो स्केचिंग हो, चाहे वो वाटर पेंटिंग हो, आपने वो सारी चीजें की। उस दौरान जब बीएफए आप कर रहे थे, 4 साल का बीएफए आपने किया, तो कुछ ऐसा आपको लगा कि अब मेरे को और कुछ सीखने के लिए, इससे बेहतर करने के लिए किसी और जगह जाने की जरूरत है, या कुछ और आगे करने की जरूरत है, या आपको लगा हो कभी?
0: सबसे पहले तो मैंने महाविद्यालय में बहुत कुछ सीखा है
1: वहां
0: से, और आदमी जब काम करता जाता है तो उसमें गहरा उतरता जाता है, सीखता जाता है, और उसका दिलचस्पी और बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से मैं जितना पेंटिंग सीखता गया और उतना मेरा गहरा लगाव होता गया, और मैंने आगे इसी में पोर्ट्रेट में मेरी बहुत रुचि है।
1: अच्छा, पोर्ट्रेट। अच्छा, ये दो चीजें होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इसमें जो फर्क है कि पोर्ट्रेट जो बनते हैं वो व्यक्ति विशेष के बनते हैं, और
0: तो मुझे हर
1: और जो लैंडस्केप होते हैं वो सीनरीज होती हैं।
0: तो मुझे पोर्ट्रेट विशेष रूप से बहुत प्रिय है। मैं सभी के स्केच वगैरह सामने जो भी
1: मिलते हैं
0: मैं उनके पोर्ट्रेट करता हूँ।
1: अच्छा, आज आप मेरा भी बनाएंगे इस तरह से?
0: हाँ, बिल्कुल बनाऊंगा।
1: जी जी, देखिए दोस्तों, आज अगर आप सुन पा रहे हैं तो कमलेश्वर ने यह वादा किया है कि वो मेरा पोर्ट्रेट कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बनाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ आज इस बात को लेकर। और जब भी ऐसा होता है कि जब आप किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वो बड़ा ज्यादा रिगार्ड करता है, सम्मान करता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी का पोर्ट्रेट बनाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने मतलब गले लगा लिया और कहा हो कि भैया जो कहोगे आप मैं वो करने को तैयार हूँ, ऐसा वाकया होता है जनरली?
0: नहीं, मेरे लिए सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, तो ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि बेकार बनाया है या अच्छा नहीं लगा। सभी ने मेरा उत्साहवर्धन किया है, कभी किसी ने ये नहीं किया कि ये बहुत बेकार है, और सभी मेरे से पोर्ट्रेट बनवाने के लिए इच्छुक रहते हैं।
1: अच्छा, ये बताइए, अच्छा है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर आपने बीएफए कर लिया, सारी बारीकियां सीखी, खासकर पेंटिंग के बारे में, उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कि आप वीविंग वगैरह भी करते हैं साथ में, या फिर क्या कहते हैं, कुछ मिट्टी से बनाते हैं, क्ले से बनाते हैं, ये भी उस सब का पार्ट है?
0: हाँ, लेकिन मेरा इस चीज में ज्यादा रुचि नहीं रही मुझे।
1: लेकिन आपने करी है वो?
0: मैंने की है।
1: जानकारी के लिए मतलब आपको बेसिक नॉलेज?
0: हाँ,
1: हर
0: सभी
1: की है।
0: हाँ।
1: अच्छा, तो उसके बाद आपने जब बीएफए कर लिया तो फिर आपने एमएफए भी किया?
0: मैंने एमएफए आगरा से किया है।
1: हाँ।
0: तो वहां पर भी मैंने सभी गुरुओं से सीखा, वहां पे भी एक अलग सीखने को मिला। जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है।
1: बहुत बिल्कुल सही बात है आपकी।
0: तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहीं अलग जगह पे जाएं तो
1: एंड पॉइंट नहीं होता आपका, लगातार आप सीख रहे हैं। मतलब आप भी अभी भी ये कह रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है।
0: मैं सोचता हूं कि जहां पे भी जाओ सभी से सीखने को मिलता है, हमेशा शिष्य बनकर रहो।
1: बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था कि अभी आप कुछ ऐसा विशेष रूप से काम कर रहे हैं जो बिल्कुल अलग हो। ब्रीफ किया गया आपके बारे में तो ये बताया गया कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली दिल्ली में काम करने की, लेकिन आपने वो छोड़ दी, और वो क्यों छोड़ी वो आप हमारे युवा दोस्तों को जरूर बताएं। क्योंकि जब इजिली अपॉर्चुनिटीज मिलती है किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए तो आदमी ग्रैब कर लेता है, लेकिन जब छोड़ता है तो उसके पीछे कुछ बड़ा कारण जरूर होता है। प्लीज।
0: मेरा जन्म इस मथुरा में हुआ है तो मुझे इस ब्रजभूमि से बहुत ज्यादा लगाव है।
1: हाँ।
0: क्योंकि जहाँ पर हम बचपन से खेलते हैं, बड़े होते हैं, तो उसकी जो यादें होती हैं वो हमारे दिमाग में रहती हैं।
1: जी।
0: और मैंने शुरू से ही यहाँ पर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन की परिक्रमा लगाई और यहाँ के वातावरण को देखा है, तो यहाँ पे रासलीलाएं और ब्रज की लोक संस्कृति, ये सब मैंने बचपन से ही बड़े

0: होते हुए मैंने देखा है।
1: देखा है
0: तो यहाँ का जो कृष्ण स्वरूप है और होली है, तो यहाँ की संस्कृति बहुत ही अच्छी है जो मन को झकझोर देती है।
1: मतलब दुनिया से लोग देखने आते हैं और वो हमारे पास आसपास घूम रही है वो चीज, आप ये कह रहे हैं।
0: हाँ, और मेरा ये मानना है कि हम जहाँ पर रहते हैं हम क्यों ना अपनी उस संस्कृति को ही आगे ले जाएं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं पेंटिंग करता हूँ तो मैं अपनी पेंटिंग के द्वारा ही अपने ब्रज के लिए कुछ काम करूँ। जो मेरा ब्रज के लिए होगा वो मेरा ही होगा। तो मैं उस ब्रज की लोक कला है जो जितना महत्व नहीं देते हैं लोग, और उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, आप कुछ ऐसा भी बता रहे थे कि जो ब्रज की लोक कलाओं के लिए आप काम कर रहे हैं उसमें खासकर मयूर नृत्य पर आपका खासा रुझान है और उसके लिए आप बकायदा एक सीरीज तैयार कर रहे हैं।
0: मयूर नृत्य एक बहुत ही सुंदर नृत्य है और उसमें लोक कला में, तो उसका सबसे पहले कलाकार उसका एक स्वरूप देखता है, उसका सुंदरता, उसका वेशभूषा, उसका, तो वो जब हम उसको देखते हैं तो एकदम अट्रैक्ट कर लेता है।
1: हाँ, वो एक अलग तरह की कला है।
0: पंख, तो मुझे भी वो शुरू से आकर्षित किया है। तो मैंने, मुझे ये लगा कि मैं अपने रंगों द्वारा कैनवास पर इसको अच्छे रूप में प्रदर्शित करूं।
1: जी, तो आप उस पर अब लगातार काम कर रहे हैं और एक सीरीज तैयार कर रहे हैं जो जल्द मथुरा के सभी लोगों को देखने को मिलेगी।
0: हाँ, जरूर।
1: मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ देख चुका हूँ तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि वो जो सीरीज आने वाली है वो बहुत ही शानदार होने वाली है और कमलेश्वर शर्मा आपको कहीं ना कहीं मथुरा में जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये दिल्ली में बहुत सारा काम छोड़कर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़कर केवल ब्रज की संस्कृति, ब्रज के जितनी भी कलाएं उनको जानने के लिए और उनको लोगों को बताने के लिए चित्रकला बना रहे हैं और एक सीरीज बकायदा तैयार कर रहे हैं जो आपको जल्द देखने को मिलेगी। कमलेश्वर, आज आपने हमारे को इतनी बारीक जानकारियां, लोग चित्रकला देख तो नहीं सकते रेडियो के माध्यम से, लेकिन जरूर वो कल्पना के उस धरातल पर जरूर उतरे होंगे जहां उनको वो चित्रकलाएं जो आप बता रहे थे देखने को जरूर मिली होंगी।
0: जी, भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए मुझे यहाँ पर आने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, अब समय हो चला है इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। आज के अंक में बस यहीं तक, और मिलेंगे आपसे अगले अंक में यानी कि कल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे देश दुनिया की खबरें हिंदी समाचारों में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों की बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता है और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत

0: हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया, अनमोल खरब और श्यांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर में यानी कि 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मनोज कुमार शर्मा से ब्रज काव्य सुधा क्रम में काव्य पाठ संध्या वंदन। जी हाँ, भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन सुना जा सकेगा संध्या 6:30

संध्या 6:50 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण, हमारा फोन इन कार्यक्रम। आज का विषय रहेगा भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं। जी हाँ, इस पर आधारित रहेगा आज का कार्यक्रम। आज के विशेषज्ञ होंगे अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा। आप सुन सकेंगे इनसे अपने प्रश्नों के जवाब। जी हाँ, जिज्ञासाएं आपकी समाधान

संध्या 7:20 का समय रहेगा प्रादेशिक समाचार का, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 7:31 पर सुना जा सकेगा कार्यक्रम शाम सुहानी। आप भी सुन सकेंगे अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा, करेंगे हमें व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9412-25575 और सुनेंगे आप अपना गीत। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे श्रोता एक बार फिर से रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में, और रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम में। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, और रात्रि 9:00 News@9, ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार होंगे उस्ताद गुलाम हुसैन, आप सुनेंगे इनके द्वारा सितार वादन, जो राग मिश्र मांड में निबद्ध रहेगा।

आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण। आज के इस कार्यक्रम का विषय रहेगा भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं पर आज का ये कार्यक्रम। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा। किसान भाइयों, भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन, भूमि सुधार आदि योजनाओं पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे श्री अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा। हमारा टेलीफोन नंबर 0565-2530-135, जी हाँ 0565-2530-135 पर फ़ोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं श्री अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा से। कार्यक्रम का समय संध्या 6:50 से संध्या 7:20 तक। सूचना समाप्त हुई। लीजिए सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं मनोज कुमार शर्मा से ब्रज काव्य सुधा क्रम में काव्य पाठ।
1: सभी सुनबे वाले भैयान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैयाओ बड़ो भाग है हम सबको आपको कि हमने जब ब्रज में जन्म लियो है। मैं जा ब्रज की महानता को बखान करते भाई आप सबके सम्मुख कछु अपनी प्रस्तुति रख रहा हूँ।

हो या मोह है। और भैया हमें जो आदमी को जन्म दियो है जब ब्रज में ठाकुर जी ने, हमें अपने लक्ष्य को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं दो कवित्तन के माध्यम से बता रहा हूँ आपको कि छोड़ सग ताम झाम भजले तू हरि नाम, झंझट में परि पर काहे भरम आवे तू। कि छोड़ सग ताम झाम भजले तू हरि नाम, झंझट में परि पर काहे भरम आवे तू। खेच के परायो माल दिखे जो चिलूल लाल, कांतो नाए भीतर सो काहे घबरावे तू। कांतो नाए भीतर सो काहे घबरावे तू। कि जग के जे रास रंग नाए दे कबहु संग, और विष

सर हो माँ बे तू, तो हमें जा जग में आए के ठाकुर जी को नाम लेना चाहिए, परोपकार को काम करना चाहिए। बात आई मैं एक और कविता आप सबके बीच में रख रहा हूँ कि अवसर मिलो है आज कर ले तू चोखो काज, अवसर मिलो है आज कर ले तू चोखो काज, मुट्ठी बांध आयो अरु रीते हाथ जावे तू, मुट्ठी बांध आयो अरु रीते हाथ जावे तू, जग को जी सग खेल दिन चार को है मेल, जग को जी सग खेल दिन चार को है मेल, निक से बखत पाछे कछु नाए पावे तू, निक से बखत पाछे कछु नाए पावे तू, कि काल बैरी जब आवे बचा नाए को उपावे, कि काल बैरी जब आवे बचा नाए को उपावे, देख जम त्रा

काहे ढरकावे तू, ये माए रख राम, कर ले पुनीत काम, काम कछु करो है तो काहे शरमावे तू, काम कछु करो है तो काहे शरमावे तू। तो भैया हमको जा दुनिया में आके जा धरा पे आए के कछु पुनीत काम करने चाहिए, कछु पुण्य को काम करना चाहिए। तो मैं एक ऐसी काम की तरफ आपको इशारों कर रहा हूँ, बतावे की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के वक्त पे हमारी धरा पे, ब्रज वसुंधरा पे, संपूर्ण धरा पे पेड़ पौधान की बहुत कमी है। देखो चौमासो लग गए हो, पेड़न को बड़ा महत्व है। सरकार भी जा बातें कह रही है, हम सबको मिलकर वृक्षारोपण करना चाहिए, जा बात पे ध्यान देना चाहिए। कछु दुहा आपके बीच में रख रहा हूँ।

यार, तो भैया हमको पेड़न को नाय काटना चाहिए, हमको बल्कि वृक्षन को पेड़न को लगाना चाहिए। जो पेड़न को काटे बाकू ब्रह्म हत्या को से पाप लगे, सो लिखो शास्त्रन में।

ठोरो धरा पे नाए ठोरो। और हमें क्या करना चाहिए, देखो चौमासो लग गो बरसात आ गई है, के

और भैया एक बहुत ही बढ़िया उपयोग हो रहा है पेड़न को। मैं बाकी तुम्हारे ताई भाई बताना चाहूं, देखो के वाहन नित नूतन रहे, अगली अपनी सबकी जो गाड़ी है, गाड़ी हो मोटरसाइकिल हो कार हो, भाई पेड़न के नीचे रख बेते हुए बड़ो फायदा है, धूप में रख बेते बाको नुकसान हो गए, पेड़ जामे काम करें के

0: पार, जब सग भागीदार होंगे जबई जे धराए ना ब्रज बसुंधराए, ई सुरग बनेगी। और देखो जे पेड़ ना बचेंगे तो का हाल है गए, और आगे का हाल होगा वो मैं या घनाक्षरी के माध्यम से बता रहा हूँ। कि मेनख ने का काम कर दियो अपने स्वार्थ के ताई, देखो के डार डार पात पात झारहू उखार डारे, कि डार डार पात पात झारहू उखार डारे, पेड़न बगैर धरा आग जैसी बरे है, पेड़न धरा बगैर आग जैसी बरे है, पशु पक्षी बन जीव टपोराए डोलत हैं, पानी और छाह बिना कल नाए पर है, पानी और छाह बिना कल नाए पर है, पेट पूर्ति के ताई स्वार्थ में अंधो भयो, ब्रचन कु काट काट तिजोरी कु भर है, और प्राणन के ताही जब प्राण वायु होगी नाए, हिये में विचार कर काहे नाए डर है, हिये में विचार कर काहे नाए डर है। और अंत में जी बात में कहना चाहूँगो जा कवित्त के माध्यम से, क्या पेड़ लगावे थे जी धरी, और ये धरती जो बसुंधरा सुरग जैसी हो जाएगी, और काका देखो पेड़ को कैसो स्वरूप होवे, कि संत कौसो है स्वरूप पेड़ को है दिव्य रूप, के संत कौसो है स्वरूप पेड़ को है दिव्य रूप, बहुजन हिताय को काज देखो करो है, बहुजन हिताय को काज देखो करो है, फल फूल ऑक्सीजन देवे देखो दिन रहन, देत छाह और खुद ताप माहे जरो है, देत छाह और खुद ताप माहे जरो है, के हरी भरी धरा देख हिये में उमंग जगे, तनकू निरोग कर ताजगी सो भरो है, धरा कहे उपहार देव जाकू सत्कार, हिये माहे धार देखो सोनो देखो हरो है, हिये माहे धर देखो सोनो देखो हरो है, हिये माहे देखो देखो सोनो देखो हरो है,
1: हिये माहे देखो सोनो देखो हरो है। अभी आपने सुना ब्रज साहित्य कार्यक्रम में मनोज कुमार शर्मा से काव्य पाठ ब्रज काव्य सुधा क्रम में। इसी के साथ आज का ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

गीत पंडित नरेंद्र शर्मा का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के इस गीत को आवाज दे रहे थे लता मंगेशकर और साथी। और आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत संध्या वंदन क्रम में।

सोनू निगम के स्वर में ये अगला भक्ति परक फिल्म संगीत का ये गीत फिल्म जय ज्वाला माँ से

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को फिल्म शिव महिमा में, और इस गीत के साथ ही भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब सम्पन्न होता है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, आज के इस हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज का विषय है भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं। जी हाँ, आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे श्री अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा। किसान भाइयों, भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन, भूमि सुधार आदि योजनाओं पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा। आप अपने प्रश्नों के समाधान हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 0565253013 पर फ़ोन करके या मोबाइल नंबर 94

1-222-5575, जी हाँ 9-4-1-2-2-2-5-5-7-5 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं श्री अभिषेक शुक्ला, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मथुरा से। कार्यक्रम का समय रहेगा आज शाम 6:50 से। सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण।

0: अनेक योजना चला रही है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से फसल को भय नुकसान पर सुरक्षा प्रदान करे हैं, जबकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी पहुँचाव और जल को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सड़क, आवास, रोजगार और आजीविका से जुड़ी अनेक योजना संचालित करी जा रही हैं, जिनका उद्देश्य गामन को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाए है। दिलीप भैया, देखो जैसे कि हमें मालूम है कि सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाए भी, गुणवत्तापूर्ण बीजन का उपयोग करवे और सरकारी योजनाओं को लाभ लेवे के लिए भी प्रेरित कर रही है। तो आओ हम सभी सरकारी योजनाओं की सही जानकारी प्राप्त करें, पात्रता के अनुसार उनको लाभ उठावें और उन्नत खेती के माध्यम से अपनी आय और जीवन स्तर को बेहतर बनावें। जैसे कि भैया को मालूम है कि आज हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम आपको अपना कार्यक्रम है, फोन इन आप फोन के माध्यम से अपनी समस्याओं को समाधान घर बैठे ही है जाए है। तो भैया आज का जो विषय है भारत सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास योजना पर आधारित है। हमारा फ़ोन नंबर आपको मालूम ही है 25 30 135 और मथुरा ते भार के श्रोता 0565 कोड जरूर लगाए ले में। तो हमारी फ़ोन लाइन खुल चुकी है, आपकी जो भी समस्या है आप फ़ोन करो और पाओ समस्याओं का समाधान। वार्ताकार विशेषज्ञ हैं अभिषेक शुक्ला।
1: हेलो ब्रज ग्रामीण, कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान भैया बहनों को दिलीप यादव की भी राम राम। शुक्ला जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड अभिषेक शुक्ला जी हमारे स्टूडियो में है और आज का जो विषय है भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजना। किसान भैया कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है, जैसे किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से किसान भैया की जो समस्या है उनको सीधे सीधे विशेषज्ञ के माध्यम से समाधान है जाए, ऐसे ही ब्रज हेलो किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से भी समाधान हो तो रहेगा। शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपको। नाबार्ड भारत सरकार की जो योजना है, चाहे वो ग्रामीण गोदाम योजना है, बहुत सी योजना में ग्रामीण विकास के काजे आर्थिक मदद किसान भैया को प्रदान करे है। तो मोटा मोटी कौन कौन सी ऐसी योजना है जिनके माध्यम से हमारे जो किसान भैया हैं वो लाभान्वित है सके?
2: धन्यवाद। पहले तो मैं सभी किसान भाई बंधुओं को साधु नमन करता हूं और मैं जो प्रमुख भारत सरकार की प्रमुख स्कीमें हैं उसके बारे में आपको अवगत करवाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो एक लोकोक्ति है कि भाई बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो किसानों और किसान भी इस बात से बड़ी बात ही अवगत है कि भाई किसी भी किस्म की खेती कर रहे हैं तो उन्हें पूंजी की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम चलाई हुई है, जिसमें किसानों को अपने रोज़मर्रा के खेती के लिए रोज़मर्रा के में जो पैसा पूंजी चाहिए होती है उसको किसी के माध्यम से वो

0: उपयोग में ला सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप फसल उगा रहे हैं, कोई भी फसल उगा रहे हैं, गेहूं, धान, आलू, किसी भी फसल उगा रहे हैं, तो जो जनपद में DLTC कमेटी होती है वो वित्तमान निर्धारित करती है पर हेक्टेयर, और उस पर हेक्टेयर की बुआई के अनुसार आप जो निर्धारित वित्तमान है उससे आप बैंक से, कोई भी आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वहाँ से जाके आप KCC लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और
1: प्राप्त कर सकेंगे।
0: लोन सस्ते
1: तो
0: दाम पर।
1: शुक्ला जी, एक किसान भैया हमारे लाइन पे हैं।
0: जी
1: हेलो जी, किसान भैया से हमारा संपर्क कट गया, निश्चित रूप से दोबारा फोन आवेगा। तो ये बात बताइए आपने KCC की कि जिला स्तरीय समिति के माध्यम से, दोबारा किसान भैया को कॉल आ रहा। हेलो हेलो जी, किसान भैया की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो KCC निश्चित रूप से आज, जहां तक मेरी समझ है और जानकारी है, ज़्यादातर किसान भैया ने KCC बनवा रखे हैं,
0: जी
1: और या तो बहुत बड़ा लाभ किसान भैया को भयो है कि हर किसान भैया को बैंक से उनकी जो कृषि है, खेती है, फसल है, वह फसल के अनुरूप पैसा प्राप्त है। एक भैया फिर लाइन में है। हेलो
2: हेलो,
1: जी, कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं राकेश बोल रहा हूँ, गोवर्धन चौराई मथुरा से। नहीं,
1: आशीष जी
2: राकेश
1: जी
2: मेरा सवाल है डॉक्टर से कि
1: जी
2: जो प्रॉपर्टी पुश्तैनी होती है, जो कृषि की प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर तो KCC बनता ही है,
1: जी
2: लेकिन कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी खरीद ले और उसकी प्लॉटिंग में रजिस्ट्री करा लेता है, रजिस्ट्री ज्यादा जमीन की होती है, तो क्या उसके ऊपर भी KCC बनाया जा सकता है?
1: जी आप जो कहवो चाह रहे हो कि प्लॉटिंग में यानी आपने 143 कराई है जमीन?
2: नहीं, उसकी 143 नहीं है, प्लॉटिंग में जमीन खरीद ली जाती है, क्योंकि अब नगर निगम तो हो ही गया है मथुरा के अंदर, तो
1: जी
2: बहुत सी जमीन है जो नगर निगम के अधीन आ रही है, तो
1: जी
2: उसमें प्लॉटिंग में ही रजिस्ट्री हुई है, और जमीन लगभग 2 बीघा के आसपास है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, उसके ऊपर अगर KCC कराना चाहे तो KCC या किसान क्रेडिट कार्ड
1: देखो
2: अप्लीकेशन है या नहीं?
1: शुक्ला जी बता रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो है, चाहे प्लॉटिंग में रजिस्ट्री हो या सामान्य रूप में हो, जमीन की जो प्रकृति है वो कृषि भूमि अंकित है कि नहीं, ये जानने की आवश्यकता है, और विस्तार से शुक्ला जी बताएंगे। शुक्ला जी का ये ठीक है
0: नहीं, जैसे आपने बताया एकदम सही
1: जी।
0: बताया, जो जमीन है उसका लैंड यूज होता है, जो आपने बताया कि भाई जो प्रकृति है वो कृषि की होनी चाहिए। बैंक कर जो जहाँ से भी आप जिस बैंक से भी आप लोन अप्लाई करने जाएंगे वो सबसे पहले यही देखेगा कि ये जो ज़मीन आपकी है वो उसका लैंड यूज़ एग्रीकल्चर का है कि नहीं है। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड यूज़ नहीं है तो आप उस कायदे से आप उसमें क्रॉपिंग मतलब फसल नहीं उगा सकते। अगर आप वो फसल नहीं उगा सकते हैं तो उस पर आपका KCC नहीं बन सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप जब भी आप खसरा खतौनी आप लेके जा रहे हैं उसमें ये चीज़ इंगित होनी चाहिए, मतलब क्लियरली होना चाहिए कि भाई जो भी ज़मीन है आपकी है, जिसके जिसके ऊपर आप फसल उगा के आप लोन लेना चाह रहे हैं, वो कृषि भूमि की ही हो, कृषि प्रकृति की ही हो।
1: कुल मिला के खसरा जो हो है, वो खसरा बतावे है कि वो जमीन में कौन सी फसल लग
0: फसल
1: रही है, कब से लग रही है। तो खतौनी तो कहीं से भी निकल जाए, खतौनी में जो जेंस है, जो फसल है जो लगाई जानी है, बाकी जानकारी ना हो, ये चाहें तो खसरा एक बार जो इनके इलाके को पटवारी है, जैसे मतलब सदर तहसील है, ये यहाँ की बात कर रहे हैं, शहर के हैं, तो सदर तहसील में जाके जो संबंधित लेखपाल हैं उनसे खसरा निकलवा में, अगर खसरा में बाकी प्रकृति अबहू कृषि की है
0: हाँ
1: तो निश्चित रूप से इनको KCC मिल सके है।
0: जी जी
1: हाँ, चूंकि देखो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने 2036 की महायोजना बनाई है, और वह महायोजना के अनुरूप। एक और भैया लाइन पे। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: राम राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं दिगंबर पंडित बोल रहा हूँ राव जी, जुनसुटी से।
1: दिगंबर पंडित जी जुनसुटी से हो?
3: हाँ जी,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपको। गांव में बारिश फारिश वही कराए तुम्हारे में?
3: ना भाई साहब, बात तो हल्की भैया राव जी।
1: अच्छा, तो धान की फसल आपकी अच्छी है?
3: हाँ, फसल तो ठीक है।
1: चलो बढ़िया, बताओ क्या सवाल है आपको?
3: सवाल मेरे राव जी, एक तो आपसे, एक शुक्ला जी से है।
1: जी
3: शुक्ला जी से मेरा ये सवाल है कि सम्मान निधि जो आती है
1: जी,
3: वो 3 बार हमें मिली है, बाकी अब बंद हो गई, उसे क्या करना है?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये समस्या बहुत से किसान भैया के संग रहे। शुक्ला जी देखो, कई जगह पे सम्मान निधि पे जैसे इनको सवाल है, सम्मान निधि मिलने में क्या है ना, लेखपाल की रिपोर्ट भी जाए, जैसे सम्मान निधि किसान को मिलती चली आ रही है, वहाँ में कहीं लेखपाल की रिपोर्ट की बीच बीच में जैसे आवश्यकता पड़े, किसान हैं, जीवित हैं कि ना,

0: तो वह रिपोर्ट की वजह से कई बार दिक्कत है जाए, कई बार आधार नंबर में आगे पीछे कहीं कोई त्रुटि है जाए, बाकी वजह से रुक जाए, और रुक जाए तो फिर क्यों महीना की जाए, क्योंकि सम्मान निधि की जो प्रक्रिया है वो जिला स्तर से लेके और केंद्र सरकार तक जाए, यानी कि जिले से सॉरी तहसील ते जिले पे आवेगी, जिले ते मंडल पे जाएगी, मंडल ते राज्य मुख्यालय लखनऊ जाएगी, फिर लखनऊ से वो दिल्ली जाएगी, यानी कि यह या प्रक्रिया में एक आदमी की अगर सम्मान निधि बंद वही तो यह एक प्रक्रिया एक समाधान में क्यों महीना लग जाए, तो किसान भैया 6-6 महीना तक सम्मान निधि आना रही ऐसी समस्या उनको सामना करना पड़े, तो ये समस्या नहीं आवे ऐसी कोई व्यवस्था है या कैसे बचें?
1: देखिए, इसके लिए पहले तो आप एक एक मतलब अपनी तरफ से खुद जो चीज़ कर सकते हैं कि भाई अपना जो आधार पे रिकॉर्ड है आपका, उसको आप अपडेट करवा लें। अब क्या हुआ है कि ई केवाईसी वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है भारत सरकार ने,
0: जी
1: तो वो चीज़ कंप्लीट करवा लें। फार्मर आईडी कुछ लोगों की अगर नहीं बनी है तो
0: फार्मर
1: उससे
0: आईडी बन
1: हाँ
0: भरें।
1: वो लिंकअप करवा लें। और अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी अगर ऐसा आपका हो रहा है कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि मैं पीएम किसान के पात्र हूँ और मेरे को नहीं मिल रही है, तो आप जनपद के डीडी एग्री के ऑफिस में जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं कि भाई मेरे को 3 साल से मतलब पिछले 3 किस्तों में मिली है और अभी नहीं मिल रही है।
0: उप कृषि
1: वह
0: निदेशक कार्यालय में
1: हाँ,
0: जाकर
1: कृषि निदेशक के कार्यालय में जाके आप अपना अपना आवेदन दे सकते हैं जो आपके।
0: जी, एक भैया और लाइन पे जोड़ रहे हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं गोकुल से बोल रहा हूँ, सुरेश। हेलो
0: जी सुरेश जी, जी,
2: जी,
0: सुन पा
2: बताएं
0: रहे हैं सवाल
2: सर। मेरा सवाल ये है कि मैंने गुलाब लगा रखा है,
0: जी।
2: तो गुलाब पर लोन लेना चाहे तो कैसे मिलेगा सर ये?
0: गुलाब की खेती पे लोन लेना चाहे, लोन
2: हाँ जी, दो बीघा लोन है, 2 बीघा गुलाब है जी।
0: आपने केसीसी ना बनवा रखो बैंक ते? बैंक ते किसान क्रेडिट कार्ड ना बनवा रखो आपने?
2: नहीं बनोगा मेरा तो भी
0: अच्छा, बैंक गए आप?
2: नहीं, बैंक गए था, पर ये कि मैं राजस्थान का रहने वाला था, मैं यहाँ पर खेती आगे बढ़ कर रहा हूँ और 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ के डॉक्यूमेंट लिए।
0: तो राजस्थान में आप पे जमीन है?
2: मेरी खेती नहीं था खुद की।
0: अच्छा, कुल मिला के आप जिंस पे खेती कर रहे हो,
2: हाँ जी हाँ जी
0: और जो जिनके खेत आपने जिंस पे ले रखे हैं
2: हाँ जी
0: वो आपको सब 10 रुपया के स्टाम्प पे लिख के दे सकें कि भाई आपकी ये खेती हमने 1 साल को 2 साल को इनको बटाई पे
2: हाँ,
0: दे
2: दे
0: रख
2: देंगे साहब, दे
0: दे दे
2: देंगे।
0: जी। शुक्ला जी, कहाँ समाधान इनको इसके?
1: तो देखिए, आप जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सही आप गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपकी लीज पे जमीन है तो जिनसे आपने जिंस पे लिया हुआ है वो अगर प्रमाणित करके दे दें कि मैंने इनको बटाई के लिए बटाई पे दी हुई है और इतने समय के लिए इतनी अवधि के लिए मैंने दिया हुआ है, तो बैंक उस दस्तावेज के ऊपर आपको केसीसी का लोन सैंक्शन कर सकते हैं। असल बैंक को बस ये वेरीफाई करना पड़ता है कि जिसको आप लोन प्रदान कर रहे हैं वो खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर और उसमें ये भी हो जाएगा कि भाई जिनसे आपने जमीन पट्टे पे ली है वो कहीं जाके क्लेम नहीं कर सकते कि भाई यही जमीन पे मैं भी खेती कर रहा हूँ, तो 2 बार उसी जमीन पे उसी फसल पे लोनिंग नहीं हो सकती है। इसलिए बैंक को आवश्यकता रहती है कि भाई आपके पास दस्तावेज हो जो ये प्रमाणित कर सके कि इस फसल पे ये आप।
0: जी, एक भैया लाइन पे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी। मैं
0: नमस्कार जी,
2: दिगंबर पंडित से बोल रहा हूँ भाव जी। एक प्रश्न का जवाब तो मिल गो,
0: हाँ
2: एक प्रश्न का जवाब भाव जी।
0: बोलो।
2: ये हम गाय बजाई वाले आदमी हैं, आपके केंद्र पर हम 2 दिनों के लिए ड्रामा साहब हैं।
0: है जी,
2: हम गाय बजाई वाले आदमी हैं, आपके प्रोग्राम में जाना चाहें केंद्र पे। हाँ
0: केंद्र पर प्रोग्राम देना चाहो?
2: जी,
0: अच्छा, केंद्र पर प्रोग्राम है जाओ, काउ दिन आओ केंद्र पे, ये तो आप सबके काज है, जनता को ही केंद्र है। ठीक है, एक और भैया लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो जी
2: हेलो,
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
2: राम राम साहब।
0: राम राम जी
2: मैं कह रहा हूँ बाबू जी, मेरे
0: जी
2: साढ़े 3 बीघा कच्ची जमीन है,
0: हैं?
2: 3.5 बीघा कच्ची जमीन।
0: कच्चे 3.5 बीघा जमीन है आप है?
2: अब ऐसा है कि भाई पिताजी टीचर।
0: आपके पिताजी टीचर हैं? ठीक है।
2: अच्छा हाँ, और उन्हीं के नाम पे तो
0: ठीक है,
2: ये वो है 2-2 हजार रुपये किसान मंत्री मिल गए, वो हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे?
0: नहीं, आपके पिताजी सरकारी शिक्षक रहे हैं और सेवानिवृत्त है चुके हैं, तो सम्मान निधि उन्हें नहीं मिलेगी
2: नहीं
0: ना।
2: मिलेगी।
0: पेंशनर जो हैं, सरकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार से पेंशन पावे वाले जो लोग हैं उनके काज देखो, ये किसानन के काज है अब, इन्हें इनकी तो जीविका चला

0: सरकार पेंशन दे ही रही है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: जो
0: तो
1: हमारी नाम आएगी जब मिलेगी।
0: हाँ बिल्कुल, अरे आप तो समझदार आदमी हो, सब जानो। तो शुक्ला जी, जो एक दो तीन बात निकल के आई, एक सवाल के बीच में एक सवाल मेरे जहन में भी उठो। जैसे कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने एक महायोजना बनाई है और महायोजना में क्लस्टरिंग कर दी है, ये कॉमर्शियल क्लस्टर, ये पार्किंग जोन, ये एग्रीकल्चर जोन और ये रेजिडेंशियल जोन। तो ये सब जितने भी रोड किनारे के गांव हैं उनकी जो ज़मीन है, हालांकि उनकी प्रकृति जो कॉमर्शियल जोन है वो भी अभी खसरा खतौनी में वो कृषि वाम है रही है और कृषि में ही समाहित है और केसीसी भी है रहे। तो जैसे वो सवाल बीच में गोवर्धन चौराहे से उनको
1: पूछा
0: भाई साहब
1: थे।
0: को आया हो के साथ रजिस्ट्री प्लॉटिंग में ही है रही है, ज़मीन 2 बीघा है, तो ये जो महायोजना के प्लान में समाहित जो सेक्टर हैं, खसरा हैं, आप चूंकि जिले के अधिकारियों के संग आप बैठो, तो निश्चित रूप से यह विषय पे भी अगर आपको कोई जानकारी है तो आगे भविष्य में किसान भैया को भी यह समस्या पैदा रह सके।
1: जी, मतलब आपने सही बात करी है इस पे, थोड़ा सा
0: एक
1: और।
0: भैया लाइन पे पहले इनको सवाल ले लें। हेलो
2: हेलो
0: जी,
2: जी, राधे राधे सर
0: राधे राधे जी,
2: जी, हम सही से बोल रहे हैं सर
0: का शुभ नाम है आपको?
2: जी। छोटू शर्मा
0: छोटू जी, स्वागत है, क्या सवाल है?
2: जी। सर हम केसीसी कराना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है सर?
0: बैंक आपकी कौन सी पड़े है?
2: बैंक हमारे गांव में पड़ती है, पीएनबी जी।
0: पंजाब नेशनल बैंक। जमीन कितनी है आप पे? तो
2: जमीन है सर लगभग 3 एकड़।
0: आज तक बैंक गए ही ना, ज्यादा पैसा वाले दिखो।
2: अरे ना है सर, कभी अनपढ़ है साहब, अप्लाई ना करो साहब कभी।
0: हाँ तो बैंक जाओ, मैनेजर साहब से बात करो, खतौनी लेके जाओ।
2: अच्छा जी।
0: हाँ
2: अरे
0: अनपढ़ हो, जमीन ने तो क्या भी, ये जमीन खरीदी है आपने अब तक?
2: साहब दादा लाई है जी, पैसी कोई 5 सवा 5.5 बीघे।
0: अरे दादालाई के अलावा वो तो खरीदी होगी।
2: ना खरीदी साहब, पैसा ही ना है, कहाँ से खरीदे।
0: अच्छा चलो, देखो ये
2: महंगाई का दौर बहुत है साहब।
0: शुक्ला जी बता रहे हैं, कार्यक्रम सुनो हमारो, कि केसीसी के काजे कहाँ कागज चाहिए और कैसे बैंक से संपर्क किया जाए, कैसे हो, ठीक है ना?
1: देखिए नमस्कार जी, देखिए दो आपके पास दो माध्यम है। एक आप सीधे बैंक में जाके बैंक से आप एप्लीकेशन फॉर्म लेके वहाँ पे जमा कर सकते हैं, उसमें आपका केवाईसी वाला हो जाएगा। आपका खाता है किसी बैंक में अभी कि नहीं?
0: जी किसान भैया,
1: पीएनबी में खाता है?
0: निश्चित रूप से खाते तो रहे ही हैं सब आजकल,
1: अच्छा
0: तो
1: हाँ,
0: क्योंकि
1: जुड़े होंगे। तो जिस बैंक में भी आपका खाता है, ठीक है ना, उनके पास वहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट आपका अवेल होगा। आपको केवाईसी वहाँ पे जमा करना है, साथ में ये खसरा खतौनी आपकी जमा करनी है कि भाई आपका खेत आपके नाम पे है और आप कौन सी फसल उगा रहे हैं। उससे बैंक ये वेरीफाई, उन दस्तावेजों से ये वेरीफाई कर पाएगा कि कौन सी फसल उगा रहे हैं। उस फसल के हिसाब से ही आपका जो केसीसी की लिमिट है वो निर्धारित होती है, तो वो निर्धारित हो जाएगी। और आप बैंक, मतलब ये बहुत ही बैंक के लिए कॉमन प्रोडक्ट है, आप जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, खसरा कटौनी के बेसिस पे बैंक आपको लोन सैंक्शन कर देता है। अब इसके साथ अगर कोई आपके घर में थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करना जानता है तो भारत सरकार ने एक कृषि का ऐप करके भी स्थापित करी, अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च करी है,
0: कृषि का ऐप
1: कृषि का ऐप।
0: जी।
1: उसमें आप घर बैठे बैंकों में आवेदन कर सकते हैं। तो आपको अपना आधार से रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिस अगर आपका जो आधार से लिंक्ड आपका मोबाइल फ़ोन है उस पर ओटीपी आएगा, उसको डाल के आप कृषि का ऐप में लॉग इन कर लीजिए। और एक बार आप ऐप में लॉग इन करते हैं उसमें आप सारी जो जानकारी आपको देनी होती है कि भाई मेरी ज़मीन कहाँ कहाँ पे है, क्या उस ज़मीन पे मैंने क्या कौन कौन से पौधे उगाई हुई है, साथ में इसके अतिरिक्त तो और भी वो जानकारियाँ लेते हैं कि भाई आपकी आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एसेट्स हैं आपकी, हैं क्या आपने कहीं और से बैंक से लोन लिया है कि नहीं लोन लिया है। साथ में एक बहुत प्रमुख चीज़ है, जो चाहे आप ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन कर रहे हैं या आप फिजिकल मतलब बैंक के पास जाके आप आवेदन कर रहे हैं, बैंक आपका सिबिल स्कोर देखता है। पुराना आपने जो लोन लिया है वो आपने सही समय पे पूरे पैसे चुकाए हैं कि नहीं चुकाए हैं, वो जो मतलब हम लोगों का जो किसानों से बातचीत होती है वो सबसे बड़ी बातचीत, मतलब उनमें सबसे बड़ी जो उनको दिक्कत यही आती
0: परेशानी
1: है, दिक्कत यही आती है कि भाई कभी उन्होंने कोई लोन लिया था जो उसका उन्होंने भुगतान सही समय पे नहीं किया था, जिसके कारण उनका सिबिल स्कोर खराब हो गया है। अब उस पुराने सिबिल स्कोर खराब होने के चक्कर में वो नया लोन के लिए आवेदन नहीं दे पा रहे हैं।

0: जी भैया और लाइन पे। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: ये मकारम से बोल रहे हैं साहब,
0: काशो नाम है आपको?
1: बीरेंद्र सिंह है साहब।
0: जी, क्या सवाल है आपको?
1: सवाल ये ऐसा कि हमें एक बुक किसने मिली है प्रधानमंत्री का,
0: तो आपने अपने ब्लॉग
1: किसान
0: पे,
1: सम्मान निधि जी।
0: हाँ, आपने अपने ब्लॉग पे जो खाद बीज की दुकान है, आपके ब्लॉग पे जो खाद बीज की दुकान है ना,
1: हाँ,
0: कौन सा ब्लॉग पड़े आपको?
1: रायो
0: राय राय ब्लॉक पे जो कृषि रक्षा की दुकान है, सरकारी दुकान, वहाँ पे जो कर्मचारी तैनात हैं उनको जाके अपनो आधार लेके नहीं है, एक बार उन्हें दिखाओ कि आपकी सम्मान निधि क्यों बंद हो गई है।
1: यूँ कह रहे हैं कि 2017 के बाद की काबू मिली ना रही,
0: सब मिल रही है, लगातार मिल रही है।
1: इनके तो यूँ कह रहे थे कि
0: ना
1: दो हजार
0: ना,
1: सत्रह के बाद में।
0: आप एक काम करो,
1: हाँ जी,
0: यहाँ जिला कृषि विभाग को जो है ना, उप कृषि निदेशक को कार्यालय है मथुरा में,
1: हाँ
0: और जे पड़ेगो मथुरा में कचहरी पे पुलिस लाइन के सामने रोड जा रहा है,
1: अच्छा जी,
0: तो वहाँ उप कृषि निदेशक कार्यालय पे यह सब चीज़ को देखे बारे कि आपकी सम्मान निधि क्यों बंद भई है, आपकी आधार में गड़बड़ी भई है, आपके बैंक के खाते नंबर में कोई गलती भई है, या तहसील स्तर से कोई रिपोर्ट जानी है वो ना लगी, तो बाकी जानकारी आप करके बाको समाधान कर दो
1: अच्छा जी,
0: तो आपकी सम्मान निधि दोबारा से जितनी रुकी हुई है सबरी एक संग मिल जाएगी।
1: ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद।
0: जी, तो देखो, आपने बात करी सिविल स्कोर की, और केसीसी जो है फसली ऋण है, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक भैया लाइन पे। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर।
0: राम राम जी।
1: हेलो
0: हाँ, सुन पा रहे हैं। कौन बोल रहे हैं
1: सर, मैं ये कह रहा हूँ
0: जी?
1: जैसे किसान निधि मिलती है, किसान निधि मैं बोला हूँ मोहली गांव से,
0: जी
1: किसान निधि मिलती है, मान लो घरवाली के नाम जमीन दूसरे गांव में हो और उसके आदमी नाम दूसरी जगह गांव में जमीन हो, तो क्या किसान निधि दोनों को मिलेगी या एक को मिलेगी?
0: बहुत अच्छे सवाल किए आपने शुक्ला जी। पति पत्नी दोनों की जमीन अलग अलग गांव में है, तो सम्मान निधि के हकदार दोनों अलग अलग होंगे या एक ही
2: नहीं,
0: आदमी को मिलेगा?
2: परिवार को एक, परिवार में एक का
0: अच्छा,
2: एक।
0: परिवार में एक व्यक्ति को दैव्य को प्रावधान है, चाहे कितनी भी जगह पे जमीन हो।
2: हाँ
0: बहुत अच्छी है। एक और भैया लाइन पे शायद लगातार। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रही है?
1: हेलो,
0: हाँ हेलो जी। तो सिविल स्कोर की बात आपने कही, और केसीसी जो है, एक और भैया लाइन पे है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रही हैं?
1: अच्छा नमस्कार,
0: नमस्कार जी।
1: अच्छा मैं गोड़ा ब्लॉक से बोल रहा हूँ, इगलास तहसील से।
0: अच्छा, क्या शुभ नाम है आपको?
1: मेरा नाम रघुवीर रघुवीर सिंह है, रघुवीर सिंह।
0: हाँ जी रघुवीर जी, मैं तो ये समझ लो
1: मेरे 14 बीघा जमीन है मेरे पास,
0: जी, पक्की कच्ची,
1: और मैंने ढेता बहुत ढेता रहा हमारे पानी के, पानी
0: ठीक है।
1: जबई पे पड़े जबई बाजार दो, जबई जबई जबई पानी करे को। अब मुझे बताओ कोई सलाह दो, ऐसी क्या चीज बहुत बुआ में
0: का चीज करूं?
1: ढेता भयो, मैंने मतलब लाए थे 130 रुपया किलो
0: ढेंचा
1: हमारे
0: मरगो,
1: खेत में हरी खाद के लिए।
0: ठीक है।
1: अब वो उपजो ना, वो कम कम उपजा एक आध पेड़ हरी खाद तो होगी, बेगर बेगर उपजो है पानी और भरगो है, धान में करना ना चाह रहे हो तो फसल चक्र हर साल धान होता है।
0: जी, तो अब का मतलब फसल की जानकारी चाह रहे हो कि कहाँ चाह रहे हो
1: डॉक्टर
0: आप? कहाँ मतलब फसल की जानकारी चाह रहे हो, कौन सी फसल लगाऊं?
1: न्यू सवाल है, रोग मामे वो कहा आ जाए, अब कोई चीज अब कोई कार्तिक की फसल हो जाएगी या फिर लाया के लिए रहने दूं।
0: अच्छा, देखो आज का जो हमारा कार्यक्रम है ना, वो सरकार की जो योजना है, सरकारी
1: मैं
0: योजना।
1: आपके कार्यक्रम में सुनते रहती हूँ, बहुत धन्यवाद है, चाहे
0: जी
1: बताओ मत बताओ समस्या है,
0: जी
1: परंतु वैसे नहीं सुनता हूँ आपके
0: नहीं, बहुत
1: मन
0: बहुत
1: के।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा कार्यक्रम सुनो, जानकारी दे रहे हैं आपको, ठीक है ना? तो इन देखो, इन किसान हैं, और किसान की जो समस्या हो, आपको विषय कछु भी हो भाई, अपनी समस्या थे, मतलब वो इन्हें ढेंचा की फसल लगाई, वो बरसात के चलते ख़त्म है गई है। अब ये पूछ रहे हैं कि या समय कोई ऐसी फसल है सके, तो हम जहाँ तक मेरी समझ है वा के हिसाब से देखो, या समय पे अच्छी जो फसल है, आगे सरसों की अगर लगाएंगे तो जो खरपतवार की जो समस्या है

0: ना फसल चक्र की इनने बात करी है, जागरूक किसान है, धान की फसल छोड़ी है, यानी कि अपने खेत में जो धान की फसल ले सके वो फसल ना लगाई, ढेंचा हरी खाद के काजे की हो है। तो जागरूक किसान है तो आपको सलाह यही है कि आप अपनी वहाँ में पालक जैसी जो फसल है, पालक है, मूली है, सब्जी वाली जो फसल है, जो कम समय में यानी 1 महीना 1.5 महीना में ही आपको फसल दे सके, और बाकी बाद में आप सरसों की खेती भी कर
1: कर
0: सको,
1: सकते हैं।
0: तो ऐसी फसल की सलाह हमारे हिसाब से ठीक है। और पालक भी यह समय 25-30 रुपये किलो मंडी में जा रहा हो, तो आप छोटे छोटे स्तर पर पूरे में ना करके तो सब्जी वाली जो फसल है पत्ता वाली कम समय में पके वाली सब्जी लो, और बाकी बाद में सरसों लो, और सरसों की फसल से आपको खरपतवार नियंत्रण की जो समस्या है वो भी दूर होगी। एक लगातार किशन भैया के फ़ोन आ रहे हैं, तो हमारी जो चर्चा ही सिविल स्कोर और केसीसी, तो केसीसी कृषि ऋण है, ऋण न है कि कृषि ऋण है,
1: जी
0: यानी कि फसल की जो लागत है, अगर गुलाब की खेती कोई भैया कर रहा हो तो बाकी अलग कीमत है, आलू की फसल की अलग कीमत है, बाजरा की अलग कीमत है,
1: जी
0: तो खसरा में जो फसल लिखी रहे वह फसल के अनुरूप वो धनराशि बैंक प्रदान करे,
1: जी
0: यानी फसल के काजल जो लागत को पैसा है
1: हाँ।
0: वो है, तो सिविल स्कोर को यहाँ में मतलब नहीं होना चाहिए।
1: सिबिल स्कोर देखिए, आपने बोला कि इसमें सिबिल स्कोर की महत्ता थोड़े से समझ लीजिए।
0: जी
1: बैंकर्स के लिए क्या होता है, वो सिबिल स्कोर से आपका जो उनको उनको क्या पता चलता है, उनको पता चलता है कि इस व्यक्ति ने पहले कभी लोन लिया था,
0: जी
1: इसने सही समय पे मेरे को पैसा वापस किया है कि नहीं वापस किया है। अगर उसका सिबिल स्कोर खराब है तो मतलब आदतन ऐसी बात हो गई है कि उसने वो लोन लेता है, वो सही समय पे पैसे वापस नहीं करता है,
0: यानी
1: जिस
0: कहो दुकानदार थे हम लगातार उधार खा रहे हैं और समय पे पैसे ना
1: हाँ
0: चुका रहे, तो वो हमें सामान दे वो बंद कर
1: मना
0: दे,
1: कर देगा।
0: ऐसी ऐसे ही बैंक की स्थिति है
1: जी
0: कि भैया ये अगर आपको अपने काम धाम ठीक ठाक रखने हैं तो बैंक से समय पे लो और समय पे
1: समय
0: चुकाओ,
1: पे
0: यह चीज़
1: पैसे
0: को
1: वापस
0: ध्यान
1: कर।
0: रखना चाहिए। क्यों, एक और किसान भैया लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है।
2: हेलो।
0: हाँ, कौन बोल रही हैं?
2: हाँ राधे राधे जी, किसान
0: राधे राधे जी।
2: वाणी प्रोग्राम से बोल रहे हैं।
0: हेलो, ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम से बोल रहे हैं जी।
2: हाँ तो देखिए सर, हमारे पास जमीन काफी है जी,
0: जी कौन से काम से बोल रही हैं आप?
2: मैं तो छुप के फोन कर रही हूँ, ग्राम नहीं बता रही वैसे। तो
0: अच्छा, छिपके कहीं फोन कर रही हैं कोई? यहाँ तो अच्छी आकाश।
2: हमारे थोड़े पढ़े लिखे नहीं है इतने,
0: अच्छा, मैंने थोड़ा
2: जमीन उनके
0: सा।
2: पास काफी है, तो
0: जी जी कितने?
2: उनको बीमा सिर्फ 45,000 मिलता है, तो सर इतना ही मिलता है या फिर हमारे पास जमीन है 18 बीघा,
0: 18 कच्चे
2: नहीं नहीं पक्का,
0: पक्के 20 विषय को बीगो?
2: हाँ जी 20 विषय का।
0: अच्छा, मतलब बीमा आपकी फसल में जो नुकसान हुआ बाकी बीमा की राशि आपको 45,000 मिली है?
2: 45,000 मिलती है, कभी मिलती है कभी मिलती ही नहीं है।
0: देखो यार, मैं बीमा की जो बात है वो ये है कि आपके लेखपाल की जो रिपोर्ट है ना,
2: हाँ जी
0: तो आपकी अगर फसल में नुकसान हो तो जितना नुकसान है रहो बाक लेखपाल से संपर्क करके अगर आप पूरे कराओगे, क्यों शुक्ला जी?
1: जी,
0: तो
1: देखिए इसमें दो
2: वैसे
1: तीन
2: मिलती कितनी है लगभग?
1: नहीं, देखिए इस पे ये निर्भर करता है कि आपने जब जब बीमा का आवेदन हो रहा होता है तो आपने कितने पूरी ज़मीन दिखाई है कि नहीं दिखाई है ना। देखिए कई लोग कई बार ऐसा हो
0: अब
1: जाता
0: आपने
1: है।
0: ये शुक्ला जी ये बताना चाह रहे हैं जो नाबार्ड के अधिकारी हैं कि आपने जमीन को जैसे बीमा कराए हो तो पूरी जमीन को बीमा कराए हो या छोटे से हिस्सा को कराए हो, पहली चीज तो ये है।
1: किस
0: नहीं वो
1: फस
0: भी कभी मिलते हैं कभी मिलते भी नहीं है। नहीं, वो ना मिलवे ना मिलवे की बात पे पीछे आएंगे, लेकिन आपने जो बीमा की किस्त जमा करी कितने रुपया जमा करे आपको मालूम है? किस्त के पैसे की 2,500 जमा करे, 5,000 जमा करे, कछु बताई?
2: नहीं कर, हाँ जमा करते हैं कभी 12,500 कुछ ऐसा करते हैं, साढ़े
0: तो
2: चार हजार एक बार 4,500 किए थे। हाँ
0: हाँ, तो देखो अगर 12-12,500 किए तो आपको मतलब जी है कि करीब करीब में पूरे खेत को बीमा, क्यों शुक्ला जी?
1: जी
0: लेकिन 4,000 कर रहे हैं तो आपको मतलब ये कि एक
2: अच्छा
0: तिहाई यानी 30% जमीन को ही बीमा भयो। तो कभू मिलें कभू न मिलें, या को कारण या को जवाब इन्हें और दे दो कि बीमा न मिलवे की जो वजह है वह मैं जो नुकसान की आकलन की जो व्यवस्था है सरकार की, पहले जिला तहसील स्तर की इकाई होती है, अब गांव इकाई है, तो गांव में कैसे वह को आकलन हुए और कैसे बीमा को निर्धारण हुए?
1: देखिए, एक तो मतलब दो किस्म की आपदा होती है, एक
0: जी
1: व्यापक होती है एक
0: जी
1: स्थानीय होती है,
0: जी
1: ठीक है ना। अगर व्यापक किस्म की आपदा है तो उसमें आपका जो निवारण होता है वो आपका, जो आपने बोला कि भाई तहसील लेवल पे जाके फील्ड पे टेस्टिंग होती है, उसमें ये निर्धारित किया

0: जाता है कि भाई यील्ड में मतलब कितना हमारा उत्पादन हुआ, उसमें कितनी कमी आई है, और उसके बाद वो जो रिपोर्ट जाती है उसके अनुसार, मान लीजिए जैसे भाई आ गया कि भाई 50% आपको हमारी कमी आई है, उस कमी के अनुपात में फिर आपका
1: नुकसान की
0: बिल
1: भरपाई
0: नुकसान
1: करेगी
0: की भरपाई होती है
1: बीमा कंपनी
0: जी।
1: जी।
0: अगर अगर मान लीजिए क्या कहते हैं आपका स्थानीय कोई आपदा है, उसमें क्या होता है कि आपको 72 घंटे में जो नंबर है मतलब टोल फ्री नंबर है कि 1-444-7,
1: जी
0: ठीक है ना, उस पे किसान को जाके तुरंत कंप्लेंट लॉन्च करनी है। 72 घंटे में अगर नहीं वो कंप्लेंट कर रहा है तो फिर उसका कहते हैं बीमे जो नुकसान का है भरपाई नहीं होगी।
1: तो ये तो बीमा कंपनी की एक जोर जबरदस्ती है, किसान ने पता ही ना चले टोल फ्री नंबर। भाई नेकाब तो समय देना चाहिए, ये थोड़ी है कि 72 घंटा में ही करे आदमी, मेरी पूरी फसल बर्बाद है गई, मैं तो वैसे ही बर्बाद बैठूं, दिमाग ही खराब है।
0: देखिए ये मैं समझता हूँ कि हाँ कि भाई
1: हम
0: 72 घंटे
1: अच्छा
0: की समय सीमा थोड़ी सी कुछ किसानों को कम लग सकती है, पर इसीलिए हम लोग का ये प्रयास रहता है कि भाई मतलब फसल बीमा योजना वाले
1: मुख्य
0: भी ये
1: समाचार।
0: निरंतर प्रयास करते रहते हैं
1: उत्तर
0: कि किसी
1: प्रदेश
0: किसान का।
1: विधानमंडल में अनुपूरक बजट पास, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये के चलते सदन में नहीं हो सकी चर्चा। एनएचएआई ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में जिम्मेदारों पर शुरू की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू। 12 अगस्त तक होगा पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। आज ही सदन में संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की मंशा इस पर चर्चा करने की थी, लेकिन विपक्ष ने इसमें रुकावट पैदा की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी।
2: युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे, लेकिन सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है।
1: उधर विधान परिषद में आज उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-2027 का अनुपूरक विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 समेत 12 विधेयक पारित किए गए। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। अब स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR की तर्ज पर इस क्षेत्र का भी मास्टर प्लान तैयार कर समग्र विकास किया जाएगा। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विकास क्षेत्र में 6 जिले शामिल होंगे। प्रयागराज को जोनल केंद्र बनाया जाएगा, जबकि चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन और बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। कौशाम्बी को बौद्ध पर्यटन केंद्र, फतेहपुर को कृषि व्यापारिक केंद्र तथा बांदा को बुंदेलखंड का आर्थिक केंद्र बनाया जाएगा। वहीं हमीरपुर और महोबा को खनिज एवं औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में देखरेख करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में NHAI के क्षेत्राधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि परियोजना के निर्माण और निगरानी में पाई गई कमियों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जा रही है।
3: हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, जैसे कि कंसेशनाय का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ थे, DGM हाईवेज को इमीडिएट

0: सस्पेंड भी किए हैं और उसको 2 साल के लिए डिवार भी किया गया है। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे, और रेसिडेंट इंजीनियर उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और 2 साल तक के लिए उनको भी डिवार किया गया।
1: उन्होंने बताया कि फिलहाल सड़क धंसने वाले स्थान पर यातायात का डायवर्जन कर दिया गया है और वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से जारी है। सुधार कार्य पूरा होने तक यात्रियों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। टोल राजस्व की हानि की वसूली निर्माण और देखरेख करने वाली कंपनी से की जाएगी। मेडिकल परामर्श समिति ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू कर दिया है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। तकनीकी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों के भवनों को एक रूपता के साथ डिजाइन किया जाए। साथ ही प्रत्येक संस्थान में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाए जिसमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। ये समिति समय समय पर उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों की समीक्षा करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रही हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ, जौनपुर, हमीरपुर समेत कई अन्य जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़ जाने के कारण बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियों के चलते आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के सभी जनपदों में 9 से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष 5 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य है। एक रिपोर्ट।
3: हर घर तिरंगा अभियान में 6 से 8 अगस्त तक चलने वाले पहले चरण में स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगे से प्रेरित कलाकृतियों से सजाया जाएगा। 9 से 12 अगस्त के बीच होने वाले दूसरे चरण में प्रत्येक जनपद के तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसके अलावा तिरंगा महोत्सव, तिरंगा मेले का आयोजन भी किया जाएगा। तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच शिक्षण संस्थानों में रैलियां आयोजित कराई जाएंगी। मेरठ, चौरी चौरा, झांसी किला, बिठूर, रेजिडेंसी, बलिया, सुहेलदेव स्मारक पर 9 से 15 अगस्त तक विशेष आयोजन भी किए जाएंगे। इस अभियान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 2 करोड़ झंडों का निर्माण किया जाएगा। वहीं 1 करोड़ झंडे शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समूहों के माध्यम से तैयार कराए जाएंगे। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित राम दरबार में दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म कर दी है। अब श्रद्धालु सामान्य दर्शन कतार से रामलला के दर्शन के बाद सीधे प्रथम तल पर स्थित राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अमरोहा में आज

पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने थाना नौगांवा सादात क्षेत्र में मोटरसाइकिल से हरिद्वार जल लेने जा रहे कांवड़ श्रद्धालुओं को हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रियों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने समुचित व्यवस्था की है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए साफ सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश समेत अन्य व्यवस्थाएं भी कराई गई हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में अनुपूरक बजट पास, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये के चलते सदन में नहीं हो सकी चर्चा।

लोकतांत्रिक रवैये के चलते सदन में नहीं हो सकी चर्चा। एनएचएआई ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में जिम्मेदारों पर शुरू की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू। 12 अगस्त तक होगा पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: मीडियम वेव 401.2
8: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ, आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। करें हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। जी हाँ, 9412225575। लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश।

आप जुड़े हैं व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से हमसे सुधी श्रोता। आपने संदेश भेजा ये पंडरिया चौक गंडई से, ये संदेश मिला प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की और रौनक सेन का। आप भी जुड़े कार्यक्रम में। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीना कुमारी पुंजराज आरती आकर्षण और जय श्री का ये मैसेज। अगला संदेश गांव पठेना पाटिल छत्तीसगढ़ से है। परमेश्वर साहू राजपत्ती काजल पूर्वी रेशवा और राजेश साहू का ये संदेश मिला। आपने भेजी अपनी फरमाइश। मजनू कटीला से है कमल बलूजा मधु बलूजा सागर। 17 एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में और आपका भी संदेश मिला कार्यक्रम में। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा माया राहुल विनीत और सोनम वर्मा का आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। ये है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना और नेवान। अगला संदेश परम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करीमवीर दपिंदर वीरिंदर कुलदीप सिंह एकम दमन और अभिजोत का मिला। ये सभी सुधी श्रोता। अगला संदेश है सदर बाजार मारवाड़ बिलाना राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान जय नारायण चौहान तरुण और प्रतीक चौहान का। आप भी जुड़े कार्यक्रम में। जालना शहर से सोमनाथ जाधव गीता ओम जाधव सुभाष चंदन एकनाथ और संगीता। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव अनिता।

यादव, आरती प्रसाद और सिया और ये सभी इनके मम्मी पापा। संदेश के साथ में सुधी श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम में। सूरज रेडियो श्रोता संघ से सहसपुर लोहारा दुनिया खुर्द जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से गुनी राम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज और सूरज राजपूत, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, तुषार करांगले, जिंगाव विदर्भ से वसंतराव भोजने और पीएस नवानकर, आप भी जुड़े रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजुरू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। अगले संदेश के साथ में जुड़े हैं सुधी श्रोता कार्यक्रम में। रजक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान के सुधी श्रोता।

अगले संदेश के साथ में गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज रामनगर कदमा जमशेदपुर से मराहू जायसवाल देवंती, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल का संदेश मिला, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंशु संस्कृति और पौरुष भी जुड़े कार्यक्रम से, मेहर नगर उमेरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गमाणकर, राही श्रीमती सरिता गमाणकर, प्रणता सिद्धांत, अर्जुन गमाणकर आप जुड़े, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी और बेबी शायना इब्राहिमी संदेश के साथ में आप जुड़े, हाशमी परिवार से ये सभी सुधी श्रोता इन्होंने मैसेज भेजा अपना, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा अरहाम और मोहम्मद आलम, एक और संदेश के साथ में सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से ये सुधी श्रोता कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप जुड़े कार्यक्रम में मैसेज के साथ में, सोहन जोशी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हरमिंदर चावला, लोकेश, आकाश वर्मा, मनीष वर्मा, रेहान, बेबी वैदेही और हंसिका जोशी, आइए सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। इस गीत को लिया हमने फिल्म हकीकत से आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, गीत कैफी आज़मी का, संगीत मदन मोहन का।

लेते हैं श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेश इस गीत में ही, और आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी। अगले संदेश के साथ में आप जुड़े पंचशील नगर तालुका करजत से इकबाल अहमद बागवान, शमीम अहमद, रफत इमरान, रईस अहमद, अखलाक अहमद फूलवाल माली और अहमद मुंबई कर, ये सभी संदेश मिले और आप भी जुड़े कार्यक्रम में। आपने संदेश भेजा रमेश मनीवत आनंद, श्यामलाल प्रकाश कर्नाटक स्टेट छिन्न तिरुपति से, ये सभी श्रोता साथी जुड़े। और एक और संदेश के साथ में गांव हंडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा और सार्थक शर्मा का संदेश है। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर के सुधीर श्रोता, और आप भी जुड़े मोहम्मद खाजा रिजवुद्दीन, मोहम्मद खाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया का ये संदेश मिल, और आप भी जुड़े गोपी की नगरिया मिठ से मिठनलाल सारस्वत, नेहा नीरज निकेता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुगू और इनके परिवारीजन, गांव नौगरा से कोमल मास्टर, यशोदा, लखन, सूरज, रोहित, चंचल, अंजना इनके मम्मी पापा, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अभिजीत, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके मम्मी पापा का ये संदेश मिला। ब्रज रेडियो श्रोता।

से मित्र परिवार से हैं ये चौधरी महेंद्र सिंह, नगला राणा सिहोरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, राधा सिटी मथुरा से राजू लवानिया कंदौली, आगरा के सुधी श्रोता साथी, और एक और संदेश के साथ में जुड़े हैं आप बाजार चौक पुलगांव महाराष्ट्र से अब्दुल कलाम और नजीमा अंजुम का। ये संदेश मिला,

मैसेज के साथ में सुधी श्रोता जुड़े हैं, रजौनी जिला महुआ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय बानपाल, जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और बघेल परिवार। एक और संदेश के साथ में गंगोला दत्तागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा रेपू खान, साबरी बेगम, शाहनवाज, शाहबाज खान, सैफ, ईशान, आजम और अरहान का ये संदेश मिला। पोटिया कला दुर्ग से जुड़े हैं संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। आप भी जुड़े कार्यक्रम में मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली और लाडली निशा। एक और संदेश के साथ में बरेली उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं सदस्य, ये सभी शंकर सोनी, द्रौपदी रानी का संदेश मिला। आप जुड़े कार्यक्रम में औसा जिला लातूर से उस्मान शेख, फौजी सायरा, बानू, सिमर और करिश्मा। मैसेज के साथ में संदेश के साथ में जुड़े हैं सुधी श्रोता, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा, पुष्पा, ऋषभ और इनके परिवारिक जन। मारारा दरवाजा ईटा से नवी हसन अब्बासी, सहनवाज, नवेद, सुहेल, अनम और रसीद वारसी। आप जुड़े दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार, रिंकी और गोविंदपुरा सीकर से ये सुधी श्रोता, गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका थांदी, नवा शहर पंजाब से ये सुधी श्रोता है और तेलंगाना से जुड़े हैं मोहम्मद बुरहुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान। जय जिनेंद्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रज्ञेश और प्रतेश।

आइए सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म सुहाग से ये गीत, आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सुहाग से ये गीत। आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की थी, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश। आप जुड़े कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश के साथ में। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी परिवार संदेश के साथ में। आप भी जुड़े। जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू सभी। गांव नागर कोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधीश होता। और आप जुड़े कार्यक्रम में। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा मोहाली से टीडी मल्होत्रा, सुभाष चंद्र बजाज और कालका से ये सभी सुधीश होता रहे। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले का संदेश मिला। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। मुगाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित बयाल, कुमार प्रथमेश, कुमार सरवद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी और हर्षता देशमुख का ये संदेश। आप जुड़े कार्यक्रम में। धाड़ी नादुरा महाराज से श्रीकंत बांठे, संदीप बांठे और अमूल्य बांठे, आप जुड़े कार्यक्रम में। लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम सक्षम, सागर लाखना दौन मध्य प्रदेश से संदेश में। नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला, विशाल, नारायण, सुपान, आशीष नवानकर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव जुड़े। कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री प्रतीक कुमार। मामलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान मोहन, जलद जिगांव, दिविदर्भ से वसंत राव, राजकुमार डूटी, प्रमोद और पुष्पेंद्र जुड़ी, गांव फरांसी जिला हिसार से ये सभी सुधीश होता। सोनाली दुबे, मोनिका रानू मैडम, महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश के सुधीश होता। आप जुड़े। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत, कौशिकी वर्मा, दीपाली युवान और आर के राजा। आपका संदेश मिला। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, कविता अनिकेत, आप भी जुड़े। लातूर से संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन, विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम, आशीष, हिंदुस्तान रेडियो मित्र, मन्ने बुजुर्ग, पलेरा, टीकमगढ़, ये सुधीश होता।

और आप प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुजाता ने सभी ने मेन रोड तिलहारा से ये हम तक संदेश भेजा और आप जुड़े। खेल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश लक्ष्य लाड़ो कोयल और नारक चंद्र मल्होत्रा एक और संदेश के साथ में है। गौरव कविता अनिल स्टेशन रोड उत्तम नगर क्षेत्र से ये सभी सुदिश्योता। गंगा कुंडलवाड़ी महाराष्ट्री गंगाधर सावनकर विजय राजेश और राकेश रिश्ता। पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर गांव पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप भी जुड़े कार्यक्रम में। बाल कृष्ण वर्मा, नवीन मुनीश और राहुल शर्मा।

आनंद लोक कॉलोनी गोवर्धन रोड मथुरा से ये सभी सुधी श्रोता सूरज पाल चौधरी, अशोक जसवत, भुवनेश गौतम ने संदेश हम तक भेजा। आइए सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। इस गीत को लिया फिल्म इंसान जाग उठा। जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा आवाजें गीता दत्त और आशा भोसले की फिल्म। इस गीत के गीतकार शैलेंद्र, संगीत सचिन देव वर्मन का।

फिल्म इंसान जाग उठा के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि इस सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉ एम थंबी दुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते ना देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस

के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंताकायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब ढाई घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे।
बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण

0: होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल है, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार्य बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में देश गान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।
1: विधानसभा की समीक्षा, लेखक हैं।

0: योगेश श्रीवास्तव।
1: इस बार विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी संक्षिप्त रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मॉनसून सत्र 4 दिन के बजाय 3 दिन में ही समाप्त हो गया। इसी शोर शराबे और हंगामे के बीच जहां विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं विपक्ष ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर सरकार को घेरा। सपा सदस्यों द्वारा मंगलवार को नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान किए गए शोर शराबे और हंगामे को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने असंसदीय बताते हुए क्षोभ व्यक्त किया। बावजूद इसके चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर सपा के सदस्य आज फिर वेल में आकर शोर शराबा और हंगामा करने लगे। सपा सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 1.5 घंटे तक बाधित रही। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य फिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच ही सदन में जहां सारे विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। आज ही सदन में संबल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। इससे पूर्व सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शोर शराबे और कल की घटना पर क्षोभ जताते हुए कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वो संवैधानिक संस्था के लिए उचित नहीं था। हमें यह तय करना होगा कि हम अगली पीढ़ी को विरासत में क्या दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष संवाद सहमति और असहमति हो सकती है, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में हमारी ये पूरी कोशिश रही है कि संविधान की गरिमा और उसकी महत्ता के अनुकूल सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि वाद विवाद सहमति और असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा हमें ध्यान में रखनी होगी। संसदीय आचरण की परिधि लांघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है। उन्होंने कहा कि कल जो सदन में हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि यहां आप सब लोग पार्टी से ऊपर उठकर विचार रखें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम विरासत में क्या परंपराएं छोड़ रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा एवं उनके सपनों को कितना सार्थक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मना करने के बाद भी सदस्यों ने मीडिया और सोशल मीडिया को यहाँ के वीडियो और फोटोग्राफ्स दिए हैं, उसे प्रसारित किया गया है। ये आपत्तिजनक है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया था। इस दौरान सपा के विधायक इंजीनियर सचिन यादव मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला एक पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद उनका निलंबन किया गया था। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उनके दल के सदस्यों ने 2 घंटे तक अनुनय विनय किया, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो सदस्यों को वेल में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में 311 में स्पष्ट है कि सदन के सारे काम रोककर किसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती है। यदि कल इस मुद्दे पर चर्चा हो जाती तो ये स्थिति उत्पन्न न होती। इस पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सदन में कल जो भी हुआ वो लोकतंत्र का हिस्सा था। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा सपा सदस्यों के आचरण पर व्यक्त किए गए क्षोभ पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में आपने सदन का संचालन सुचारू रूप से किया है। उन्होंने कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि पिछले 4.5 सालों में यूपी विधानसभा का कार्य चालन देश की बाकी विधानसभाओं के लिए नजीर बना।
0: यह थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
1: विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के सभापतित्व में शुरू हुई। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मानसिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण छात्रों के आंदोलन पर सरकार की नीति का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर आशुतोष सिन्हा ने कहा कि यहां लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। गरीब किसान मजदूर तथा मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर अपनी वर्षों की जमा पूंजी

0: खर्च करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का पेपर लीक होकर परीक्षा रद्द हो जाती तो युवाओं का विश्वास टूट जाता है। पिछले 9 वर्षों में 20 से अधिक परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द हुई। लाल बिहारी यादव ने कहा कि पेपर लीक गंभीर विषय है, छात्र आंदोलित हैं। सरकार की ओर से जवाब देते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सपा सदस्य शिक्षा और परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा में सुधार और पेपर लीक की घटनाओं को कैसे रोकें इस पर कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये देश के 30 करोड़ नौजवानों से जुड़ा विषय है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले देश में कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, ये मुद्दा नया नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है, सपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कई बार टोकाटोकी और विरोध के बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उन्हें शांत रहने का निर्देश दिया, लेकिन सपा सदस्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर गए। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालय, सरकारी प्राइमरी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को छात्रों की अपार आईडी बनाने में होने वाली कठिनाइयों का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ग्राह्यता पर राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में सार्वजनिक संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार का ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि प्रदेश में चारागाह, नदी, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि के आवंटन की व्यापक जांच कराई जाए। जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन कर भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर पट्टे दिए गए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर विभागीय एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही ऐसे सभी अवैध पट्टों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए तथा सार्वजनिक भूमि को पुनः राजस्व अभिलेखों में मूल स्वरूप में दर्ज कर उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में चारागाह, नदी, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अवैध आवंटनों की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की। भोजनावकाश के बाद सभापति सलिल विश्नोई के सभापतित्व में बैठक हुई। कार्यसूची की मदों को निपटाया गया। याचिकाओं को याचिका समिति को संदर्भित किया गया। प्रमुख सचिव विधान परिषद ने 12 विधेयकों को सदन की मेज पर रखा, जो ध्वनिमत से पारित हुए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-27 का अनुपूरक विधेयक 2026 भी पारित हुआ। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। जी हाँ, आज की फिल्म देवदास। आइए सुनते हैं इस फिल्म से चंद नगमे।

और ऐश्वर्य इस नगमे में कविता सुब्रमण्यम को गीत नुसरत बद्र का, संगीत इस्माइल दरबार का। आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आज की फिल्म देवदास।

गीत नुसरत बद्र का, संगीत इस्माइल दरबार का, और अभी ये गीत कविता कृष्ण मूर्ति और के स्वर में फिल्म देवदास से। और आइए सुने अगला गीत श्रेया घोषाल के स्वर में फिल्म देवदास से।

अभी आपने सुना इस गीत में श्रेया घोषाल और साथियों को। जी हाँ, गीत नुसरत बद्र का, संगीत इस्माइल दरबार का, एक ही फिल्म से। आज की फिल्म देवदास, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आई सुने कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को लिया, जी हाँ, श्रेया घोषाल, कविता सुब्रमण्यम और साथियों के स्वर में।

कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। आज की फिल्म देवदास। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों की बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ

0: विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला। पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम ए इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहां उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहां भी ये जाके आए 8 लोग और वहां इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ता गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेब

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill increasing the

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी राहुल देव वर्मन को फिल्म शान में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव वर्मन का, और आइए सुने फिल्म हिफाजत से ये गीत राहुल देव वर्मन और साथियों को।

Yeah.

अभी आप सुन रहे थे राहुल देववर्मन को फिल्म शोले में, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुहाने तराने अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, चर्चा का विषय है। जी हाँ, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझकर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की

0: बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे? क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
2: जी नमस्कार
0: शरद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए, म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देके उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता ही, अब जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनल जो कि फ्रॉड करना चाहता है उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है कि ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा, अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
0: जी हाँ बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
2: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलीजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। कोहली साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेन कर रहे हैं कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
0: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी

0: भी शिकार भी हुए होंगे। जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए? एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई, उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
1: सबसे पहले तो इसमें आनंद यह है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम एआई से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, तो जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं। बहुत जल्दी एक्ट करना, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो एसओपी जारी किया है, उस एसओपी में क्या क्या चीज है, आप देखिए अगर एसओपी को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, एफआईआर भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, यूपीआई से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है, जी हमें क्या पता, तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं, उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज, ये भी कहा गया आनंद, स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बाकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दे, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट्स, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं, उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगी, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है, इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है, तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके

0: से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
2: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड हैं, वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है कि जो एक डिले, 1 घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप 1 घंटे के बाद वो जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो 1 घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंकों, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी, वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वो ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से वो हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं, और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
0: देखिए, आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कनेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अनटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी, किसी आम आदमी को यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है, आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद, आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जब हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं तो FIR करने में डिले होती है, जिसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, और मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है। अब उस व्यक्ति का, उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ

0: पैसे उस बैंक में पड़े हों। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा है। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डी फ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी,
1: जी
0: कि रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूं 1 लाख रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, तो 1 लाख रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12-12 हजार, 12.5 हजार, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10 हजार रुपए, 5%-10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे, 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करें, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो केवाईसी की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, ई केवाईसी भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात, जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
2: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डेलिजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू खोल जाते हैं। बीसी मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। तो वो क्यों, यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के

0: उसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है और दूसरा सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के ज़माने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
2: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलीजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास फोन नंबर भी, सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथोराइज सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, आज जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, ये सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से एआई टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहाँ पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को, ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करें, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या मैं कहता हूं, अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं, यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आरबीआई को एसओपी बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
0: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए, क्योंकि बाद में

0: जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है, तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है। तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहें कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ पीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहे।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
2: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है। और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए, और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती। याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आइए सुनते हैं फिल्म रेस से ये गीत। आवाजें इस गीत में मोनाली ठाकुर की।
1: All right, see.

गीत समीर का, संगीत प्रीतम का, आवाज़ इस गीत में मोनाली की। इस गीत को लिया था फिल्म रेस से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये गीत धूम 3 से, आवाज़ें इस गीत में सुनिधि चौहान और साथियों की।

गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत प्रीतम का, आवाज इस गीत में सुनिधि चौहान और साथियों की। इस गीत को लिया था फिल्म धूम 3 से। और आइए सुने फिल्म शीला में अलीशा चुनॉय को, गीत अनजान का, संगीत बप्पी लहरी का।

गीत अनजान का, संगीत बप्पी लहरी का। अलीशा चनोय और साथियों को सुना आपने फिल्म शीला में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। और आइए सुनते हैं अदनान सामी सुनिधि चौहान को। जी हाँ, अदनान

अभी आप सुन रहे थे अलीशा चुनॉय को फिल्म त्रिदेव में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है।

लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं गुलाम हुसैन खान। आप सुनेंगे इनके द्वारा सितार वादन जो मिश्र मांड में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं आपके साथ अब्दुल सलाम।

लीजिए सुनिए, गुलाम हुसैन के द्वारा सितार पर बजाया राग पीलू। तबले पर संगत कर रहे हैं अब्दुल सलाम।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में गुलाम हुसैन खान का सितार वादन। उसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके

0: ऐसे पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते साहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretations issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour for a timely reform. The strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. Earlier in the day, the Upper House witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a